आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आपने स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रिमा मजूमदार द्वारा बजाए सरोद पर राग भटियार सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a three-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. Describing the welcome as deeply touching, PM Modi said he looked forward to holding discussions with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatnatyam performance by the Samanvay group comprising Indonesian students. After receiving a warm welcome from members of the Indian diaspora at his hotel, the Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Vyang Quilt Shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatnatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the Triple Gem. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravarti, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defence, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
4: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are just 160 kilometers away. The southernmost tip of India in the Nicobar Islands is just 160 kilometers from Aceh. And after the very successful visit of President Prabowo as chief guest for our Republic Day, I think the relations are on an upward swing in a higher trajectory, and Prime Minister's visit will reinforce that trend. And we will, of course, doing

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज सुनते हैं इसमें महात्मा बुद्ध के सुख दुख के विचार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे राकेश कुमार झा की लिखी हुई वार्ता, महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
2: महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु मानव जीवन में सुख और दुख का विश्लेषण है। उनके विचारों ने जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे सुख क्या है और दुख का कारण क्या है को गहराई से समझने में हमारी सहायता की है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन उनका दृष्टिकोण यह था कि दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव रखा। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में चार आर्य सत्य बताए, जिनमें सबसे पहला सत्य है दुख का अस्तित्व। उनका कहना था कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अलगाव और इच्छाओं की पूर्ति न होना, यही सब जीवन के दुख के आधार हैं। उन्होंने कहा कि दुख के बिना जीवन की वास्तविकता को समझ पाना कठिन है, क्योंकि दुख ही वह मार्ग है जो हमें आत्म जागृति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में दुखों के कारणों की बात की। उनका मानना था कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा अर्थात इच्छा है। यह तृष्णा केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं का भी हिस्सा है। हम जीवन में अस्थायित्व और नश्वरता के बीच संतुलन नहीं बना पाते, शायद इसीलिए हम दुख का अनुभव भी करते हैं। महात्मा बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य में दुख से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है और इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का

0: अर्थ है इच्छाओं का समर्पण और मन की पूर्ण शांति। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं तब हम दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि इस मुक्ति को पाने के लिए आंतरिक जागरूकता और ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को शुद्ध भी कर सकते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अर्थात दुख से मुक्ति का मार्ग का सिद्धांत दिया, जिनमें उन्होंने कई सारे आर्यसत्य बताए हैं। यह मार्ग हमारे लिए जीवन में संतुलन और सद्गुणों को लाने का साधन है। इनके 8 तत्व हैं। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, अर्थात सही दृष्टिकोण हो, किसी भी चीज़ के प्रति आपका जो नज़रिया हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, सही इरादा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो इरादा हो, जो उसके सोच हो, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी आपकी जो वाणी हो ओजस्वी हो, मधुर हो। सम्यक कर्म, आपका जो कर्म हो, जो कार्य हो, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन हो, यानी कि व्यक्ति जो अपनी आजीविका ले वो भी काफ़ी अच्छा हो। सम्यक प्रयास, यानी कि सही प्रयास, व्यक्तियों के द्वारा सही प्रयास भी किया जाना चाहिए, सही दिशा में अपने कार्य को अग्रसरित करना चाहिए। सम्यक स्मृति, इसके माध्यम से हम सही ध्यान करते हैं। और अंतिम है सम्यक समाधि, सही ध्यान की अवस्था। सही ध्यान की अवस्था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप सही ध्यान की अवस्था में रहेंगे तो भी आप दुखों के सागर से दूर रहेंगे। इन 8 मार्गों का पालन करके हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन में अस्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह मार्ग केवल आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका भी है, जो हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम रामचरितमानस का। आज इसमें बालकांड सुनते हैं 109, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

0: सहवार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्रप्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार की 28

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है दोस्तों आपके मनपसंद कार्यक्रम यानी गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस प्यारे से कार्यक्रम में। दोस्तों खुश रहना सेहत और रिश्तों दोनों के लिए फायदेमंद होता है। हंसी की ठहाके, मुस्कान और खुशियां आपके दिन भर की थकान को यूं चुटकियों में दूर कर देते हैं।

दोस्तों, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या खोज रहे हैं? प्रसन्नता, आनंद, खुशी हम सदियों से तलाश कर रहे हैं और ये हमें अभी तक क्यों नहीं मिल पाई, ये एक मुश्किल बात है, क्योंकि ये हमारे अंदर ही है। क्योंकि भगवान का शुक्रिया करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर उस चीज़ के लिए जो उसने आपको दी है, और उसी खुशी से जिया भी जाता है जिस खुशी से उसने हमें दिया है।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग सिमरन कौर के साथ आपकी दोस्त और होस्ट। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है जो साथी औसतन हर दिन करीब 38 मिनट गपशप करते हैं वे काफी खुश रहते हैं और ये गपशप आमतौर पर मजेदार और हल्की फुल्की होती है। इनसे रिश्तों में ताजगी बनी रहती है और रिश्ते और मजबूत होते हैं।

अपने साथी और दोस्तों के साथ गप्पे मारना किसे पसंद नहीं आखिर, सबको पसंद है। अब साइंस भी इस बात को मानती है कि गपशप करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और इससे रिश्ते भी बेहद मजबूत बनते हैं।

सच में जिंदगी तो लगती है, लेकिन ये बातें आपके अनुभव, मजाक या कॉमन आदतों से संबंधित हो सकती हैं। इससे एक दूसरे पर भरोसा और समझ बढ़ती है, और हाँ, बातें करने से दो लोगों के बीच का तनाव भी कम होता है और दूरियां भी कम होती हैं, और रिश्ते और ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बनते हैं।

जब दो लोग बातें साझा करते हैं तो अक्सर एक दूसरे की भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं। जब आप किसी के साथ दिल की बातें करते हैं तो इससे मन को तो राहत मिलती है, आपका मूड भी अच्छा होता है। और हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि रुनाना, हंसाना और लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहता है।

जी हाँ, हंसाना, रुलाना और मनाना और उठना तो चलता ही रहेगा। फिर किसी ऐसे ही गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ हाजिर हो जाऊंगी मैं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। और मुझे अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, और सुनते रहिए आप हमारे आगे के कार्यक्रम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दीं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसे

0: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals, including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वहां होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम के बाद वज़ीर आज़म मोदी का इंडोनेशिया का पहला 2 तरफ़ा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वज़ीर आज़म मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।

0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद शफाफ टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
1: हमने कृषि ऋण डेयरी उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण उत्पादन एक्सपोर्ट जैविक उत्पादन परंपरागत बीजों का उत्पादन ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण डिजिटल सेवाएं बैंकिंग मोबिलिटी लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी असलाहत नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की सुलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाज़ाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्ज़ाम है कि 600 से ज़्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है

0: साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तिसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर तरीक़ों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुँचे हैं। ये उनके चार खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा चार खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ियात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमाली महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतज़ामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीम को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ख्वातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेट

0: ये शराकत दारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का स्वर गंगा। गायन कलाकार हैं पंडित प्रशांत मालिक और पंडित निशांत मालिक, राग है ललित। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम।
2: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
3: मैं निशांत मलिक।
2: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे, राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं, देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक। राग था ललित। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, बदलती जीवन शैली, बढ़ती उम्र, खेलकूद के दौरान होने वाली चोटें, सड़क दुर्घटनाएं और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और नित नई और आसान तकनीक का विकास हो रहा है। आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावी और आसान बनाया है और रिकवरी का समय भी कम हो गया है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी को। आप ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: यहाँ बुलाने के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपको।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक की बात होती है तो हड्डियों के टूटने की बात आती है, चोटें लगने की बात होती है, इंजुरी की बात होती है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं आज समय के साथ में कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों?
2: हड्डी टूटना आजकल ज्यादा ओल्ड एज में खास करके हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी जो होता है कमजोर हो जाता है एज के साथ में, खास करके फीमेल वगैरह में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है। और हड्डी जो है इसमें जैसे 30 एज के बाद हड्डी बनता कम है और टूटना ज्यादा शुरू होता है। टूटना मींस मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें बोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो एज के साथ कम होते चलता है।
1: यानी तो होता भी है तो धीरे धीरे होता है।
2: हाँ, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और साथ में अगर कोई अल्कोहलिक हो, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, और कुछ पेशेंट जैसे आस्थमा वगैरह का हो जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह पे होते हैं, तो वैसे लोगों का हड्डी और कमजोर हो जाता है, तो उन लोगों में हड्डी टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: आपने एक बड़ी बात कही डॉक्टर साहब की, जो अल्कोहलिक है उनमें जो हड्डी के जो बोन का जो निर्माण होता है या फिर जो डेंसिटी होती है वो कुछ कम हो जाता है,
2: जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो होता है जिससे कि बोन फॉर्मेशन होता है उसको वो रोकता है, तो उसके वजह से फिर हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाता है।
1: तो आजकल जो नई तकनीक आ रही है तो इन समस्याओं को निपटने में कहां तक सक्षम है और कितनी जल्दी, कितना, किस प्रकार का प्रभावी है?
2: सबसे पहले तो पेशेंट्स को हम ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप अल्कोहल नहीं लें, स्मोकिंग नहीं कर रहे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए आप। जैसे विटामिन डी का कमी होता है सब में आजकल, विटामिन डी में जैसे कि आजकल घर देखते हैं कि एसी में रहते हैं लोग, और उसके बाद बेसमेंट में जाते हैं गाड़ी में, वहां से फिर ऑफिस आते हैं, ऑफिस में आने के बाद फिर एसी में बंद रहते हैं, वहां पे तो सन एक्सपोजर बिल्कुल जीरो होता है, तो उसके वजह से भी हड्डी कमजोर होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ लोग एसपीएफ सन स्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं 30-40% वो यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज नहीं मिलता है, फिर उससे भी हड्डी कमजोर होती है। और तकनीक की बात जहां तक है तो ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस लेवल का है। और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का भी पहले उपाय होता है जिसमें कि हम बोन डेंसिटी डेक्सा बोलते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, बीएमडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, किस लेवल का है। और फिर बहुत कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद कुछ एंटीजॉर्प्टिव मेडिसिन वगैरह आता है, जैसे बिसफॉस्फोनेट, उसमें टेरीपेराटाइड जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, डेनिसुमाब, ये सब। तो ये मेडिसिन देने से भी ओल्ड एज में और बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है और टूटने की प्रक्रिया को थोड़ा कम करता है, तो ये भी प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद हम लोग देते हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों?
2: क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मेनोपॉज का जब कंडीशन आता है तो कुछ हार्मोन्स होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है, बोन की फॉर्मेशन को कम करता है, उसके वजह से महिलाओं में ज्यादा होता है। साथ में इसमें हम बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, इससे क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन को बढ़ाता है और आप उससे अपना हड्डी को मजबूत कर सकते।
1: तो बच्चों में जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है बड़ी तेजी के साथ होता है क्योंकि उम्र कम होती है, उनमें जो फॉर्मेशन है वो तेजी से होता है,
2: उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलेंगे तो ज्यादा होता है। ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन का फॉर्मेशन, और बोन का टूटना उसको मेडिकल टर्म में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। 30-32 के एज तक ऑस्टियोब्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक कम होता है, लेकिन 34 के बाद बोला जाता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक कम होता है, इसीलिए हमारा हड्डी धीरे धीरे कमजोर होते है। उससे पहले भी अगर आप जैसे बोलते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम का रिच सोर्स लो, आप एक्सरसाइज करो, तो उससे फिर आप अपने हड्डी को मजबूत करते हैं ताकि फ्यूचर में आपका फ्रैक्चर नहीं हो और आपका हड्डी मजबूत रहे।
1: तो आजकल किस प्रकार की तकनीक स्पोर्ट्स इंजुरी को लेकर के आई है जिससे कि और ज्यादा आसान हो गई?
2: देखिए, स्पोर्ट्स इंजुरीज की बात करें तो मोस्ट कॉमन नी में इंजुरी होता है, एंकल में होता है, शोल्डर में होता है, बैक पेन भी होता है,
1: किसी भी प्लेयर्स में
2: और बहुत सारा स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके ऊपर भी। जैसे हम नी इंजुरीज की बात करते तो नी में सबसे ज्यादा ACL इंजुरी होता है, मेनिस्कस इंजुरी होता है, और साथ में वहां पे मीडियल कोलेक्टर लिगामेंट्स वगैरह का। इसमें जो हम सर्जरी करते हैं सबसे पहले पेशेंट्स को तो हम इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें MRI करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले किया हमने, फिर MRI किया, तो डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं।
1: इसमें भी तो उम्र मायने रखता है?
2: उम्र मायने रखता है, लेकिन ACL इंजुरीज वगैरह किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि इसका बेसिकली एक तो जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो किस ढंग से खेलते हैं, आपका वहां पे कैसे मतलब लैंडिंग टेक्निक होता है, जैसे एसीएल इंजरी यूजुअली होता है उसको वेलगस एब्डक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, यानी जब सरफेस पे एक प्रॉपर ढंग से मतलब एक एबनॉर्मल ट्विस्टिंग होता है नी का तब होता है, तो इसको हम डायग्नोसिस पहले कंफर्म किया। उसके बाद इसमें जो आजकल नया टेक्नोलॉजी या काफी इंडिया में डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी और दूरबीन वाली सर्जरी भी लोग इसको बोलते हैं, जिसमें कि मात्र 8 mm का पोर्ट बनाते हैं, हम दो छेद बनाते हैं
1: माइक्रोस्कोपिक में,
2: माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं, ऑर्थोस्कोपिक मतलब स्कोपिक मतलब व्यू, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स को देख रहे हैं उसको ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं, तो मेडिकल टर्म एक्जेक्टली ऑर्थोस्कोपिक। तो उसमें फिर देखते हैं कि एसीएल टियर है, तो उसमें सिर्फ 8 mm के पोर्ट से आप एक साइड से आप स्कोप डालते हैं, दूसरा साइड से इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और फिर इसमें हम ग्राफ्ट निकालते हैं, हैमस्ट्रिंग्स ग्राफ्ट, उसको वो बेसिकली एक टेंडन होता है उसको फोल्ड करके और उसका निकालने का एक टेक्निक होता है, फिर हम उसको उसमें फिक्स करते हैं और इससे रिकवरी काफी फास्ट होता है। मेनिस्कस इंजरीज भी हम वैसे ही डील करते हैं, इसमें हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है जो मतलब छोटा सा मतलब 8 mm के पोर्ट से उसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, फिर उससे हम मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं और मेनिस्कस अगर रिपेयर होने लायक नहीं रहता तो मेनिसेक्टोमी करते हैं।
1: तो ये बच्चों में भी किया जा सकता है या फिर बड़ों में या फिर किसी में भी किया जा सकता है?
2: बच्चों में भी किया जा सकता है, उसके लिए वहां पे बच्चों में जो होता है ग्रोथ प्लेट होता है, ग्रोथ प्लेट का मतलब क्या होता है, जहां से हमारा आपका वृद्धि होता है जब तक हम 21-22 साल के होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले MRI और CT स्कैन या एक्सरे में देखते हैं कि बोन फ्यूज हुआ है कि नहीं, तो उसमें भी ऑर्थोस्कोपिक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस ग्रोथ पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि उससे फ्यूचर में उनका ग्रोथ रुक सकता है या डिफॉर्मिटी डेवलप कर सकता है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का, तो उसको स्पेशल टेक्निक से किया जाता है, मतलब उसको स्पेयर करते हुए उस पार्ट को तब करते हैं ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जहां पर बच्चों की बात आ रही है तो कई बार देखा गया है कि बच्चे जो जन्म से जो कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उनके लिए आप किस प्रकार की सर्जरी उनमें भी जरूरी हो जाता है या फिर मेडिसिन वगैरह से भी ठीक?
2: देखिये, जन्म से अगर बोले तो बाय बर्थ बोल सकते हैं
1: जी, बाय बर्थ,
2: तो उसमें डिफॉर्मिटी कितना है उसका प्रॉपर असेसमेंट करते हैं हम, और फिर उसमें कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम सर्जरी करके, या फिर सर्जरी नहीं कर सकते तो फिजियोथेरेपी वगैरह करके कुछ, जैसे ऑर्थोटिक्स वगैरह होता है, अप्लायंसेस वगैरह, उनसे उसको मतलब अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, ऐसा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है डॉक्टर साहब इसमें, ऑर्थोपेडिक में?
2: फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उससे मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आप, रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है उससे, रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जैसे ACL सर्जरी किया किसी का नी ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के बाद, तो उसमें एक पर्टिकुलर वीक में कितना रेंज ऑफ मोशन लाना है, स्ट्रेंथ कितना बढ़ाना है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स और आपको ग्लूटियल मसल्स, कोर स्टेबिलिटी, तो ये सब एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ही होता है, और अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं तो मसल्स वेस्ट होता है, नी में स्टिफनेस डेवलप कर जाता है, तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि देखिए शरीर बोन और मसल्स से बना होता है, बोन एक ढांचा होता है, मसल्स आपको ताकत प्रोवाइड करता है, जब मसल्स मजबूत होता है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, तो इसीलिए फिजियोथेरेपी से मसल्स स्ट्रांग करना जरूरी होता है।
1: डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी में आर्थोस्कोपी का क्या रोल होता है और इसमें कौन कौन सी तकनीक होती है?
2: आर्थोस्कोपी में जैसे हमने पहले अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो की होल सर्जरी होता है, दूरबीन वाली सर्जरी होती है, तो उससे जैसे कि नी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, शोल्डर में जैसे सुने होंगे कि शोल्डर डिस्लोकेट करता है,
1: तो उसमें जो क्रिकेट प्लेयर्स के लिए,
2: क्रिकेट प्लेयर्स को, तो शोल्डर डिस्लोकेट करता है, तो शोल्डर जब डिस्लोकेट करता है उसको बैंकार्ट लेजन बोलते हैं, और रोटेटर कप इंजरीज वगैरह होता है, और उसमें जैसे बैंकार्ट लेजन हुआ तो उसमें आर्थोस्कोपिक सर्जरी से उसमें भी सिर्फ हम शोल्डर के अराउंड कुछ जैसे 8 mm का या 10 mm का मैक्सिमम बोल सकते हैं पोर्ट बनाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा इंसिजन होता है, उससे फिर हम उसमें सर्जरी कर डालते हैं। शोल्डर सर्जरी अगर बैंकार्ट रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 3 to 4 months में रिकवर कर जाते हैं। अगर नी की बात करें हम ACL सर्जरीज का, तो पेशेंट चलना शुरू कर देते हैं 1-2 महीने में ही, लेकिन रनिंग जॉगिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए 6 to 9 months भी टाइम लगता है, वो अगेन डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपी कैसा हुआ, स्ट्रेंथ कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
1: क्या दोबारा एज यूजुअल वो स्पोर्ट्स खेल सकता है?
2: बिल्कुल खेल सकता है, अच्छा सर्जरी होना और प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल खेलते हैं।
1: डॉक्टर, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी क्या होता है, इसमें किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल किया जाता है?
2: जैसे एक फ्रैक्चर में हम लोग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का यूज करते हैं,
1: सिर्फ फ्रैक्चर में,
2: फ्रैक्चर में करते हैं, और आप ऑर्थोस्कोपी भी बोल सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में कैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड एज में फ्रैक्चर फीमर होता है, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर होता है जो ट्रिवियल ट्रॉमा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, तो उसमें हम बड़ा सा रॉड डाल देते हैं और जैसे फीमर का टिप ऑफ प्रोकेंटर बोलते हैं वहां से लेकर के नी जॉइंट तक फीमर का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसमें आप देखेंगे तो इंसिजन जो होता है हार्डली मतलब 2.5 सेंटीमीटर का मैक्सिमम, 2-3 इंसिजन होता है उससे ही कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि इंजरी होने के बाद में पैरों में या हाथों में कोई छोटी सी प्लेट डाल देते हैं या फिर रॉड डाल देते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, तो इसे कितने दिनों के बाद में निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं आगे चल के?
2: जैसे जब हम इम्प्लांट लगाते हैं कोई भी रॉड, प्लेट, स्क्रू वगैरह, तो इसमें 1.5 से 2 साल के बाद निकाल सकते हैं
1: जी।
2: और इंडिकेशन जो निकालने का होता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो, और कभी कोई पेशेंट खुद बोले कि नहीं हमको निकलवाना है, और मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली बोलता हूँ कि 1.5-2 साल के बाद निकाल लेने, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी लगता है बाद में कि हमने क्यों नहीं निकलवाया। अगर आप 1.5-2 साल के बाद नहीं निकालते हैं तो बाद में क्या होता है कि उस प्लेट को निकालना मुश्किल हो जाता है।

0: जैसे 3 साल 4 साल हो गया लगभग, क्योंकि प्लेट के ऊपर बोन जमा हो जाता है,
1: बोन जमा हो जाता है और मसल्स भी आ जाते हैं।
0: मसल्स को तो हम स्प्लिट करके बगल में कर देते हैं लेकिन बोन जमा हो जाता है। साथ में स्क्रू और प्लेट के बीच में कोल्ड वेल्डिंग बोल सकते हैं, जो स्क्रू उससे निकलता ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: जैसे रिसेंटली भी मैंने अभी 8-10 ईयर्स मतलब पहले सर्जरी हुआ था, ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, तो उसका मैंने प्लेट निकाला लेकिन बहुत मुश्किल हुई निकालने में, क्योंकि आप जब निकालते हैं तो उस वक्त फिर दोबारा फ्रैक्चर होने की भी संभावना होती है। देखिए जब हम प्लेट और नेल और स्क्रू लगाते हैं, जस्ट हम फ्रैक्चर को अपने जगह पे लगाने के लिए लगाते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी को जोड़ता नहीं है। उसका एक टाइम फ्रेम होता है जुड़ने का, जो 6 वीक में जुड़ जाता है और 1.5 से 2 साल में हड्डी मजबूत हो जाता है। फिर उसका प्लेट स्क्रू रॉड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल नी रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट की चर्चा काफी सुनते हैं, इसमें कितनी प्रगति हुई है, कहां तक प्रगति हुई है?
0: नी रिप्लेसमेंट में काफी प्रगति हुआ है इंडिया में। पहले जो था और अभी भी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन और आजकल रोबोटिक, उसका भी कंसेप्ट है। और रोबोटिक अभी जस्ट 4-5 साल से हो रहा है, 6 साल से बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो रोबोटिक भी ठीक है, लेकिन इसमें इंसिजन का पूछते हैं बहुत पेशेंट्स कितना बड़ा रहता है, तो इंसिजन में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, उतना ही इंसिजन यूज करते हैं। और रोबोटिक कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट नहीं करता है, हार्डली 2 मिनट के लिए एक बोन का मतलब कट करता है, प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है। तो अभी ये नया तकनीकी है, तो अभी देखना होगा फ्यूचर में कि इससे कितना कॉम्प्लिकेशन होता है और कितना बेटर है। लेकिन कुछ स्टडीज अभी आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन इसमें रोबोटिक में हो रहा है, तो कन्वेंशनल भी अच्छा है और इसके बारे में फ्यूचर में पता चलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक इंजरी जब हो जाता है तो हॉट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी, इन दोनों का क्या रोल होता है?
0: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैक्सिमम क्लिनिक्स में भी पूछते हैं हॉस्पिटल्स में जब हम पेशेंट देखते हैं। तो देखिए जैसे किसी को चोट लगा, एक्यूट इंजरीज होता है वहां पे, तो एक्यूट इंजरीज में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फटता है, ब्लड वेसल्स फटने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्लड और जाता है, तो वो जाने से फिर वहां पे स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है, तो वो दर्द को और बढ़ाता है। तो अगर आप उस वक्त हॉट वाटर फर्मेंटेशन करते हैं, मसाज करते हैं, कोई जेल वगैरह यूज करते हैं, तो वहां और ये ब्लड जाएगा और स्वेलिंग और दर्द को बढ़ाएगा। इसलिए जब चोट लगता है एक्यूट कंडीशन हम 72 आवर्स कंसिडर करते हैं, लेकिन और मेरे ख्याल से ज्यादा 2-3 दिन और मान करके चलना चाहिए। जब आप बर्फ से सिकाई करते हैं उस वक्त, तो क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड वहां पे जाता नहीं है, तो उससे आपका स्वेलिंग कम होता है और एडिमा कम होता है, तो दर्द को कम करता है।
1: जी।
0: और अगर कोई पुराना दर्द हो जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं, नी पेन, बैक पेन वगैरह, तो उसमें गर्म पानी से ही सिकाई करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, कोई जेल वगैरह यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब ये करते हैं आप गर्म पानी सिकाई करते हैं तो वेसो डायलिटेशन होता है, तो ब्लड वहां पे और जाता है, तो उससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, तो वो आपको उसमें हेल्प करता है। एक तीसरा चीज होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ, जिसमें बोलते हैं 20 सेकेंड्स गर्म पानी में, 20 सेकेंड्स ठंडा पानी में। तो ये जैसे कि प्लांटर फेसियटिस वगैरह का एक एग्जांपल, जिसमें उसमें बोलते हैं पेशेंट्स को, तो उससे अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेटेशन होता है, वो पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है। और लेकिन ये कुछ करने से पहले डॉक्टर के एडवाइस से करना।
1: जी डॉक्टर, कई बार ये भी देखा जाता है कभी पैर मुड़ जाता है तो तुरंत ही समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे?
0: देखिए ये आपने एग्जांपल दिया एंकल स्प्रेन, तो एंकल स्प्रेन इसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, ट्विस्ट कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एंकल स्प्रेन में क्या होता है, उस वक्त आपको आइस ही करना है,
1: आइस
0: करना है, मसाज नहीं करना है, गर्म पानी नहीं, कोई जेल वगैरह यूज नहीं करना है, तो उससे आपको उसमें हेल्प मिलेगा। और इसको फिर हम ग्रेड करते हैं 1, 2, 3। ग्रेड 1 का मतलब क्या होता है, आप लिगामेंट को कंपेयर कर सकते हैं एक रस्सी से जो 2 बोन को बांध करके रखता है। तो ग्रेड 1 का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है, यानी लिगामेंट ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहता है उसमें। ग्रेड 2 में ऑलमोस्ट 50% टेयर हो जाता है, उसमें दर्द और स्वेलिंग जल्दी डेवलप करता है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि काफी कंप्लीट टेयर हो गया लिगामेंट। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट एक्सरे करके देखते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, उसमें कभी कभी फ्रैक्चर भी होता है, और फिर क्लिनिकली देखने के बाद एसेस करते हैं, प्लास्टर, मेडिसिन वगैरह देते हैं।
1: एक आखिरी प्रश्न ये है कि स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी ये क्या है?
0: पीआरपी में क्या करते हैं कि पेशेंट से ही ब्लड निकाल करके और उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद उसमें एक फ्लफी लेयर होता है, तो उसको हम निकाल करके फिर ज्वाइंट्स में इंजेक्ट करते हैं, या जैसे किसी को टेनिस एल्बो का नाम सुने होंगे, टेंडन इंजरीज होता है, उसमें बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर वगैरह होता है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि मतलब ये आपको हीलिंग में और ये प्रोटेक्ट करता है और इसको बढ़ाता है। स्टेम सेल थेरेपी भी ऑलमोस्ट सेम इंजरीज में ही यूज करते हैं, जैसे टेंडन इंजरीज वगैरह हो गया, या फिर नी रिप्लेस, इनफैक्ट मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस अपनी होता है उसमें भी यूज करते हैं। ये सब अभी अंडर स्टडी ही बोल सकते हैं, कुछ पेशेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता है।
1: ये कुछ उम्र के अनुसार भी हो सकता है बेनिफिट मिल सकता होगा,
0: जैसे हम नी की अगर बात करें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक मतलब पीआरपी इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ग्रेड 4 में फिर उसका हेल्पफुल नहीं होता है। लेकिन इसे आपको फायदा होगा नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं होता है। जैसे पहले हम लोग स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा यूज करते थे, तो स्टेरॉइड्स में नुकसान मतलब फायदा भी करता है लेकिन नुकसान होने की संभावना होता है, इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि आपको नुकसान नहीं होगा।
1: तो डॉक्टर, चलते चलते जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या फिर ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: स्पोर्ट्स वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर टेक्निक से खेलें, लैंडिंग टेक्निक वगैरह जैसे वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइफस्टाइल, ये सब चीज पे ध्यान दें।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है और स्पोर्ट्स इंजरी के विषय में जो समस्याएं हैं और जो निदान है उनके विषय में आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तक आए।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए।

0: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पंजाबी, कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असीं सुणांगे कविता पाठ ते इस तों इलावा कुछ गीत भी सुनवाए जाणगे। अज असीं गल करांगे थुकणा मनाए ते। जनतक थावां जिवें पार्क, बस स्टैंड, जनतक शौचालय, गलियां, सड़कां ते अक्सर असीं लिखिया वेखदे हां कि इत्थे थुकणा सख्त मनाए, किरपा करके इत्थे ना थुको। ये लिखे होने के बावजूद भी कई लोग अपनियां हरकतों तो बाज नहीं आते ते वो अपनी आदत तो मजबूर होंदे ने। यही नहीं, सुंदर सोहनिया इमारतां, पार्क, बस स्टैंड ते होर जनतक थावां, सड़कां ते गलियां भी गुटके ते पान दी थुक दे नाल भरियां पईयां होंदियां ने, जिस दी गंदगी ते बदबू दे कारण साडा साह लैणा मुश्किल हो जांदा है ते असीं अपने नाल कई बीमारियां सेड़ लैंदे आं। जनतक थावां ते थुकण नाल कई तरह दीआं बीमारियां फैलदियां ने। जे कोई व्यक्ति खंघ, जुकाम जां टीवी नाल पीड़ित होवे तां उस दी थुक दे कीटाणु हवा च फैलदे ने ते तंदरुस्त ते सेहतमंद व्यक्ति नूं वी बीमार कर दिंदे ने। यही नहीं, कईआं व्यक्तियों नूं तां हमेशा ही जानवरां वांग जगाली करन दी आदत पई हुंदी है। पान ते गुटका थुकण वाले अक्सर राह जांदे ही थुकी जांदे ने। यही नहीं, कई बार तां ओह राह जाण वाले व्यक्तियों दे उपर भी थुक सुट देंदे ने, जिस कारण कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जांदे ने। हर कदम ध्यान ते सोच समझ के पुट्टो तां कि बाद विच पछताउणा ना पवे। इस लई जिंदगी दे हर पल दा आनंद लवो। गायक बलकार सिद्धू झूठे दा जिक्र कर रहे ने। एक झूठा लै जावे सोने दे दंद वालिया। गीत बोल लिखे ने तरन ऋषि ते गुरबख्श सिंह अलबिला ने।

नदी जंगल ते तेरा उदास पेंडा मैनू किवें लब्भेगा। मैं दहलीज दायरिया च दूर तक किथे, मैं दहलीज दायरिया च दूर तक किथे, किसी रंग महल च हाशम वारिस नू पढ़दी नचदी। दहलीज दायरिया च दूर तक किथे, किसी रंग महल च हाशम वारिस नू पढ़दी नचदी। वेग दे तंद नू फड़ निकल पई हाँ, किसे चानन नू लभदी निहारदी, खाब राहां साहां नू नाल लई। मेरी अगली कविता है दोष। रूप तेरा या मेरा, रूप तेरा या मेरा, निर्दोष ही है मन पटक रहा है। रूप तेरा या मेरा निर्दोष ही है मन पटक रहा है, खोजदा लभदा कुछ भालदा, किसे संघर्ष दी सवा पिंडे ते लाई। अखां चो नींद, अखां चो नींद, मन दा चैन कविता तो शब्द खाबां दी बुनती गिनती मिनती। दिन त्योहार, दिन त्योहार, सब किसे वाह वरोले दे हाथ फड़ा, चुप होई वेख रही हाँ जिंदगी दी तस्वीर वल। किस कहा तू झूठ है, किस कहा तू झूठ है, किस क्या तू फरेब, कूड़ संताप तक कर्मा दे भेद, कूड़ संताप तक कर्मा दे भेद, कद फड़ लैन कौन जानदा। जो गुआचा वो तेरा ना सी, जो गुआचा वो तेरा ना सी, सिव्यां दा राह सब नू तके, ओला रखे कुछ ना दसे, ओला रखे कुछ ना दसे, फिर क्यों उमरां दे दोष राख दे दर्पण च तू वेख रहा। अनहद संगीत च सुर ने, अनहद संगीत च सुर ने, तू सुरां च तू। एक होर कविता, खबर। अज खबरां च मनुखता दी होई है किते मौत, अज खबरां च मनुखता दी होई है किते मौत, ढोल मंजीरे ने वज रहे, ढोल मंजीरे ने वज रहे, अखां पत्थर हुईयां सब तक रहियां ने शायद अपने ही अंदर। मोई जिंद च, मोई जिंद च नचदी कल्पना, ते उस कल्पना च जीउंदा मनुख। पार हो तुरिया है, पार हो तुरिया है अपने सच समाज तो, साध समाज जय भुलेखे नू मन च वसाई। मोई जिंद च नचदी कल्पना, ते उस कल्पना च जीउंदा मनुख। पार हो तुरिया है अपने सच समाज तो, साध समाद जहे भुलेखे नू मन च वसाई। जद मुड़ खलोवेगा मनुख, जद मुड़ खलोवेगा मनुख, कदे सच दे पास भविख उस तो कर किनारा हस पवेगा। काल्पनिक दुनिया च, काल्पनिक दुनिया च पात्र रब ते होर सब कुछ भी झूठ च ने रंगे, काल्पनिक दुनिया च पात्र रब ते होर सब कुछ भी झूठ च ने रंगे, कुछ भी मनुखी नहीं। धरती अंबर, धरती अंबर, पानी बदल सब अज ते, धरती अंबर पानी बदल अज सब ते कब्जा, कुदरत सी करता, कुदरत सी करता, अज करता कोई होर। शब्दां दे वेग तो बाहर, शब्दां दे वेग तो बाहर, हर तरफ ने तस्वीरां ते कुछ तिखे रंग। शब्दां दे वेग तो बाहर, हर तरफ ने तस्वीरां ते कुछ तिखे रंग। कित्थों किस तो मंगा, किथे किस तो मंगा, इक पल जिस च मैं रब वल हो, जिस च मैं रब वल हो, वेख सकां सच्चे सुच्चे फुलां दे रंग। आखरी कविता है तू खाब सही। मैं पहन लिया सी राह जंगली, मैं पहन लिया सी राह जंगली, जो दिसया मेथों हुन पढ़ना होया बरीक, बहुत बरीक सी लिखत। मैं पहन लिया सी राह जंगली, जो दिसया मेथों हुन पढ़ना होया बरीक, बहुत बरीक सी लिखत, पीले पए पन्नियां ते अखर अखर हो पढ़िया सी जिसनू, अखर अखर हो पढ़िया सी जिसनू, हवा जिया हो पास है किधरे हुन लभदा भी नहीं। ताइयों अडोल, ताइयों अडोल, तुर पई वां रुखां वल पैरां च हुन झांजर नहीं, ताइयों अडोल तुर पई वां रुखां वल पैरां च हुन झांजर नहीं। राह नू पहन लिया मैं, राहां नू पहन लिया मैं, कदमां

0: भुल जाना खुद नूं सौखा नहीं हुंदा, सहां दी तरतीब ही, सहां दी तरतीब ही जिवें भुल गई सां। अज एक खाब मैं अपने लई है पहन लिया, इतनी खुलता है मैनू, इतनी खुलता है मैनू।
1: कविता पाठ तुसीं सुन रहे सी प्रभजोत कौर सबरवाल तों, ते प्रोग्राम नूं अगे तोरदे होए सुनदे हां गीत गायक सुरजीत बिंद्रखिया दी आवाज़ च कि ओह किवें काली गानी दी तारीफ कर रहे ने। गीत दे बोल लिखे ने शमशेर सिंह संधू ने।

गोरे रंग नू चार चन लाउंदी। एह गीत तुसी सुन रहे सी सुरजीत बिंद्रखिया दी आवाज। गीत दे बोल लिखे सन शमशेर संधू ने। ते आओ हुण अगला गीत सुनदे हां हरजीत हरमन दी आवाज च। ओ केड़े चन दा इंतजार कर रहे ने।

गायक हरजीत हरमन की आवाज यह गीत तुसी सुन रहे सी ते गीत दे बोल लिखे सन प्रगट सिंह ने। इंतजार ते उड़ीक दा भी अपना ही मजा हुंदा है, उड़ीक भी कोई सबर वाला ही कर सकता है। आस है कि मिट्टी की महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दे नाल ही मिट्टी की महक प्रोग्राम का समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शिवेंद्र कलेर नू इजाजत दिओ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur.

तो लीजिए, घड़ी ने एक बार फिर से इशारा कर दिया है कि अब वक्त है उस महफिल का जहां हर गीत के पीछे किसी न किसी श्रोता की मुस्कान जुड़ी होती है। मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और अगले एक घंटे तक आपकी आवाज बनेंगे आपकी फरमाइशें। जी हाँ दोस्तों, आज भी डाक, ईमेल, व्हाट्सएप, इस सब पे और फोन के जरिए ढेरों संदेश हमारे पास आपके पहुंचते हैं और कुछ गीत पुराने हैं, कुछ नए, लेकिन एक बात इस सब में एक जैसी है, वो है हर फरमाइश दिल से भेजी गई है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के खोलते हैं आज की संगीत की पोटली और सबसे पहले सुनते हैं आज की पहली पसंद, जो हमें भेजी है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी ने। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर गाना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। चलिए आनंद लेते हैं इसी गाने का और बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ।

वाह दोस्तों, शुरुआत तो दिल को खुश कर गई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि अच्छे गीतों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उन्हें सुनने के लिए कभी किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी इस महफिल में कोई पहली बार जुड़ा है तो वही बरसों से साथ निभा रहा है, और आप सभी का ये जो साथ है वही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। तो चलिए अब अगली फरमाइश का लिफाफा खोलते हैं और सुनते हैं एक और शानदार गीत जो फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने लिखा है। आज निर्माता अभिनेता दिलीप कुमार जी का स्मृति दिन है 7 जुलाई 2021, और इनकी ख्वाहिश है फिल्म बैराग के गीत सारे शहर में। जी हाँ दोस्तों, आपकी यही सारी ख्वाहिशों को हम पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, और लीजिए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि ये जो संदेश लिखा होता है, ये गीत मेरे पूरे परिवार की ओर से लिखा है। और तब महसूस होता है कि गीत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, रिश्तों को जोड़ने का बहाना भी होता है। तो चलिए अब एक और खूबसूरत फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, जो हमें भेजी है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। दीवाना फिल्म का गीत है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें या नहीं। चलिए दोस्तों,

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों चलिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं दुर्गेश सारस्वत आपकी फरमाइश लेकर कार्यक्रम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि अच्छे गीतों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उन्हें सुनने के लिए कभी किसी खास मौके की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी लगता है कि गीत नहीं बदलते हैं, बस उन्हें सुनने की हमारी उम्र और नज़र बदल जाती है। इसीलिए वो धुन हर दौर में नया मतलब दे जाती है। इसी एहसास के साथ सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश, जिसे भेजा है हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा जी ने। इन्होंने हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का गीत की फरमाइश की है। चलिए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश पर ये एक और प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों हमारे पास आने वाला हर संदेश अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। कहीं जन्मदिन की बधाई होती है, कहीं सालगिरह की शुभकामनाएं, तो कहीं बिना किसी वजह के सिर्फ किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश। देखिए रेडियो की सबसे प्यारी बात यही होती है कि हम एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ होते हैं, और यही एहसास रेडियो को आज भी इतना

अपना बनाए रखा है। तो इसी अपनेपन के साथ सुनते हैं अगली फरमाइश जिसे हमें भेजा है। डियर होस्ट जी, आदाब व नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, तुकनी सदाफारजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद और समस्त फूल वाले फैमिली ने। इन्हें आरजू फिल्म या ताजमहल फिल्म में से किसी का भी कोई भी गीत सुनने की ख्वाहिश है, तो हम इनकी ख्वाहिश को सर आंखों पर रखकर कोशिश करते हैं आपकी ख्वाहिश को करने की।

दोस्तों, आज की जो ये प्लेलिस्ट है, इसे देखकर एक बात तो समझ आ गई है कि जो अच्छी पसंद होती है वो कभी पुरानी नहीं होती, और कुछ गीत हर बार उतने ही नए लगते हैं जितनी पहली बार सुनने में लगते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपना अगला संदेश, जिसे हमें भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी ने। आदरणीय दुर्गेश दीदी, कितने मैसेज करने पड़ेंगे कृपया ज़रूर बताएं। वैसे आज की हमारी पसंद है दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गंगा जमुना फिल्म से। चलिए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म पर एक ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। हम कोशिश करते हैं आप सभी के संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। कार्यक्रम जारी है, अपने संदेश हमें जल्दी जल्दी भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे उन्हें शामिल करने की। फिलहाल पढ़ते हैं अपना अगला संदेश जो हमें भेजा है।

पुष्पेंद्र यादव जी ने सैफई जिला इटावा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, दुर्गेश जी नमस्ते, कृपया परदेश फिल्म से ये दिल दीवाना सॉन्ग सुनवा दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बढ़ते हैं इनकी फरमाइश की तरफ।

तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गीत बहुत पसंद आया होगा। और कई बार क्या होता है ना कि गीत खत्म हो जाता है लेकिन उसकी धुन मन में चलती रहती है। गीत बिल्कुल वैसा ही है और शायद यही वजह है कि कुछ गीत हर बार नए लगते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ, जिसे हमें भेजा है हर्षित हिना हेमलता लालगिरी गोस्वामी खुशी गोस्वामी जी ने, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। फरमाइश है दो रास्ते फिल्म से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और गीत के बोल हैं ये रेशमी जुल्फ़ें।

दोस्तों, देखते ही देखते संगीत का ये सफ़र हमें ले आया है समापन की ओर, और चलते चलते आखिरी संदेश ले लेते हैं जिसे हमें भेजा है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया से, जालंधर से। इन्होंने अनपढ़ फिल्म से है इसी में प्यार की जस्तजू से फरमाइश की है। तो चलते हैं इनकी फरमाइश की तरफ।

0: रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press meet in Jakarta, Indonesian President Prabowo Subianto announced that Indonesia has conferred its highest honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, upon Prime Minister Narendra Modi. We now go over land.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में शुभम सरकार का बजाया वॉयलन पर राग गुजरी तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में शुभम सरकार का वायलन पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: श्रोताओं, इस समय 12 बजने को हैं, अब सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

0: आई।
1: अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्ची में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defence, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defence exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
1: Aaj humne defence exchange, disaster management aur industrial sahyog badhane par sahmati banayi. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
3: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
3: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Our correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the Holy Cave Shrine in Kashmir. Eight people were killed and some others were missing after thunderstorms and gales brought by severe convective weather hit the eastern part of central China's Hubei province. According to a provincial emergency management authorities, thunderstorms, strong winds and tornadoes struck several cities last evening. In Huangkang, 275 people were injured while over 400 residents were shifted to safer locations. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, parts of Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Interior Karnataka, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim are also expected to experience heavy rainfall during the day. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 International of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as new skipper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in the forenoon session today. The Sensex climbed 307 points to 78,592, while the Nifty advanced 83 points to 24,514 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: हर आंगन। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है। हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, बस ज़रूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को मुस्कान और जानकारी के मधुर गीतों के रंग से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली,
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। सोनाली तुम्हें और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और FM गोल्ड दिल्ली के चैनल के सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: होठों में बात हम दबा कर नहीं आए, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल, है ना रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, और बड़ा मजेदार सवाल है आज का।
0: बिल्कुल, तो हमारा सवाल आपके साथ यही है कि रसोई में हर किसी ने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया है जिसमें उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है उससे, है ना? तो आपकी रसोई से जुड़ी पहली ऐसी कौन सी गलती है, या ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगातार परेशान करती रही है? तो बस
1: कोई ऐसी मजेदार गलती लिख कर हमें भेज दीजिए हमारी ईमेल पर, और हमारी ईमेल है
0: fmgoldga@gmail.com।
1: तो जल्दी भेजिए अपना जवाब।

0: फिल्म ज्वेल थीफ से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती, उन्हें हर पीढ़ी पढ़ती है और हर बार उनमें अपने समय की सच्चाई ढूंढ लेती है। हिंदी साहित्य में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम ऐसी ही रचनाकारों में लिया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, और उनकी लिखी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है सोनाली, उसने कहा था, वो कहानी तो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी उसको कहा जा सकता है। और मैं बताऊं सोनाली, वो केवल प्रेम कहानी नहीं है, वो तो वचन, कर्तव्य और त्याग की ऐसी कथा है जो सच में पाठकों का मन आज भी छू लेती है।
0: सच बात कह रही हैं आप रश्मि जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें, आज यानी 7 जुलाई 1883 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। और ना इन्होंने ना संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली और इतिहास के बहुत गहरी अध्ययन इन्होंने किया था और बहुत कम लिखा, लेकिन जो लिखा वो अमर हो गया है।
1: बिल्कुल, और उनका मानना था कि शब्द तभी सार्थक हैं जब उनमें जीवन की सच्चाई झलकती हो। और शायद यही कारण है कि इतना समय बीत गया, एक सदी से भी अधिक बीत गया, लेकिन उनके बाद उनकी रचनाएं उतनी ही ताजा महसूस होती हैं। साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि मनुष्य और समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम बनाया।
0: बिल्कुल सही रश्मि जी। और आज ना जब तेजी से समय बदल रहा है, तो ऐसे समय में हम रहे हैं जहाँ पर गुलेरी जी का जो साहित्य है ना, वो हमें याद दिलाता है कि संवेदनाएं कभी पुरानी नहीं होती, है ना। अच्छी रचनाएं समय के साथ आगे चलती रहती हैं। तो बस आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म उसने कहा था। इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और रश्मि जी, आपको पता है हमारा जो सवाल था ना कि रसोई की सबसे मज़ेदार गलती आपकी क्या थी, तो बड़े प्यारे प्यारे और बहुत मज़ेदार से रिस्पांस हमें मिले हैं।
1: तो पहली मेल कौन सी है?
0: सबसे पहले तो देखिए, नवीन भाटिया जी हैं मोतीनगर से, लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब चावल बनाने थे तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी थी और ना उसके उसमें फिर वो मीठे चावल बन गए और सबने उसे खाया,
1: यानी एक नया बिल्कुल डिश तैयार हो गया है।
0: हाँ,
1: ना
0: और मतलब नवीन जी कितना अच्छा होता है, उसमें थोड़ी सी दूध डाल देते हल्की सी इलायची है ना।
1: और एक और मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं अलमास औरंगाबाद महाराष्ट्र से, वो अपना अनुभव बता रही है कि चाय गैस पर रखकर फूल गई और वो जल गई। भाई हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, शुरुआत में गड़बड़ हो ही जाती है।
0: बिल्कुल। और देखिए इसी तरह से खुशबू जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ हैं और ये हमें नमस्ते कह रही हैं। आपको भी हमारा नमस्कार खुशबू जी, और शुक्रिया बने रहने के लिए। फिर हमारे साथ मनीषा जुड़ी हुई हैं और वो भी कह रही हैं कि उन्हें गाने अच्छे लगे और शुरुआत उन्हें अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपका साथ ही तो हमारे।
1: और सोनाली, एक गलती मैं अपनी बताऊं जो मैंने की थी।
0: जरूर जरूर।
1: जब मैंने पहली बार आटा गूंधा तो मैंने सच बताऊं इतना पानी डाल दिया कि वो मतलब बनाने लायक ही नहीं रहा, और फिर आटा डालना और पानी डालना वो सिलसिला जारी रहा और बिल्कुल अजीब सा ही हो गया
0: तो चार रोटी की जगह 40 रोटी का आटा हो गया होगा, है ना।
1: तो ऐसी गलतियां की है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होता है, पहला कदम में तो गलतियां माफ भी की जा सकती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मेरी गलती क्या थी?
1: जी,
0: भिंडी की सब्जी बनाने गई थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया।
1: वाह। तो हमें यकीन है आपने भी ऐसी कुछ मजेदार गलतियां जरूर की होंगी जब आपका सफर शुरू हुआ होगा मजेदार रसोई का। तो लिख भेजिए अपना जवाब, हमारा ईमेल एड्रेस है
0: fmgoldga@gmail.com।

0: तो चलिए रश्मि जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने अक्सर गौर किया है कि घर में बहस ज्यादातर किसी बड़ी बात पर नहीं होती, और क्या होता है कि जब रिश्तों की बात चलती है तो हम अक्सर उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा होता है। और इसी तरह एक रिश्ता होता है जीवन साथी का, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल। और कभी आपने गौर किया है सोनाली कि जो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये मन में जगह बना लेती है। और कब साथ चलने वाले दो लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से आगे निकलने लगते हैं पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल सही बात है। और ना अक्सर ये हम देखते हैं कि हम लोग हिसाब किताब रखने लग जाते हैं, जबकि जीवन साथी का रिश्ता हिसाब रखने का नहीं है, बल्कि ये तो साथ निभाने का रिश्ता है ना। हर दिन बराबर नहीं होता, कभी एक मजबूत होता है तो कभी दूसरा मजबूत होता है। तो अक्सर हमने देखा है रश्मि जी कि कभी कोई थक जाए तो उसको बस और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आपके प्यार भरे साथ की, आपके कंधे की, है ना।
1: बिल्कुल, यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। क्योंकि भाई सोनाली, जिंदगी कोई प्रतियोगिता थोड़ी है जहाँ हर दिन जीतना जरूरी हो, और घर भी कोई ऐसा मैदान नहीं है कि हमें अपनी बात भाई मनवा के ही दम लेना है। घर तो वो जगह है जहाँ दो लोग मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हैं
0: और
1: एक दूसरे की

0: खुशियों को बढ़ाते हैं।
1: सच में, और देखती यही तो बात है कि जीवन साथी वही होता है जो हमारी हर बात से जरूरी नहीं है कि सहमत हो, है ना?
0: हाँ।
1: बल्कि वो तो ऐसा रिश्ता है जो असहमति के बावजूद उस रिश्ते में मिठास बनाए रखता है।
0: मैं तो कहूंगी यही तो नमक है जिंदगी का।
1: सच बात
0: है ना। तो भाई रसोई की बात हो रही है, मैं देख रही हूँ सोनाली कभी तुम मीठे को लेकर आ रही हो तो कभी मैं नमक डाल रही हूँ, है ना, रिश्तों में भी। तो आज जरा अपने रिश्ते को भी एक मुस्कान दीजिए। हो सकता है किसी एक छोटी सी मैं की जगह अगर आप हम पर आ जाएं तो बहुत सारी सी अनकही दूरियां अपने आप मिट जाएंगी, है ना?
1: और आपको पता है बातों में हमारी नमक और मिठास क्यों आ रही है? सवाल भी तो उसी से जुड़ा है ना?
0: जी बिल्कुल।
1: तो हम अपने दोस्तों की बातें शुमार करेंगे, पहले ये गाना सुनते हैं।

0: देखिए, बागों में फूल खिल रहे थे, फिल्म थी चुपके चुपके, और स्वर थे लता मंगेशकर के साथ मुकेश के।
1: जी, और जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब जो है लगातार आता चला जा रहा है, बहुत सारे जवाब हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो ये कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही हैं, भाई दूध उबल गया है और ये गलती आज तक होती रहती है, अक्सर ही भूल जाती हूँ मैं तो दूध गैस पर रखकर। भाई मिल्क कुकर भी आता है ना कामायनी, तो आप वो ले सकती हैं, और सिम पर अगर करेंगी तो मुझे लगता है दूध

0: लेगा नहीं, है ना।
1: हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से ना मेरे पास भी मैसेज आया है, ये हैं श्यामली से राधा वासु, ये लिख रहे हैं कि शादी के बाद हलवा बनाया था तो इनकी मम्मी जी ने बोला कि सूजी से 2 गुनी चीनी डालना, तो उन्होंने 4 गुनी डाल दी।
0: वाह,
1: तो अब वो हलवा तो नहीं बना, बर्फी जरूर बन गई। तो देखिए बना तो ना कुछ। हाँ, तो अच्छा ही बिल्कुल।
0: और महेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से, और वो कह रहे हैं, सोनाली जी रश्मि जी नमस्कार, अक्सर रसोई में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि चाय का कप चढ़ाकर आप भूल गए, या ऐसा ही कुछ हमारे घर में भी हुआ। भाई कुकर में दाल चढ़ाकर, जो मेरी मिसेज हैं वो पार्क में नीचे चली गई और भूल गई कि कुकर में दाल चढ़ा रखी है। जब याद आया तो घर में आकर देखा कि भाई पूरी तरह से कुकर जल चुका था, और फिर बहुत बुरा लगा उनको। ये सारी गलतियां हो जाती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, कुकर के मामले में सावधान रहना चाहिए। रसोई में वैसे तो सावधानी से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम आग पर खेल रहे होते हैं ना।
1: बिल्कुल, आग से, आग से खेल रहे होते हैं।
0: हालांकि महिलाएं तो आग से खेल सकती हैं, उनको आता है।
1: हम जाबाजों को इसका ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। बच्चे भी होते हैं, ध्यान से काम करना चाहिए।
1: अच्छा देखिए, हम बहुत रोचक सी बातें लेकर के अपने दोस्तों की यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, तो कुछ ना एक रोचक जानकारी मेरे पास भी है, थोड़ी सी अलग हटके है, है ना। और देखिए, किताबों की लाइब्रेरी हमने हर जगह देखी है, है ना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी की बताने वाली हूँ, जानकारी देने वाली हूँ रश्मि जी और अपने दोस्तों के साथ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। और ना इसमें रुद्रप्रयाग का जो जिला है उसका एक छोटा सा गांव है, मणिगुह गांव। ये अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक अनोखी पहचान की वजह से भी आजकल चर्चा में है।
0: भाई क्या है वो खूबसूरत बात,
1: आपको बताऊं? ये ना हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज है। और ना यहाँ एक नहीं बल्कि गाँव के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने के लिए कई पुस्तक मंदिर बनाए गए हैं। कितना सुंदर शब्द है ना, पुस्तक मंदिर, है ना, जहाँ बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं।
0: भाई वाह, ये तो जगह ऐसे लग रही है कि बहुत ही खूबसूरत जगह रही है, जहाँ पे भी पहाड़ों का साथ है और पहाड़ों के साथ साथ पुस्तकों का साथ है। इस गांव की केंद्रीय लाइब्रेरी में 20,000 से अधिक किताबें हैं। इनमें साहित्य, विज्ञान, इतिहास, बच्चों की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और कई भाषाओं का समृद्ध संग्रह भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात ये है सोनाली, यहाँ किताबें पढ़ने के लिए किसी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाता।
1: क्या बात है, देखिए बहुत सुंदर बात है ये। और आपको पता है ना रश्मि जी कि आजकल जब हम मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हमारा ज्यादातर समय ले लेती है।
0: बिल्कुल सही।
1: ऐसे में जो मणिगुह गांव है ना, ये याद दिलाता है कि किताबों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी हमारी सोच को नई दिशा दे सकता है, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और हाँ,
0: और कहते हैं ना कि सोनाली, जिस घर में किताबें होती हैं वहाँ विचार कभी बूढ़े नहीं होते। वाह, और शायद यही बात अब मणिगुह गांव की पहचान भी बन चुकी है।

0: प्रोफेसर फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।
1: और भाई अब एक गलती ऐसी आ चुकी है जो बता रहे हैं उग्रसेन यादव जी दिल्ली से, वो उन्होंने हमें मेल किया है भाई, वो कह रहे हैं चाय के बारे में, जब चाय पी रहे थे तब ये गलती हो गई। हाँ। और कहते हैं कि चाय पीने के लिए सोचा तो मैडम मेरी बिजी थी, तो मुझे लगा बना लेते हैं, सब पत्ती अदरक सब कुछ डाल दिया, लेकिन चीनी के बजाय क्या डाला उन्होंने पता है, नमक। तो फिर उसके बाद मैडम जी ने कहा भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, तो ये हो जाती है भाई गलतियाँ। और कौन सी मजेदार गलती है सोनाली तुम्हारे पास?
0: अच्छा मेरे पास ना देखिए, हमारे नियमित श्रोता है सुदर्शन मुखी जी और अनिता मुखी, सिमरन मुखी है शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि गैस पर दूध रख कर भूल जाना और फिर दूध का गिर जाना ये एक आम भूल हो जाती है, और जिससे कभी कोई भूल नहीं है हुई इसका ये अर्थ हुआ कि उसने ना कभी कोई काम ही नहीं किया। ये भी सही बात है। अच्छा इन्होंने ना एक और चीज लिखी है कि भूल हमेशा काम करने वालों से ही होती है, तो बहुत सही बात है ना?
1: जी, जो काम कर भाई गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, है ना, वो तिफल क्या गिरे जो के घुटनों के बल चले। भाई गलती तो होती है, लेकिन हम गलती से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं।

0: भाई गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, है ना,
1: वो
0: वो तिफल
1: जिसने
0: क्या
1: क्या
0: गिरे
1: गिरे
0: जो के
1: जो
0: घुटनों के बल चले। भाई गलती तो होती है,
1: जी
0: लेकिन हम गलती से सीखते हैं, आगे
1: हाँ
0: बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हम भी आगे बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ। ये मेल हमें आई है चौधरी वासी राजू अग्रवाल केशव, और ये कह रहे हैं कि आजकल मशीनी जमाना है, बिजली के उपकरण वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ी मोटर का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप कहाँ खो गए हैं साहब। हम तो मांग रहे हैं आपसे गलती आपकी, कि भाई क्या गलती की।

0: बात
1: तो वो
0: है,
1: खुश भी
0: भाई
1: होगी इस
0: तुम्हारे
1: बात
0: दिमाग
1: से,
0: की मैं दाद देती हूँ सोनाली। पर मैं
1: है
0: नहीं दे
1: ना।
0: रही जो दाद दे रहे हैं वो कह रहे हैं, गौरीशंकर नागलोई से दाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रश्मि सोनाली आप दोनों बेटियों को मैं राम राम और कहता हूँ, आपके दिमाग की दाद देता हूँ, छोटे छोटे घरेलू सवाल पूछकर सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यानी कि तबीयत खुश हो जाती है, इसीलिए आपका कार्यक्रम सुनने के लिए इंतजार करते हैं। हम चाह रहे हैं साहब कि आप अपनी गलती बताते कि आपने कौन सी मजेदार गलती की।

0: में हरियाली दिखती है ना। एक पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर भविष्य भी जोड़ जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने ना एक नई डिजिटल पहल शुरू की है।
1: और सोनाली, हम सब तो दिल्ली में रहते हैं ना, और पर्यावरण की दिशा में अपना छोटा सा योगदान अगर हम देना चाहते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये ग्रीन ड्राइव पोर्टल शुरू किया है जिससे कि कोई भी नागरिक घर पर
0: पूरा greendrive.dillivanmahotsav.in इस पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
1: क्योंकि भाई जुलाई का महीना चल रहा है, वन महोत्सव का समय है, पौधे लगाने का समय है, तो greendrive.dillivanmahotsav.in पर जाकर पूरी जानकारी हम ले सकते हैं। बस चलते चलते एक बात कहना चाहती हूँ सोनाली, एक पौधा लगाइए लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खूबसूरत बात पता क्या है, उसे बढ़ता हुआ देखना।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: क्योंकि पौधे सिर्फ लगाए नहीं जाते, अपने पन से पाले जाते हैं।
0: देखिए ये तो एक सिलसिला है और इस सिलसिला को बढ़ाते जाइए।

0: हैं। उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं, नमस्ते, जब मैंने पहली बार रसोई में सब्जी बनाई तो नमक डालना ही भूल गया। हाँ भाई, कोई चाय में नमक डाल रहा है, कोई नमक डालना भूल गया, और बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं। और भाई ये सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं मयूर विहार से, वो कह रही हैं रोटी को गोल बनाने चली थी लेकिन वो बन गई पूरे नक्शे जैसी बन गई, और उसके बाद घर वालों ने पता है क्या नाम दिया उस रोटी को, मैप रोटी।
1: कितना क्यूट नाम है ना
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो,
1: और ना आपने जिस तरह से बोला ना मैप रोटी, मुझे अपना एक किस्सा याद आया। मेरे पतिदेव ने भी कोशिश की थी
0: अच्छा
1: रोटी बनाने की। हाँ। वो रोटी बहुत अच्छी अब बना लेते हैं। हाँ। लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले बनाई थी ना, तो खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मैं कौन से देश का नक्शा बनाया था, पर उन्होंने बनाया था। जी जी।
0: और नमक से जुड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं। एक बार एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं कि पहली बार जब खाना बनाया, सब्जी बनाई, तो नमक डालना भूल गई, जैसे उमेश जी भूल गए थे। लेकिन भाई घर वालों ने सबने बड़े प्यार से बिना कुछ कहे खाना खाया, और बाद में बोले उसके उनके हस्बैंड कि क्या आज डाइट वाला खाना बनाया था। जी बिल्कुल।
1: देखिए रिस्पॉन्स बहुत प्यारा था ये वाला।
0: जी
1: और अगले ने अपनी गलती भी समझ ली।
0: हाँ।
1: और कुछ खराब भी नहीं बोला गया।
0: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप हैं रमा, ये हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतक से, कह रही हैं कि एक बार घर में हम दोनों की लड़ाई हो गई पति पत्नी की, और तब मैं सब्जी बना रही थी और मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मेरे मुझसे सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा पड़ गई, और उसके बाद तो ये हुआ कि जिसने भी वो सब्जी खाई उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा देखिए भाई खाना कितना इमोशनल है। जी जी बिल्कुल,
1: ये बहुत अच्छी चीज़ है, इमोशनल खाना,
0: इमोशनल, क्योंकि हम जुड़े रहते हैं ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं तो जुड़ती है ना श्रोताओं के साथ भी जुड़ी हुई है, और जो खाना बनाता है उसकी भावनाएं तो भाई घर वालों के साथ परिवार वालों के साथ जुड़ी रहती है ना, उनके लिए तो वो पलके जो है ना बिछाते हैं, बिल्कुल है ना,
1: पलक पावड़े बिछाते हैं और खूब तरह से प्यार अपना शो करते हैं,
0: है ना। तो पलकों की झालर जो बुनते हैं घर वालों के लिए बुनते हैं ना, और हम अपने श्रोताओं के लिए।

0: संवेदनशीलता और सम्मान का समानता के संस्कार दिए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, और सोनाली सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा से नहीं है बल्कि ऐसा वातावरण भी है जहां डर हर महिला बिना डर के अपनी बात कह सके, पढ़ सके, काम कर सके, यात्रा कर सके,
0: बिल्कुल सही,
1: और अपने सपनों को पूरा कर सके।
0: बिल्कुल, और इसी कहते हैं कि जहां पर एक जिम्मेदार नागरिक होगा तो समाज भी उतना ही जिम्मेदार बनेगा, और तभी हमें उचित सहायता और कानून का साथ देना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल, भाई अगर किसी महिला के साथ आप अन्याय होता देखें या दुर्व्यवहार होता देखें तो आप चुप ना रहें, है ना, और कानून का साथ दें, और छोटी सी जागरूकता, समय पर की गई मदद और आपका संवेदनशील व्यवहार किसी का जीवन बदल सकता है। तो हम क्या कहोगी चलते चलते?
0: बस यही कहूंगी कि महिला सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। और महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी परिवार मजबूत होगा, समाज आगे बढ़ेगा
1: और देश सशक्त होगा।

0: कुमार जी कह रहे हैं कि सब्जी बनाते हुए सब्जी में नमक तेज हो गया और मैंने सब्जी में फिर चीनी मिलाई ताकि बैलेंस। भाई वाह, ये तो कुछ गुजराती मतलब डिश बन गई है ना, व्यंजन बन गया है ना। तो हम कहेंगे अकेले अकेले मत जाइए, थोड़ा सा पत्नी से पूछ कर काम कीजिए, अच्छा रहेगा।
1: और इसी के साथ ना हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि बहुत बार ये होता है कि हम सब हंसी मजाक में बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो होता है कि हमारी ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो मोबाइल फ़ोन में सिमट गया है। बैंक खाते से लेकर के UPI हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया, तस्वीरें और हमारे तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ सब हमारे मोबाइल में हमारे हाथ में रहते हैं, है ना?
0: जी बिल्कुल। और हालांकि पासवर्ड तो लगाते हैं, लेकिन सवाल केवल पासवर्ड का नहीं है बल्कि डिजिटल जिम्मेदारी का भी है। आज कई लोग अपनी जरूरी जानकारी किसी भरोसेमंद परिजन के साथ साझा करने, महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित रखने और जहां तक संभव हो डिजिटल नॉमिनी या लीगेसी जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। भाई देखो, इतने कठिन समय में परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: बिल्कुल, लेकिन ना इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पासवर्ड सबको बताते जाएं, है ना, बल्कि जरूरी यह है कि समय रहते अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की योजना बना ली जाए, है ना।
0: बिल्कुल, आखिर हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहेज कर रखते हैं, तो अपनी डिजिटल विरासत को भी थोड़ा व्यवस्थित करके रखिए भाई। और हो सकता है ये छोटी सी तैयारी

0: दिल्ली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो यहाँ।
1: और हमारे साथ राजेश राव जी कह रहे हैं कि भाई एक बार मैंने खिचड़ी बनाई और वो बिल्कुल ख़राब हो गई, तो मैं अच्छे से तैयारी करके नहीं गया, ऐसा वो कह रहे हैं, गलती
2: और देखिए आपने गौरीशंकर जी से कहा था ना कि आपने कुछ गलती बताइए, है ना। हाँ। तो हमें मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनसे चाय बनाते हुए करीब 20 साल हो गए हैं, शुरू में तो ख़राब बनी थी, बाद में आदत पड़ गई और अब उनकी घरवाली कहती है चाय आप ही बनाया करो, क्योंकि उनकी जैसी अच्छी चाय कोई और नहीं बनाता।
1: और महावीर कॉलोनी सोनीपत से संजय।

0: कि आप अपने पासवर्ड सबको बताते जाएं, है ना, बल्कि जरूरी यह है कि समय रहते अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की योजना बना ली जाए, है ना।
1: बिल्कुल, आखिर हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहेज कर रखते हैं, तो अपनी डिजिटल विरासत को भी थोड़ा व्यवस्थित करके रखिए भाई। और हो सकता है ये छोटी सी तैयारी किसी मुश्किल समय में आपके अपनों के बहुत काम आ जाए, सोनाली, है ना।

0: देखिए जाना तो हमारी बनता ही है, जिम्मेदारी भी बन जाती है,
1: क्योंकि समय कह रहा है कि समय हो चुका है, जाइए कल फिर आने के लिए।
0: बिल्कुल कल फिर आने के लिए। तो बस इस कार्यक्रम यानी घर आंगन से मुझे सोनाली
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum.

0: Momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration.
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today. The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event at the Istana Merdeka. Lok Sabha Speaker Om Birla and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have congratulated Prime Minister Modi on being conferred Indonesia's Medal of Honour. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy, expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament. President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kogde and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July 26, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. Mizoram's Natural History Museum has been notified as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the institution as a designated repository based on the recommendation of the National Biodiversity Authority. Designated repositories constitute an important component of India's biodiversity governance framework by preserving authenticated biological specimens. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Benchmark domestic equity indices were trading in positive zone during the afternoon session today. The Sensex climbed 132 points to 78,417, while the Nifty advanced 33 points to 24,463 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं। वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं, आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म से और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम है, तो भाई आज इस कार्यक्रम में फिल्म भी ऐसी ही हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। तो घड़ी की सुइयों को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, साल होगा सन 1990। जी हाँ दोस्तों, जब थिएटर के बाहर लगी थी लंबी लंबी लाइनें और हर ऑटो, हर दुकान, हर रेडियो पे, हर घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन गूंज रही थी और वो गूंज थी इसी फिल्म के गीत, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। जी हाँ दोस्तों, पहचान गए होंगे ना आप बिल्कुल इस गाने को सुनकर। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के लिए चुनकर लेकर आए हैं डायरेक्टर इंद्र कुमार की उस यादगार फिल्म को जिसने रोमांस कॉमेडी ड्रामे से एक नई परिभाषा लिखी, फिल्म दिल। 36 फिल्म फेयर पुरस्कारों में दिल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 8 नॉमिनेशन इस फिल्म को मिले। और यही वो फिल्म जिसके लिए माधुरी दीक्षित ने जीता अपनी लाइफ का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वो पुरस्कार जिसकी हर कोई अभिलाषा रखता है। और दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु में भी बनाया गया 1993 में थोलू मुद्दू के नाम से, और इस फिल्म को कन्नड़ में भी बनाया गया शिवरंजनी के नाम से। और ये जिस भी भाषा में ये फिल्म बनी है, हर भाषा में इस फिल्म ने कुछ कमाल ही कर दिखाया है। तो दोस्तों आज का सफर फिल्म दिल के नाम, तो करते हैं शुरुआत अनुराधा पौडवाल की प्यारी सी आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

बिल्कुल, यादों में तो खो गया होगा आपका भी दिल, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी उतने ही मजेदार थे इस फिल्म के किरदार। राजा यानी कि हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, और मधु यानी कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। कॉलेज की नोकझोंक, वो तकरार, और फिर धीरे धीरे उस नफरत का प्यार में बदल जाना। अनुपम खेर और सईद जाफरी की वो अमीर गरीब की टक्कर, और समधी बनने का वो अनोखा ड्रामा। क्यों, आ गई ना यादें? ताज़ा हो गई होंगी बिल्कुल यादें। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे सफर में उन्हीं यादों को ताज़ा करने वाले हैं। समीर साहब के लिखे गीत, आनंद मिलिंद के संगीत से सजे हुए इस फिल्म के खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम लेकर आए हैं फिल्म दिल, 1990 की फिल्म दिल, जिसकी स्टार कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, खासकर आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के बारे में, तो इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे भी बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी इस पहली फिल्म के लिए एक ऐसी जोड़ी चाहते थे जो कि यूथ को अट्रैक्ट करे, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो उसको अपनी तरफ लाए और उस फिल्म देखने के लिए, और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक की जब बहुत तगड़ी सफलता मिली आमिर खान को, तो भाई रातों रात वो तो बन गए थे यूथ आइकन और चॉकलेट बॉय बन गए थे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो लगते थे इसमें। और डायरेक्टर इंद्र कुमार एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो कि कॉलेज का शरारती लड़का भी लगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वो एक संजीदा प्रेमी का भी किरदार निभा सके, यानी कि दोनों तरह के किरदारों में फिट बैठे। और आमिर खान तो ठहरे भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो वो तो उसमें ढलना उनका तो लाजमी था। और वाकई में आमिर खान की जो इमेज है और जो उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स हैं, उनको देख करके उन्होंने राजा के किरदार के लिए तुरंत फाइनल किया आमिर खान को। लेकिन माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में साइन करने से पहले उन्होंने बहुत सी अभिनेत्रियों के बारे में सोचा, लेकिन उस वक्त उस दौर में माधुरी दीक्षित की तेजाब, त्रिदेव जैसी जो फिल्में थीं वो

साइन करने से पहले उन्होंने बहुत सी अभिनेत्रियों के बारे में सोचा, लेकिन उस वक्त उस दौर में माधुरी दीक्षित की तेजाब, त्रिदेव जैसी जो फिल्में थीं वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी और उन फिल्मों के बाद माधुरी दीक्षित काफ़ी अच्छे स्टारडम में छाई हुई थी। यही सोच करके इंद्र कुमार ने

जी दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म दिल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हमने किरदारों की बात की इस फिल्म में, जो किरदार थे उनके बारे में अगर हम बात करें, तो हजारी प्रसाद को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की जान आमिर खान के कंजूस और लालची पिता का किरदार निभाया इस फिल्म की, आप एक तरह से कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी था ये किरदार, और ये किरदार निभाया अनुपम खेर ने। हजारी प्रसाद बने आमिर खान के पिता, और इस रोल के लिए इंद्र कुमार चाहते थे कि एक ऐसा कलाकार हो, एक ऐसा मंझवा कलाकार हो जो विलन भी दिखे, लालची भी दिखे, और अपनी हरकतों से वो लोगों को हंसाए भी, यानी कि उन्हें चाहिए था एक कॉमिक विलन। और अनुपम खेर जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो भाई वो तो एकदम फैन हो गए इस स्क्रिप्ट के। और अनुपम खेर जो कि अपनी वर्सटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि भाई इस किरदार को वो एक अलग अनोखे अंदाज में निभाना चाहेंगे, लाउड तरीके से इसको बनाएंगे। और देखो जो किरदार उन्होंने निभाया, वाकई में वो किरदार आगे चलकर बन गया एक आइकॉनिक किरदार। यानी कि अगर हम बात करें इस फिल्म की और हजारी प्रसाद के बारे में, अगर बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हम इस फिल्म के दूसरे किरदार की बात करें, वो दूसरा किरदार जिसे निभाया सईद जाफरी साहब ने, दिग्विजय सिंह का किरदार, जो कि माधुरी दीक्षित के पिता का किरदार उन्होंने निभाया, जो कि बहुत अमीर है लेकिन घमंडी है। और सईद जाफरी की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम अमीर घमंडी जैसी लगती है और उनके ऊपर सूट करती है, और उस पर उनकी कड़क आवाज़, आलीशान सूट पहने हुए वो रौबदार तरीके से उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया और उस किरदार में जान फूंक डाली। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पूरी फिल्म में अनुपम खेर और सईद जाफरी के बीच में जो भी टकराव हुए या समधी बनने वाले जो सीन्स रहे हैं, वो जो ड्रामा रहे, वो एकदम से नेक्स्ट लेवल रहे, एकदम अलग टाइप के रहे। और वाकई में जब भी वो लोग स्क्रीन पे आते थे ना, गुस्सा भी आता था लेकिन हंसी भी ज़रूर आती थी। और शायद यही वजह थी कि इंद्र कुमार ने इस फिल्म में जिस तरीके से किरदारों का चयन किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। और जिस तरह से उन्होंने आमिर और माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए चयन किया, जिस तरह से अनुपम खेर को चुना, सईद जाफरी को चुना, वाकई में, और यही वजह थी कि इन सभी ने थिएटर में आग लगा दी। और शायद यही वजह थी कि सन 1990 की सबसे ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी दिल।

कानपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन हमारे साथ जुड़े हैं नाजिया इब्राहिम के साथ, नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दादा बाहू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा हसन, नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील पाठक, कमल गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीरगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी, और लिखते हैं कि मैंने फिल्म बहुत बार देखी है और इस फिल्म का जो गीत संगीत है वो भी हमें बहुत पसंद है। जी हाँ अजीत जी, इस फिल्म का जो संगीत है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजित भावसर जी ने बहुत ही खूबसूरत जो जानकारी वो हम तक पहुँची आई है, लिखते हैं कि जो डांस नंबर है दम दम आदम उसमें काम करने के लिए शुरुआत में आमिर खान ने मना कर दिया था, आमिर का मानना था कि माधुरी दीक्षित जो है वो उस समय की बेहतरीन डांसर थी और उनके सामने डांस करना कमज़ोर दिखना था जो कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इंद्र कुमार ने उनको राज़ी किया। तो अभी हम आपको वो गीत भी सुनवाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी ये खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सुतार, मनोज, हिमांशु सुतार हमारे साथ जुड़े हैं, नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल छीपा, पूजा परिहर के साथ, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाई है। ज्योति मक्कर, मन्नत भरत, कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो अगला संदेश उसको भेजने वाले हैं, अपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी और उनका पूरा परिवार, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगले संदेश के साथ जुड़े हैं हमारे साथ इशाक मोहम्मद जी, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से, खतीजा बेगम के साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू के साथ, और ये अगला संदेश भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा जी, ग्राम ममना से, इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुँचाया है और इसको पहुँचाने वाले हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला संदेश है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का, अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उषा मोहन टिल्लू नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो जुड़े हुए हैं, जनकपुरी सहारनपुर से, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, राधे दीपक जी जुड़े हुए हैं और कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, बसना भावरपुर से राजू देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और दोस्तों अगला संदेश जो हमारे पास है इसको भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद जी, संदेशों की जो घड़ी है वो बहुत सारी है लेकिन अब जो घड़ी की सुइयां वो इशारा करें कि मुझे आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन याद रखिए ये जो गीतों का, फिल्मों का सफ़र, ये जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। 2:30 पर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगी आप सभी की प्यारी दोस्त अंजू पांडे। तो दोस्तों रेडियो यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

जी दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। स्वन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर गुरलाल, अभिराज हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से, गांव कुमारहेड़ा सारा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों इंडोनेशिया दे राष्ट्र

0: भावना की सच्ची भावना नूं बरकरार रखण ते अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करके इतिहासक मुकाबले का माण होर वधाउण की अपील की।
1: हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: राष्ट्रपति ने इस गल ते भी खुशी जाहर की कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल ते शिलांग तो इलावा इस साल का डुरंट कप रांची विच भी करवाया जा रहा है। सारवें राष्ट्र युवा संसद मुकाबले 2024-25 यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां लई वख-वख मुकाबलियां च 7 विचों पंजाब के 2 ते हरियाणा के 1 विद्यक अदारे नूं जेतू ऐलानिया गया। पंजाब स्थित संस्थावां च डीवी कॉलेज जलंधर ते बठिंडा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी पंजाब, जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा तो है। देश दीआं 51 यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां विचों इह 7 संस्थान चुने गए ने। इनाम वंड समारोह अज नवीं दिल्ली च जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम संसद भवन कॉम्पलैक्स विखे करवाया जा रहा है। कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ते संसदीय मामलों के राष्ट्रमंत्री इस समागम की प्रधानगी करनगे ते इनाम जेतू यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां ते विद्यार्थियों नूं मुकाबले च शानदार प्रदर्शन लई इनाम देणगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खात्या नाल जुड़े शक्की फंडा ते अनियमित वित्तीय लैण देण के मामले च अज कोलकाता ते उसके आले दुआले के 5 ठिकाणियां ते छापेमारी की है। एजेंसी वालों की गई शुरूआती जांच तो पता लगे कि 150 करोड़ रूपये तो वध की वड्डी रकम शक्की उद्देशां लई हवाबाजी ते यात्रा कंपनियां राहीं भेजी गई सी। श्री अमरनाथ यात्रा का 6वां जत्था अज सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप तो सख्त सुरक्षा हेठ रवाना किया गया। साडे पत्रकार ने दस्या कि कुल 8,815 श्रद्धालु पवित्र गुफा लई रवाना होए। इन्हां विचों 3,999 श्रद्धालु बालटाल रूट राही अते 4,826 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग राही रवाना होए ने। दोवां रस्तियां ते श्रद्धालुआं दी सुरक्षा यात्रा नूं यकीनी बनाउण लई पुलिस, सीआरपीएफ ते होर सुरक्षा एजेंसियां नूं तैनात किया गया। भारत कल तो केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 रोजा ब्रिक्स महिला मंत्री पदरी मीटिंग की मेजबानी करेगा। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने दस्सिया कि इस मीटिंग दौरान ब्रिक्स मैंबर देशां दे मंत्री सहयोग नूं मजबूत करनगे ते आपो अपने ब्रिक्स चेयरपर्सनां दी अगवाई हेठ औरतां दी अगवाई वाले विकास लई इक सांझे दृष्टिकोण नूं अगे वधाउणगे। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा ते कुछ इलाकियां अते चंडीगढ़ विच अज तो 9 जुलाई तक भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। इस तो इलावा 11 ते 12 जुलाई नूं भी इन्हां खेतरां च भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। इस दौरान पंजाब के जलंधर समेत कई थावां ते अज दरमियानी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे दौरान बठिंडा च वध तो वध तापमान 39.1 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। भारतीय हाकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह परिवार समेत आज पंजाब के अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक हुए। उन्होंने विश्व कप के सिखलाई कैंप लई बेंगलुरू रवाना होने तो पहला गुरू घर का आशीर्वाद लिया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हरमनप्रीत सिंह ने कहा,
2: ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਆ ਯੂਰਪ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
0: क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड दरमियान 5 2020 मैचां दी लड़ी दा तीजा मैच अज नॉटिंघम च खेडिया जावेगा। यह मैच भारतीय समय मुताबिक राती 10 बजे शुरू होवेगा। मेजबान इंग्लैंड ने शनिचरवार नूं मैनचेस्टर विच खेडे गए दूजे 2020 मैच विच भारत नूं 4 विकटां नाल हराया। इस तों पहलां दोवें टीमां विचकार पहला 2020 मैच मीह कारण ड्रा रहा सी। आखिर च खास खबरां इक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वल्लों इंडोनेशिया दे राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो नाल वफद पदरी गलबात। दोवां नेतावां ने आपसी हित दे खेतरां च सहयोग वधाउण लई कई समझौतियां ते दस्तखत कीते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया दे सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपूर्णा नाल सम्मानित कीता गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवीं दिल्ली च डुरंट कप टूर्नामेंट 2026 दीआं ट्राफियां दा उद्घाटन कीता ते उन्हां नूं रवाना कीता। यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां लई 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबले 2024-25 लई इनाम वंड समारोह अज नवीं दिल्ली च। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा अते चंडीगढ़ च अज तों 9 जुलाई तक भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी कीता। अते भारत ते इंग्लैंड दरमियान 5 2020 मैचां दी लड़ी दा तीजा मैच अज नॉटिंघम च राती 10 बजे खेडिया जावेगा। इस दे नाल ही राष्ट्र खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शामी 6:20 ते। नमस्कार।
3: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो

के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिनतांग अदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जुनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नॉटिंगम में तीसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वफद की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।

जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनती इश्तराक को वसत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमयाब ज़मीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निज़ाम से मरबूत हो जाएगी जिससे तिजारत और सफ़र में दोनों में ही मज़ीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल

0: एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवांतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के नजरियात से गहरे तौर पर मुतासिर था।
1: हम दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितंग अधिपुरना से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकत दारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वजीर आजम के तआवुन के एतराफ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितंग आदिपुरना से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकतदारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई कोकजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरस कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरेन कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफान बारिश हुई और तेज हवाएं चली। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि शिमाल मगरबी मानसून के शिमाली बहरे अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नोटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलावामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा।

और आखिर में खास खास खबरें। एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बितंग आदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर

0: करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है।

0: मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:30:14 और ये वक्त है उस प्रोग्राम का जिसका आपको हर रोज इंतजार रहता है, प्रोग्राम एक ही कलाकार। तो पहले सुनते हैं ये संदेश, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: 5 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर में, जहां धुनें सिर्फ बनाई नहीं जाती थी बल्कि दिलों में बस जाया करती थी। जी हाँ, और आज हम चुन कर लाए हैं फिल्म संगीत के एक ऐसे महान संगीतकार को जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत का, जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है, जब आप गीत सुनेंगे तो आप इन्हें पहचाने बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सितारे हैं उस दौर के जिन्हें आज भी लोग उतना ही प्यार देते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अनिल विश्वास की, जो कि हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकार थे। भारतीय फिल्म संगीत का एक मजबूत आधार तैयार करने वालों में इनका नाम भी आता है। प्रेम से इन्हें अनिल दा भी कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का ऐसा सुंदर मेल इन्होंने तैयार किया जो आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत की दिशा को ही उसने बदल दिया। सुनते हैं सबसे पहले एक खूबसूरत सा गीत इनके ही संगीतबद्ध किया हुआ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455

7 जुलाई 1914, 12 साल जो कि अब बांग्लादेश में है, जहां जन्म हुआ अनिल दा का। बचपन से ही संगीत का गहरा लगाव था, वो तबला बजाने में भी निपुण थे। जब बड़े हुए तो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े और यहां तक कि वो जेल भी गए। बाद में कोलकाता पहुंचे और उसके बाद मुंबई, पहले नाम था बम्बई, और यहां आकर फिल्म संगीत में अपना सफर इन्होंने शुरू किया।

अनिल दास से पहले फिल्मों में संगीत अपेक्षाकृत सरल हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बड़े ऑर्केस्ट्रा, मधुर काउंटर मेलोडी और शास्त्रीय संगीत का ऐसा समावेश किया कि फिल्मी संगीत का स्तर ही बदल गया। यही वजह है कि उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के आधुनिक युग का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने अनेक नए कलाकारों को भी मौका दिया। कहा जाता है कि मुकेश के करियर को पहली पहचान दिलवाने में अनिल दा का ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिल्म पहली नज़र का गीत दिल जलता है तो जलने दे, ये गीत आज भी अमर है। कुछ ही देर में इस गीत को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके पहले हमने लिया है फिल्म किस्मत से अगला गीत, जो कि 1943 में आई थी। इस गीत को ब्रिटिश सेंसर से बचाने के लिए चतुराई से लिखा गया था, लेकिन जनता ने इसके भीतर छिपे देशभक्ति के संदेश को तुरंत पहचान लिया। सिनेमाघरों में इस गीत पर तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती थी।

दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि आज भी इस गीत को सुनते हैं तो वही जो जज्बा था वो फिर से उभर आता है। उसके बाद आया 1950 का दशक। अनिल दा ने दर्द, प्रेम और मधुरता को सुरों में ढाल दिया। फिल्म आरजू का ये गीत आज भी दिलों को छू लेता है, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। इसके बाद कई सारी फिल्में आईं। तराना आई जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी और संगीत ऐसा था कि आज भी उसकी मिठास बरकरार है। सुनते हैं ये तलत महमूद साहब की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये गीत।

अनिल विश्वास कलाकारों से घंटों रियाज करवाते थे। उनका कहना था कि यदि शब्दों का भाव आवाज में नहीं उतरा तो धुन अधूरी रह जाएगी। उन्होंने एक युवा गायक पर भरोसा किया जिसकी आवाज में दर्द था, मिठास थी और अपनापन था। ये गायक आगे चलकर भारतीय संगीत का बड़ा सितारा बना। जी हाँ, मुकेश इनका नाम था और आपने कई सारे गीत इनके सुने हैं और आपकी फेवरेट लिस्ट में भी कई सारे गीत इनके हैं। अनिल दा का जो संगीत था वो कभी शोर नहीं करता था, वो धीरे धीरे मन में उतरता था और यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं।

अनिल दास सिर्फ संगीतकार ही नहीं थे, वे खुद भी बहुत अच्छे गायक थे। फिल्म रोटी जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने गाना गाया था कौशल्या कंदन राम। और फिल्म ज्वार भाटा जो कि 1944 में आई थी, जिसमें दिलीप कुमार ने डेब्यू किया था, यहाँ पर भी उन्होंने एक गाना गाया था। उनको संगीत के पारखी बड़े चाप से सुनते थे। अनिल विश्वास की पत्नी और मशहूर गायिका मीना कपूर की आवाज़ में भी गाने गाए हुए हैं। हम आपको

दोस्तों, फिल्मी दुनिया से 1960 के दशक में जब फिल्म संगीत का मिजाज बदलने लगा था तो वो कुछ निराश हो गए थे। वो दिल्ली आ गए और ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर बन गए। बाद में उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक हम लोग, जो कि 1984 में आया था, इसका टाइटल म्यूजिक भी तैयार किया। 31 मई 2003 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं, वक्त है कि उन संदेशों को भी हम शामिल कर लें। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्ला बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा जी दादा बाबू रोड गिरही झारखंड से जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप पुल गाँव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं। और सहारनपुर से सैयद मसरून हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश हमारे पास है वो छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल का आया हुआ है। संदीप मक्कर ज्योति जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फागुन राम, ज्योति ओजस्वी जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है ये हमारे पास पहुँचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा परिहार का। और अजीत भापसर जी ढेर सारी जानकारी के साथ, प्रमिला जी के साथ वीरनगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव ऋषभ सा राम सहोदर जी हैं। और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, अशोक कुमार सहगल शालीमार बाग से, तुलसी मस्किन बीना जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु जी जुड़े हुए हैं। कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार डॉली बेबी पूजा जी हमारे साथ हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकेस्टो रोजी पर्ल जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन ओषा, मोहन चिलू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं। रविंद्र मोहन और किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ जुड़े हुए हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन जी हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं। संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तख्ती और अली मुजफ्फर अली जी जुड़े हुए हैं। फारूक अली जी का भी संदेश हम तक पहुँचा है और ये संदेश सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा धन्यवाद करते हैं कि आप इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बने हैं। और अगर कुछ नाम रह गए हों तो हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है।

दिलों में जीवित है। भारतीय फिल्म संगीत पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। इस महान संगीतकार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगले मुलाकात में फिर एक नए सितारे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज का। दोस्तों, अगर हम ब्लैक एंड वाइट की बात करें या शुरुआती कलर सिनेमा के उस दौर की बात करें जब बॉलीवुड का गोल्डन एरा यानी कि सुनहरा दौर जिसे हम कहते हैं वो शुरू हुआ, 50 और 60 के दशक का वो वक्त जब फिल्मों में गाने का और गानों में डांस का एक अलग ही जादू था और इस जादू को पर्दे पर बिखेरने वाली थी हमारी डांसिंग क्वींस। तो आज का जो हमारा ये मैटनी मेलोडी कार्यक्रम है वो समर्पित है उन्हीं डांसिंग क्वींस के लिए, उन्हीं सदाबहार अभिनेत्रियों या कहें कि नृत्यों को जिन्होंने अपने कदमों की थाप पर पूरे देश को किया मजबूर थिरकने पर। और कोई भी कैसे भी बैठा है और वो ये गाने सुने तो वाकई में नाचने को मजबूर हो जाता है। तो चलिए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत उस नाम से जिन्हें बॉलीवुड में कैबरे और आइटम नंबर की नींव रखने वाली पहली डांसिंग क्वीन कहा जाता है। जी हाँ, वो हैं कुकू मोरे। कुकू मोरे जो कि 40 और 50 के दशक में एक डांसिंग क्वीन के रूप में उभरी और यही वो कुकू मोरे हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डांस या कैबरे की शुरुआत की। एक वक्त था जब उन्हें रबर गर्ल के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी नायाब डांसर जिन्होंने आगे चलकर रचा इतिहास। तो लीजिए सुनते हैं कुकू मोरे का वो आइकॉनिक गाना फिल्म आवारा से।

0: गया। हाय महका
1: जी बिल्कुल दोस्तों, ये गीत एक ऐसा गीत है जो आज भी उतनी ही लोकप्रियता रखता है जितनी उस दशक में रखा था। 50 से 60 के दशक की अगर हम

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट दोस्त प्रीति। हम बात कर रहे हैं आज वो कैबरे डांसर या कहें कि उन डांसिंग क्वींस के बारे में जिन्होंने हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमने बात की 50 से 60 के दशक की और अगर हम बात करें 60 से 70 के दशक की तो उस दौरान पर्दे पर आई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बोल्डनेस, कशिश, जबरदस्त डांस स्टेप से स्क्रीन पर आग लगा दी। जब वो पर्दे पर आती थी तो दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो जाते थे। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की ओरिजिनल मोना डार्लिंग की, यानी कि बिंदु की। बिंदु ने जब फिल्मों में कदम रखा उस वक्त वो विलेन की प्रेमिका या फिर वैम्प के रूप में आई और उन्होंने इस किरदार को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और साथ ही साथ उनका जो डांस था वो सिर्फ थिरकन नहीं था बल्कि उनकी आंखों के इशारे, उनकी कातिलाना अदाओं ने उस पूरे कहानी की, उस पूरे गाने की कहानी को बदल डालती थी। तो लीजिए चलते हैं सीधे 50-60 से 60-70s में और सुनते हैं आशा जी की आवाज़ में फिल्म जंजीर से ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आपने सुना अभी ये खूबसूरत सगी जंजीर फिल्म से हम बात कर रहे हैं हमारी डांसिंग क्वींस के बारे में, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित वयाल, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए शांतिनगर सोनीपत से। नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल दिवांगन, सावित्री बाई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं डीबी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से। अगला संदेश आया है वीरगांव गुजरात से अजित भावसर, प्रमीला भावसर जी का, और लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में कुकू हेलन जैसी अन्य पुरानी डांसर अभिनेत्रियों पर प्रोग्राम चल रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपर कोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवास, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक अच्छी लंबी सारी रिसर्च करके लिस्ट भेजी है, हेलेन, अरुणा ईरानी, बिंदु, जयश्रीटी, फरियाल, कुकू जैसी जो स्पेशल प्रमुख डांसर थी उनके बारे में उन्होंने लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी खूबसूरत जानकारी के लिए। सुदर्शन मुखी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और ये थे दोस्तों वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज में। हम बात कर रहे हैं डांसिंग क्वींस के बारे में। 60s-70s के दशक में अगर हम बात करें डांसिंग क्वीन के सफ़र की, तो हेलन का विदेशी ग्रेस था, वहीं बिंदु की थी कातिलाना।

लेकिन इसी दौर में एक ऐसी डांसर कम एक्ट्रेस भी आई जिसके डांस में गजब का देसीपन, कमाल की फुर्ती और एक ऐसी एनर्जी थी जिसे देखकर जो भी दर्शक थे वो अपनी सीटों पर झूमने लगते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरफनमौला कलाकार अरुणा ईरानी की। अरुणा ईरानी जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन 70 का दशक आते आते उन्होंने अपने डांस के दम पर एक ऐसी पहचान बनाई कि उस दौर के हर बड़े कलाकार की पहली पसंद बन गई अरुणा ईरानी। तो दोस्तों, अरुणा ईरानी की डांसिंग स्किल्स और जो उनकी एक्टिंग स्किल्स थी, अगर उनकी बारे में बात करें तो वो लाजवाब थी। जिस भी फिल्म में अगर वो होती थी, उनका डांस नंबर होता था, तो उस फिल्म का हिट होना अपने आप में एक पैमाना होता था कि ये फिल्म हिट जाएगी। तो दोस्तों, अरुणा ईरानी जी के ही एक खूबसूरत से गीत के साथ, एक खूबसूरत से डांसिंग नंबर के साथ, अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस खूबसूरत से कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत कारवां फिल्म से लता जी की आवाज़ में। इसी के साथ अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 3:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

सामीन, गुज़श्ता दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में मौलाना सैयद काब अरशद रशीदी की तसनीफ आईन हिंद एक फिक्री मुताला की रस्म इजरा की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इल्मी, दीनी, कानूनी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और किताब को मौजूदा दौर में आईनी शऊर की बेदारी के लिए अहम करार दिया। अपने खिताब में मौलाना सैयद अरशद रशीदी ने कहा कि आईन हिंद वो दस्तावेज़ है जो मुख्तलिफ मजाहिब, अफकार और नज़रियात रखने वाले मुल्क के अवाम को एक धागे में जोड़े हुए है। एडवोकेट एच आर खान ने कहा कि मुसन्निफ ने पेचीदा आईनी मबाहिस को सादा और आम फहम जबान में बयान किया है, जिससे आम कारी भी आईन के बुनियादी निकात को आसानी से समझ सकता है। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने किताब की इफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये तसनीफ आईन फहमी और जमहूरी अकदार के फरोग में मुआविन साबित होगी। सामीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता सत्यवती कॉलेज के शोबे उर्दू में तालीमी साल 2026-27 के दाखिलों का अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन के जरिए मुल्क भर के तलबा व तालिबात से अपील की गई है कि वो CUET के जरिए BA उर्दू ऑनर्स, BA प्रोग्राम हिस्ट्री उर्दू और BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस उर्दू में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। वाज़ेह रहे कि CUET ने 26 जून 2026 को दाखिलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दाखिले का अमल शुरू कर दिया है। शोबे उर्दू सत्यवती कॉलेज में भी मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है।

शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट और गालिब इंस्टीट्यूट के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले इस सेमिनार का मकसद इमाम शाह वली उल्लाह की इल्मी व फिक्री मीरास को खराज तहसीन पेश करना और उसे उजागर करना था। तकरीब की निजामत सीनियर सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी ने की। सीनियर सहाफ़ी सुहैल अंजुम ने शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट का तारुफ कराया और मजमूहाए रसाइल इमाम शाह वली उल्लाह की 10वीं जिल्द का इजमाली तारुफ पेश किया। तकरीब की सदारत गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान क़िदवई ने की। उन्होंने मुफ्ती अताउर रहमान की मिसाली इल्मी खिदमात को सराहा और डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान को इस बावक़ार एजाज़ पर दिली मुबारकबाद पेश की।

मानो अदब का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, इंसान दोस्ती, रवादारी और असली हिस्सियत को जिस खूबसूरती से बयान किया, वो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशाले रहा रहेगी। उनकी गजलों ने उर्दू शायरी को अवामी सतह पर मकबूलियत अता की। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि डॉक्टर बशीर बद्र सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक तहजीबी और अदबी रिवायत के

सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शबो रोज़। तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब भारत के 140 करोड़ लोग और इंडोनेशिया के 29 करोड़ लोग साझा प्रगति की दिशा में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल

0: स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपील खारिज कर दी। उन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को भी बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में एटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 और स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच और रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon, highlighting the growing partnership between the two nations. Mr. Modi said, India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
1: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
2: The Prime Minister said India and Indonesia are working closely to counter terrorism through the joint working group mechanism. He reaffirmed India's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific and stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the region. Mr. Modi also said the reforms of the United Nations Security Council can no longer be delayed. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President Prabowo in Jakarta, Prime Minister Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
1: 2018 mein bani hamari comprehensive strategic partnership aaj ek nayi udaan le rahi hai. Hum development, security, technology, culture aur education har kshetr mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai aaj se भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा.
2: The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है. ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है.
2: इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD has said that conditions are favorable for southwest monsoon to further advance into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat and the remaining parts of Haryana and Punjab and Rajasthan during the next 3 days. The Weather Department forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today. The Enforcement Directorate today conducted searches at 5 premises in and around Kolkata in the case of dishonest financial dealings and routing of suspected funds in the bank accounts of Trinamool Congress. The preliminary investigation by ED has revealed that huge funds of more than 150 crore rupees have been routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. Benchmark domestic equity indices gave up the initial gains and ended on a negative note today. The Sensex dropped 104 points to close at 78,181. The Nifty slipped 32 points to settle at 24,399. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ

0: points to settle at 24,399. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4:10 हुए हैं और वक्त

चक्की वाली गली, घामटोज, जिला गुरुग्राम। इनकी उम्र 8 वर्ष है। शरीर की बनावट हष्टपुष्ट, कद 3 फीट, ठोड़ी के नीचे निशान चोट का है, सेहतमंद हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं SHO पुलिस स्टेशन भोंडसी गुरुग्राम से। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है शमोना, पुत्री मुस्ताक अली।

थाना इकोटेक गौतम बुद्ध नगर से। अगले गुमशुदा व्यक्ति की जो सूचना हमें मिली है वो मिली है थाना कासना गौतम बुद्ध नगर से। इनका नाम है दीप्ति, पुत्री बिंटू निवासी सलेमगढ़ थाना जहांगीराबाद बुलंदशहर। इनकी उम्र 19 वर्ष है। इनकी उम्र 19 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत, जिस्म कद 5 फीट 2 इंच। इनके शरीर के लिए कोई विशेष निशान की पहचान नहीं है। इनके विषय में अगर कोई भी आपको सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक शिवांग, उपाध्यक्ष थाना कासना गौतम बुद्ध नगर से। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है बबुंती देवी, पत्नी स्वर्गीय उमाशंकर सिंह, फ्लैट नंबर 101 लॉरियल प्रोजेक्ट, शाहबेदी पुलिस स्टेशन बिसरक गौतम बुद्ध नगर से। इनकी उम्र 70 वर्ष है। कद 5 फीट 4 इंच। आंख के नीचे गाल पर काला तिल है। घर से बिना बताइए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं आशीष चौधरी, उपनिरीक्षक जांचकर्ता थाना बिसरक कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। सेंट्रल नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है विभा कुमारी सिन्हा। इनकी उम्र 38 वर्ष है। इकहरा दुबला पतला शरीर, कद 5 फीट 2 इंच। ये 26 मई को शाम 4:45 पर अजनारा डेफोडिल सेक्टर 137 नोएडा पर देखी गई। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कद 5 फीट 2 इंच है और इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक उमेश कुमार थाना सेक्टर 142 सेंट्रल नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। अगर इनके विषय में कोई सूचना आप मोबाइल के द्वारा देना चाहते हैं तो आप फोन नंबर नोट कर सकते हैं। फोन नंबर है 9627604033 पर। नंबर एक बार फिर से नोट करें 9627604033 पर। ये थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: दिलों में जुनून, हवाओं में रवानी, नई पीढ़ी की नई दास्ता, यही तो है युववाणी। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मलाइका।
1: And a very warm welcome to all our wonderful listeners tuning in. I am Achal Pundir and I'm genuinely excited today because for once I have a good news about the weather. Malaika, we have been finally blessed with the much awaited rain. After weeks of Delhi acting like one giant tandoor, the sky finally got the hint.
0: Achal, आसमान ने तो जैसे हमारी सुन ली, बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम एकदम सुहाना हो गया है। इसी ठंडी हवा ने तो पूरी दिल्ली का मूड ही बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, इस सुहाने मौसम के साथ साथ आज जब हम कैलेंडर देखते हैं तो 7 जुलाई की ये तारीख हमें याद दिलाती है कि आज वन महोत्सव सप्ताह का आखिरी दिन है।
1: ओह वेट मलाइका, यू सेड 7 जुलाई एंड 7

आला फॉर अ रीजन। हैप्पी बर्थडे टू द अल्टीमेट कैप्टन कुल। और रही बात ट्रीज की, तो आचल आपने बिल्कुल पीक वैलिडेशन दे दी है। पेड़ तो सच में प्योर अनबॉर्डर्ड और लो मेंटेनेंस ग्रीन फ्लैग्स हैं। नो मिक्स सिग्नल्स, नो लेट रिप्लाइज, और सबसे बड़ी बात, वो हमें अनकंडीशनल ही ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑनेस्टली नेचर का ये कमिटमेंट लेवल एकदम अनमैचेबल है। हम तो बस यही कह सकते हैं, बी लाइक अ ट्री, स्टैंड टॉल, ड्रॉप द डेड वेट व्हेन नीडेड, एंड प्लीज समवन गिव देम अ वेरीफाइड बैच ऑलरेडी। इसी के साथ सुहाने मौसम और हरियाली के एक ठंडी और खूबसूरत फीलिंग को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बेहद प्यारा गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बरसो रे मेघा मेघा।

0: रियलिटी से जोड़ा। और मेन कैरेक्टर एनर्जी तो बिल्कुल सही कहा, ये बिना किसी फिल्टर या शो ऑफ के भी इतना कूल दिखते हैं। असली क्वाइट लग्जरी तो इन्हीं के पास है, चाहे कैसा भी मौसम हो ये बिना किसी ड्रामे के टिके रहते हैं। और इसी को सलाम करने के लिए हम वन महोत्सव बनाते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में इस अद्भुत सोच की बुनियाद आज से पूरे 76 साल पहले यानी साल 1950 में हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री KM मुंशी जी ने रखी थी। उन्होंने बड़ी ही सादगी से एक बात कही थी, पेड़ का मतलब पानी है, पानी का मतलब रोटी है और रोटी ही जीवन है।
1: बहुत ही बेहतरीन मलाइका, KM मुंशी जी रियली सेड दैट। लेट मी पिक द एग्जैक्ट वीक द मॉनसून शोज अप एंड देन जस्ट नेल्ड इट। First week of July, ending today on the 7th, because that's when the soil is actually ready for planting. No weather app, no notifications, no group chat asking, yaar, aaj barsega kya? The man just knew. Honestly, more accurate than half of our weather apps even today. And the best part? Every tree we plant this week is basically us thanking him back decades later.
0: For real, Achal. पेड़ लगाना बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है। छा रिटर्न में हमें ठंडी छांव भी मिलती है और अच्छी हवा भी। और इसीलिए तो सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम जैसी बेहतरीन कैंपेन शुरू की थी 2024 में, ताकि हम सब इस ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सके। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, हमें ठंडी छांव भी मिलती है और धरती माँ को प्यारी हरियाली भी।
1: ब्यूटीफुली सेड मलाइका। एंड हियर इज द थिंग, इवन दो द ऑफिशियल फेस्टिवल वीक एंड्स टुडे, our job to care for nature really never clocks out. It needs constant love, kind of like a WhatsApp group you can't leave. Except this one's actually good for you. On that powerful note, ladies and gentlemen, let's groove to the joyful rhythm of A.R. Rahman from the film Lagaan.

0: मानवीय पत्रकारिता के ऊपर।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर धरा पांडे। आप एक शिक्षिका हैं, स्तंभकार हैं और मीडिया प्रोफेशनल हैं। आज हम आपसे बात करेंगे संवाद, संवेदना और सकारात्मकता, मीडिया के बदलते स्वरूप में मानवीय पत्रकारिता के विषय में। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो उहापोह की स्थिति आज विश्व में चल रही है, उससे मीडिया जगत भी अछूता नहीं है। तो आज हम धरा पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया के वो कौन से तत्व हैं जिन्हें साथ लेकर के हमें चलना है, जिससे कि जो हमारी मानवीयता की मूलभूत आवश्यकता है संवाद, उसको हम करें, क्योंकि कितनी ही बड़ी समस्या संवाद के रास्ते ही उसको सुलझाया जा सकता है। टेबल टॉक ही अंतिम विकल्प होता है। तो संवाद, संवेदना और सकारात्मकता, डॉक्टर धरा जी, अगर मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूं कि जो हमारी संवाद, सकारात्मकता और संवेदना की जो प्रकृति थी पत्रकारिता में, ये है अभी या है तो कितनी है, या कैसे देख रहे हैं आप इन विषयों को लेकर के आज के वर्तमान के पत्रकारिता के दौर को?
2: इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो का जो ये वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसमें ही निहित है कि ऐसा संवाद हो, इस प्रकार से हो कि बहुजन हित उसमें जुड़ा हुआ हो और बहुजन सुख उसमें जुड़ा हुआ हो। तो बार बार हर विचारधारा में भी हम ये बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किया जाए वो बेहतर है, वो अच्छा है। तो आज मीडिया का भी जो सेक्टर है वो उससे अछूता तो नहीं है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुजन की बात करे, अंतिम व्यक्ति की बात करे, उसके हित की बात करे और उसके जीवन में जो बेहतरी ला सके उस तरह का कार्य करे। अब थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। जब आप बात करते हैं सकारात्मकता की, तो वैसे हम देखें तो मीडिया ही नहीं, पूरे विश्व भर में इस समय बहुत ज्यादा नकारात्मकता हावी है। तो ऐसे समय में मीडिया का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सकारात्मकता के लिए काम करे। लेकिन बड़ा दुखद है ये कि आजकल ऐसा हो गया है कि नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस चीज से व्यूअरशिप बेहतर मिल रही है, लिसनरशिप अच्छी मिल रही है, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो चीजें बदली हैं, धीरे धीरे बदली हैं, लेकिन इस समय वो बहुत बहुतायत में दिख रही हैं। तो चाहे सकारात्मकता हो, संवाद हो, वो बहुजन हित के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए ही होना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।
1: बिल्कुल, आपने अंत्योदय की संकल्पना की बात की कि जो छोर में अंतिम बैठा व्यक्ति है उसकी बात की। आपने जो बात कही वो आकाशवाणी का ध्येय वाक्य भी है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो धरा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि जो मूलभूत थी पत्रकारिता, जिसमें कि जनपक्षधरता उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए, पर आज की तारीख में टीआरपी और क्लिकबेट के दौर में मुख्य धारा का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं भटकता तो दिखाई देता है हमें। तो उस भटकन से कैसे बचे?
2: उस भटकन से बचने के दो रास्ते हैं। पहला तो आपको डंडा मार के उस भटकन से सही रास्ते की तरफ लाया जाए। दूसरा कि आप अपने हृदय की सुने, आप अपने मन की सुने कि आपको उस भटकन में नहीं जाना है। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ये दुखद है कि किस तरह से हमारा मीडिया, और कोई भी मीडिया सेक्टर इससे अछूता नहीं है, हमारा मीडिया उस लूप में, उस सर्कल में उलझ गया है कि कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। आप कुछ भी परोस रहे हैं, लेकिन जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, वो उतना लिटरेट नहीं है, वो उतना साक्षर नहीं है मीडिया के टर्म्स में। वो उसको किस तरह से परसीव करेगा, किस तरह से उससे सीखेगा और किस तरह से उसको सीखने के बाद वो बरतेगा, इसमें मुश्किल हो जाएगी। और जब एक बड़े नंबर में लोग गलत चीज परसीव करें तो गलत समाज पैदा हो जाता है। तो ये मीडिया की ड्यूटी है कि जो वो परोसे वो तुरंत के लिए ना हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज सकारात्मक हो, इसकी जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति पे है जो वो न्यूज लिख रहा है। तो ये उसको तय करना है कि उसको क्लिकबेट पे जाना है या सही इन्फॉर्मेशन देनी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि उसमें आपकी अपना जो विवेक है वो बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, तो सही चीजों को अपने दर्शक, श्रोताओं और जो हमारे पाठक हैं उनको दे पाएंगे। जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार चूंकि मीडिया को स्वनियमन पे छोड़ रखा है उसने, और उम्मीद की जाती है चौथा स्तंभ जो है तो ये स्वनियमन से काम करेगा। स्थिति जो है वो जरूर चिंतनीय तो है ही, पर इसमें एक चीज और भी जो है आज के समय में मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा रही है, वो मुश्किल है फेक न्यूज की। लोग अपने निहित वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण गलत खबरें भी करते हैं। तो एक आम आदमी की दृष्टि से अगर मैं आपसे पूछूं, वो कैसे समझे कि सही न्यूज क्या है, किस खबर पर विश्वास करें?
2: ये सर्वप्रथम तो उसके विवेक पर निर्भर है जो उस न्यूज़ को बना रहा है। बना रहा है मैंने इसलिए कहा कि लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको हमको एक खाके में रखना पड़ता है। पढ़ने वाले पर, देखने वाले पर और सुनने वाले पर अब बात आती है उसके बाद।

0: देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है और आज का माहौल भी वो देख सुन पढ़ रहा है, उस पर ये भी जिम्मेदारी है कि वो उसको पढ़े, देखे, समझे और ये ढूंढे कि क्या उसने सही पढ़ा है, सही देखा है या सही सुना है, उसके उपरांत वो उसको आगे बढ़ाए। मीडिया लिटरेसी, जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे देश में बहुत पुअर स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है कि उसको हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ठीक से बरत नहीं पाए हैं, तो सुनने, पढ़ने, देखने के बाद हम पहले अपने स्तर पे उसको जान लें कि क्या ये सही है, क्या ये आवश्यक है। ये दोनों बातें, अब ये सही है और आवश्यक है जानने के बाद हम उसको आगे बढ़ाएं। पर वो कैसे जानेगा कि वो सही है और आवश्यक है? तो आवश्यकता तो पूरी तरह से वो अपने विवेक अनुसार जानेगा कि क्या इस चीज की आवश्यकता है, और दूसरा कि जो सही प्लेटफॉर्म्स हैं, सही प्लेटफॉर्म्स मतलब जो मानक प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो में हम बैठे हुए हैं तो जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, अगर आप न्यूज की बात करें तो उसके न्यूज को फॉलो करें, आप PIB को फॉलो करें, आप दूरदर्शन को फॉलो करें, और दूरदर्शन की बात आती है तो हमें आज भी याद आता है वो दौर जब हम समाचार बुलेटिन के लिए इंतजार किया करते थे कि इतने बजे समाचार सुबह आएगा, इतने बजे शाम को आएगा, इतने बजे दिव्यांगों के लिए आएगा, और हम उस पे डिपेंडेंट होते थे। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉर नहीं थी और फ्लडेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो वहां आता था वो सही माना जाता था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फिल्टर क्रॉस करके वो आता था। तो आज भी बहुत सारे ऐसे मानक प्लेटफॉर्म हैं जिनको यदि आप मानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं तो PIB, DD या आपने आकाशवाणी की बात की, तो या हमारे जो समाचार पत्र भी हैं वहाँ पे भी अभी जो एक ऑथेंटिसिटी का जो तत्व है वो अभी भी बरकरार है। तो क्या कारण ये भी आपको लगता है बतौर मीडिया सेवी या मीडिया प्रशिक्षक के तौर पर? अब तो सिर्फ ये नई समस्या नहीं रही, काफी समय से ये चल रही है, तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या उत्तरदायी हैं इस सबके लिए?
0: नहीं, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अकेले उत्तरदायी घोषित करना मतलब बहुत ही बचकाना बात होगी, क्योंकि इसके लिए हम सब भी उत्तरदायी हैं। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये परोस रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो कभी भी एक तरफा इस तरह का मामला नहीं होता है। हाँ, बात बस इतनी थी कि उनकी जिम्मेदारी शायद लिसनर से, श्रोता से, दर्शक से अधिक थी, लेकिन पूरी तरह से वो दोषी नहीं है। पूरी तरह से वो दोषी इसलिए भी नहीं माने जा सकते क्योंकि वो अमानक ऐसा कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस दिन साबित होगा कि वो अमानक कार्य कर रहे हैं, हमारे देश के नियम कायदों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उस दिन हम मानेंगे कि वो अकेले दोषी थे। और एक और जो बात मुझे यही लगती है कि जब से 24 घंटे का बुलेटिन हुआ, 24 घंटे का बुलेटिन होने के बाद जो खबर है वो बनाई जा रही है, तो समाचार जो है वो व्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि वो उनकी जरूरत है, वो उस लूप होल में उलझ गए हैं। पर ये तो हमें तय करना है ना, ये तो हमें देखना है, हम जो देख रहे हैं हमारे पास किस तरह से न्यूज आ रही है और कि उस इन्फॉर्मेशन की आप देखेंगे कि आपको आवश्यकता है कि नहीं, आपके जीवन में वो कहाँ स्टैंड करती है। तो आप न्यूज देखें, व्यूज ना देखें, ये अंतर तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में समझना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अखबार की बात की आपने, अखबार हम ऑथेंटिक मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रिंटेड है, कोई भी प्रिंटेड चीज ऑथेंटिक मानी जाती है, लेकिन एडवर्टोरियल, एडवर्टीजमेंट और एडिटोरियल, जैसे अंतर इन तीनों में है, वैसे हमें समझना है कि कौन सी खबर एडवर्टोरियल है, कौन सी एडिटोरियल है और कौन सी खबर खबर है।
1: और जैसे बशीर बद्र के शब्दों में मैं कहूँ तो अच्छे लगते हैं वो लोग जो सच्चे होते हैं, सच कहें तो वही रिश्ते अच्छे होते हैं। तो जो युवा पत्रकार हैं वो ऐसा अच्छा रिश्ता जनमानस के साथ बनाएं और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की संकल्पना को साकार करें। डॉक्टर धरा पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बड़े विस्तार से इस विषय पर अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: न्यूज देखें, व्यूज ना देखें, व्हाट एन अमेजिंग थिंग टू टेक अवे दैट फ्रेंड्स वाज आवर कन्वर्सेशन विद डॉक्टर धरा पांडे। And let's now move on to the next song from the movie Got to See Great Ho. It's time to bump, it's time to

0: where we sound very smart for a few minutes and then go straight back to arguing about pizza toppings. This week, we are trying to dive into something really close to my heart. And honestly, close to my bookshelf too. Art and literature.
1: दोस्तों, कला और साहित्य की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हर जमाने के साथ खुद को नए रंग में पेश कर देते हैं। आजकल वैसे एक ऑनेस्ट सवाल, आजकल लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं या उनके साथ बैकग्राउंड में कॉफ़ी, फेरी लाइट्स और करेंटली रीडिंग वाला हैशटैग लगाकर इंस्टाग्राम स्टोरी ज़्यादा बनाते हैं?
0: Honestly, Malaika, it's actually both. You'd be surprised how many young readers are out there on BookTok and Bookstagram crying over fictional boyfriends, giving book reviews like food reviews, and even acting out scenes from their favorite part of the novel. So no, reading hasn't disappeared, friends. It's just added some music, some lighting, and a little bit of drama to it.
1: इसका मतलब किताबें गायब नहीं हुई हैं, बस उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। अब कहानियों के साथ हैशटैग्स भी आते हैं और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आज का यूथ सिर्फ रीडर नहीं रहा, क्रिएटर भी बन गया है। कोई इंस्टाग्राम पर दो लाइन की शायरी लिख रहा है, कोई पॉडकास्ट पर अपनी कहानी सुना रहा है और कोई यूट्यूब पर पोएट्री परफॉर्म कर रहा है। मतलब कॉन्टेंट भी अपना और इमोशंस भी अपने।
0: Exactly, Malaika. And since we're already deep in books today, a small tribute. Today also marks the death anniversary of Sir Arthur Conan Doyle, the man who gave the world Sherlock Holmes. Almost a century later, people are still obsessed with a detective who solved crimes just by looking at someone's coat sleeve. And that brings me to something really exciting. Poetry slams! Nothing like the quiet readings you're imagining. It's loud, full of energy, more concert than classroom, and someone's always about to get emotional on stage. Heartbreak, anger, hope, even board exam panic. All of it and more.
1: Wow! मतलब एक तरफ Sherlock Holmes, जो दिमाग का full-on logic use करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे आज के poets, जो दिल का पूरा emotion stage पर भा देते हैं। लेकिन आजकल पहले दिल टूटने पर लोग diary लिखते थे, अब open mic book कर लेते हैं, और ऑडियंस भी ऐसी कि हर दूसरी लाइन पे दैट्स सो मी बोलने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसी में तो साहित्य की खूबसूरती है। अल्फाज अपना प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं, लेकिन एहसास कभी आउटडेटेड नहीं होते। वेदास से लेकर प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और इस्मत चुगताई तक हर पीढ़ी ने अपनी कहानी लिखी है, और शायद इसीलिए हर पीढ़ी को अपनी आवाज भी मिलती है।
0: Absolutely, Malaika. Very well said. And now I feel taking this vibe ahead, we should bring in some peppiness with this another amazing song from the movie Band Baja Barat.

0: And now it's time for Today in History. Friends, it's the death anniversary of Captain Vikram Batra today, the Kargil war hero who was posthumously awarded the Paramveer Chakra, India's highest military honor. His words, "Ye dil mange mor," still give an entire nation goosebumps decades later. A true hero and someone we'll always remember.
1: और रेडियो से जुड़ी एक मजेदार बात भी आज के दिन से ही जुड़ी है। 7 जुलाई 1927 को बीबीसी के पहले डिस्क जॉकी क्रिस्टोफर स्टोन ने रेडियो पर रिकॉर्डेड म्यूजिक पेश करना शुरू किया था। उस दौर में तो ये एक बिल्कुल नया और अनोखा विचार था। और देखिए, आज रेडियो सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि कहानियों, सोच और जज्बातों को भी घर घर तक पहुंचाता है। हम खुशनसीब हैं कि युवाणी के जरिए हम भी इस खूबसूरत सफर का एक हिस्सा हैं।
0: Absolutely. And here's another interesting milestone. On this very day in 1985, a 17-year-old Boris Becker became the youngest ever Wimbledon men's singles champion. Just imagine, most of us at 17 were stressing over exam results, and he was out there lifting one of the biggest trophies in tennis. Age is really just a number, isn't it, Malaika?
1: बिल्कुल सही कहा आचल। दोस्तों, अगर आज के ये सेगमेंट सुनकर आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई है तो समझ लीजिए हमारा तो दिन बन गया। इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हैं और बिना किसी देरी के सुनते हैं लट्टू लट्टू।
2: Houston, crackly DP.

0: All right, let's kick off Quick Buzz with some actual good news for music lovers. Sonu Nigam is bringing a Mohammad Rafi tribute concert to Delhi on July 25th, backed by a full live orchestra at Yashobhumi. Please don't miss that. And if Punjabi pop is your vibe, Jasmine Sandlis rolls into Delhi on July 11 with her India tour. So basically, Delhi's stage has picked a side for everyone this month. Golden Classics और हाई एनर्जी बैंगर्स, टेक योर पिक
1: दोस्तों. और जो लोग एक सॉलिड करियर शिफ्ट या अपस्किलिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर. जुलाई 15th को है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को सेलिब्रेट करता है. सो अगर आप किसी वक्त से किसी नए स्किल या उस स्कूल से साइड हसल पर काम करने का सोच रहे थे, तो बॉस, कंसिडर दिस योर ऑफिशियल साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन मोड ASAP.
0: Here's a fun one. Young people today are actually stepping away from their screens on purpose. It's called a digital detox. Honestly, I love that. So instead of scrolling, they're joining real clubs, like going for mindful walks and showing up to live gigs and events in person. Turns out, touching grass is officially trending again, and thank God for that. So Malaika, aap digital detox ke liye kya kar rahi hain?
1: दोस्तों, मैं तो बस दिन में 2 घंटे अपना फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर

निकालकर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कर देती हूँ। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड में भी इस हफ्ते फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है। रिलीज हो रही है धमाल 4। कॉमेडो के दीवानों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट वीकेंड प्लान है। तो अगर आपको दिल्ली की उमस भरी गर्मी से थोड़ा हंसी मजाक से का एस्केप चाहिए तो पॉपकॉर्न तैयार रखिए। खैर दोस्तों, ये था आज का एक क्विक कैचअप। खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, पर अब थोड़ा सा स्क्रीन टाइम से ब्रेक लेते हैं और दिमाग को सुकून देते हैं। लव मेरा हिट हिट सुनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 5 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी

0: समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 5:10 हुए हैं और वक्त हुआ है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं हम लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के।
1: और देखो नीलम जी, ऐसा है ना कि मौसम जो है थोड़ा सा बदल गया है।
0: बिल्कुल।
1: और जब मौसम बदलता है, ये भीगा भीगा मौसम जो है बहुत ही आनंदमयी हो गया है, क्योंकि इससे जीव जंतु, मनुष्य सभी जो एकदम त्रस्त थे गर्मी से, उनको थोड़ा सा निजात मिला है।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसे में ये होता है कि मौसम का थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं, घूमने की हम बात करते हैं, तो फिर चलते हैं कहीं घूमने।
0: बिल्कुल चलते हैं, ले चलते हैं अपने सभी श्रोताओं को भी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सविता शर्मा से ये लोकगीत।
1: बिल्कुल, और एक बात और है, जो अपना देश है नीलम्बन, वो बहुत विविधताओं से भरा पड़ा है। अनेकता में एकता की हम बात करें तो सारे धर्मों को लोग जितने होते सब एक साथ मिल करके रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, सद्भाव का मार्ग चुनते हैं।
0: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि मेरा भारत महान। और देखिए, इसी सुनवाते हैं गोपाल सिंह बर्मन से ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे थे गोपाल सिंह बर्मन से ये लोकगीत।
1: आई जो देश भक्ति अभी सुनी गोपाल सिंह बर्मन से, उसमें सच के नीलम, सच में जो भी कहा गया, एक एक शब्द जो है वो ऐसी लग रहा था कि हाँ, प्रेम से भाव से भरा हुआ है अपना देश। और आगे हम बात करते हैं एक रागनी की, जो कि कर्मपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज में है, कि हंस हंस के कैसे बोलना चाहिए और प्रेम से बोलना चाहिए, इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं इस रागनी के जरिए।

0: नीलम बहन आज क्या बता रही हैं आगामी कार्यक्रम के बारे में, क्या सूचना देना चाह रही हैं?
1: सूचना तो है भाई, यमुना जी अपने किसान बहन भाइयों के लिए लेकर भी हम आते हैं हर मंगलवार को, ज़्यादातर कुछ खास मंगलवार होता है जो हमारे किसान बहन भाइयों के लिए जुड़ा होता है, उनकी फसलों से, उनकी फसलों की देखभाल से। तो ऐसा ही आज लेकर आए हैं, विषय भी है गन्ने की बंधाई और देखभाल, विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम रहेगा बहन भाइयों के लिए। और ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक और 7:05 से 7:30 तक रहेगा। और जो विशेषज्ञ रहेंगे वो होंगे डॉक्टर अवधेश कुमार, और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर DS सिरोही और उपेंद्र सिंह तेवतिया भी होंगे हमारे विशेषज्ञ।
0: बिल्कुल, और फ़ोन नंबर लिख लें, कार्यक्रम में आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। जो हमारा नंबर है 2342-1082, दूसरा नंबर है 2342-1083, और दिल्ली से बाहर के लोग कोड लगाना ना भूलें 01123421082-23421083।
1: बिल्कुल, जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं गन्ने की फसल करते हैं उनके लिए ये विषय है। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं जानकारी चाहते हैं, कोई समस्या है गन्ने की फसल में, आप फोन करके पूछ सकते हैं, सीधे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।
2: एरिया कड़े पड़ोसन जो

0: मनोज कराने के गए इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: नमस्कार साथियों, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और कार्यक्रम संयोजक थे
0: शिव नंदन लाल। इसी के साथ लोक रंजनी कार्यक्रम समाप्त होता। सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
3: प्रतीक आनंद।
2: और प्रतीक, आज हमारे पास है ढेर सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। और फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरह से मुकाबले अब शुरू होने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स के, लेकिन उससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल्स के कई मुकाबले ऐसे थे जिसमें जोरदार टक्कर हुई और जोरदार टक्कर होने की संभावना भी है क्योंकि आज भी मुकाबले हैं और आज प्री क्वार्टर फाइनल्स के लास्ट मुकाबले हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले होंगे। और प्रतीक, अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप की सूरत हाल है वो ये है कि जो टीम अच्छा खेल रही है वो जीत रही है।
3: जी बिल्कुल,
2: और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक खास आपके लिए रिपोर्ट बनाई है, आइए सुनते हैं।

आइए सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की, जहां कल देर रात टेक्सास के डेलस स्टेडियम में खेले गए पहले नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर अगले राउंड यानी विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ पुर्तगाल का विश्व कप में सफर समाप्त हो गया, साथ ही साथ रोनाल्डो का भी इस विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। मुकाबले की बात करें तो शुरुआत से ही रोमांचक रहा। शुरू में ही दोनों टीमें गोल दाग अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से खेल रही थी, मगर दोनों टीमों के गोलकीपर ने यह ठान रखा था कि फुटबॉल को गोल नेट से टच नहीं होने देंगे। मुकाबला आक्रामक के साथ साथ रक्षात्मक भी रहा। दोनों गोलकीपरों ने अच्छे बचाव किए। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन और पुर्तगाल के गोलकीपर डिएगो कोस्टा रहे। हाफ टाइम तक दोनों टीमों ने कुल 7 शॉट टारगेट पर मारे। स्पेन के स्टार खिलाड़ी लमीन यमाल ने भी कुछ शॉट मारे, मगर पुर्तगाली डिफेंडर नूनो मेंडेज ने उन्हें ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जुझारू खेल खेलते दिखे। दोनों टीमों के बीच नॉकआउट स्टेज का दबाव दिख रहा था। स्पेन ने थोड़ा ज्यादा आक्रामक खेल दिखाते हुए कुल 8 शॉट मारे। इसके बाद अगले हाफ में मुकाबला और भी रक्षात्मक हो गया। दोनों टीमें डिफेंस पर खेलने लगी और कुछ छोटे मोटे मौके ही बना सकी। 73वें मिनट में स्पेन के लमीन यमाल ने एक शानदार फ्री किक ली और पुर्तगाल के गोलकीपर डिएगो कोस्टा ने एक हैरत अंगेज बचाव किया। 77वें मिनट में पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस ने एक टाइट एंगल से शॉट लिया जो साइड नेटिंग में जा लगा। इसके बाद 85वें मिनट में स्पेन के मैनेजर डी ला फुएंटा ने एक सब्स्टिट्यूट चेंज किया और डेनी ओल्मो को मैदान से उतारकर उन्होंने मिकेल मरीनो को मैदान में भेजा, और जिस

0: वक्त लग रहा था कि यह मैच अतिरिक्त समय में जा रहा है, तभी 90 प्लस एक मिनट में स्पेन को एक फ्री किक मिली और स्पेन ने जल्दी से फ्री किक लेते हुए एक और मौका बनाया, जब फेरान टोरेस ने एक खूबसूरत थ्रू बॉल मिकेल मरीनो के लिए निकाली और मिकेल मरीनो ने एक शानदार फिनिश की। उन्होंने गोलकीपर को छकाते हुए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में बॉल को भेज दिया। इसी के साथ स्कोर 1-0 हो गया। 6 मिनट के अतिरिक्त समय में पुर्तगाल कोशिश करती रही मगर बराबरी का गोल नहीं आया और रेफरी की अंतिम सीटी बजते ही स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब स्पेन का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा। स्पेन ने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है। श्रोताओं, इसी के साथ रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना इस बार भी छूट गया। लगातार 6 विश्व कप में शिरकत करने वाले और लगातार 6 विश्व कप में गोल दागने वाले रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप माना जा रहा था। पुर्तगाल की हार ने करोड़ों पुर्तगाली समर्थकों और रोनाल्डो समर्थकों के दिलों को तोड़ा है। बात करें रोनाल्डो की तो उन्होंने पुर्तगाल के लिए कुल 232 मैचों में 146 गोल किए हैं, साथ ही कुल 976 करियर गोल्स भी दागे हैं। चलिए बात करते हैं कल के दूसरे मुकाबले की, जहां वॉशिंगटन के सिएटल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बेल्जियम ने मेजबान यूएसए को 4-1 से करारी शिकस्त देते हुए उन्हें विश्व कप से बाहर कर दिया। मैच की शुरुआत धमाकेदार रही। मैच के पहले ही मिनट में बेल्जियम के तिमोथी कैस्टेनिया ने एक कर्लिंग शॉट गोल की दिशा में मारा, जिसका विरोधी गोलकीपर मैट फ्रीज ने अपनी दाई तरफ कूद कर बचाव किया। इसके बाद 9वें मिनट में बेल्जियम के मिडफील्डर निकोलस रस्किन ने एक शॉट गोलकीपर के 6 यार्ड दायरे में डाला, जो डिफ्लेक्शन के कारण बेल्जियम के युवा स्ट्राइकर चार्ल्स डी कैटेलेयर के पास आ पहुंचा और उन्होंने एक आसान टैप इन गोल कर बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 31वें मिनट में एक फाउल के चलते यूएसए को पेनल्टी बॉक्स के सामने एक फ्री किक प्राप्त हुई, जिस पर यूएसए के मिडफील्डर मलिक टीलमैन ने एक दंदनाता शॉट मारा, जो बेल्जियम के डिफेंडर हांस वानकन के सिर से लग डिफ्लेक्ट होते हुए गोल में जा पहुंचा और मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। क्योंकि टिलमन का शॉट ऑन टारगेट था, इसलिए गोल उनके खाते में जोड़ा गया। बराबरी किए कुछ समय ही हुआ था कि 33वें मिनट में बेल्जियम के मिडफील्डर लियांड्रो ट्रोसार्ड ने यूएसए डिफेंडर सर्जिनो डेस्ट को छकाते हुए एक कर्लिंग क्रॉस 6 यार्ड दायरे में डाला, जहां फिर एक बार चार्ल्स डी कैटेलेयर ने हेड मारकर बॉल को नेट में पहुंचाया। उन्होंने यूएस डिफेंडर से ऊंचा उछलकर बॉल को टॉप राइट कॉर्नर में डाल दिया। इसके बाद यूएस ज्यादा मौके नहीं बना पाई और हाफ टाइम तक स्कोर 2-1 रहा। इसके बाद मैच के अगले हाफ में भी पहले हाफ की तरह बेल्जियम ने शुरू से मौके बनाए और 57वें मिनट में मैट फ्रीज की पेनल्टी बॉक्स से बाहर आकर बॉल कंट्रोल करने की गलती का यूएसए को खामियाजा भुगतना पड़ा, जब बॉल उनसे डिस्पोजेस होकर बेल्जियम के मिडफील्डर हांस वानकन के पास पहुंच गई और उन्होंने फर्स्ट टच पर दूरी से एक शानदार कंट्रोल्ड शॉट मारा, जो कि यूएस गोलकीपर और डिफेंडर दोनों के बगल से घूमते हुए खाली गोल में जा बसा। यूएस डिफेंडर टिम रीम के पैर का महीन सा हिस्सा बॉल को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाया और बेल्जियम ने अपनी बढ़त को दुगना कर दिया और यहां से लगभग यूएस का विश्व कप का सफर समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद यूएस के पास 2 बड़े मौके आए। 78वें मिनट में यूएस के मिडफील्डर सेबेस्टियन बाहर हाल्टर का हाफ वॉली शॉट दाहिने पोस्ट से टकरा गया और गोल से चूक गया। इसके बाद 82वें मिनट में विवादित फैसला दिए जाने के बाद खेल रहे यूएस फॉरवर्ड पोलरिन बालोगुन के लिए एक शानदार थ्रू बॉल निकाली गई, जिसे उन्होंने ऑन टारगेट शॉट में बदला, मगर बेल्जियम के गोलकीपर थियबू कोटुआ ने उसे अपने दाहिने हाथ से बचा लिया। इसके बाद अतिरिक्त समय में फिर एक बार यूएस डिफेंडर की गलती के कारण बॉल यूएस के पेनल्टी बॉक्स में बेल्जियम के सर्वाधिक गोल स्कोरर रोमेलू लुकाकू के पास जा पहुंची और उन्होंने दाहिने पैर से एक शानदार कंट्रोल शॉट मारकर बेल्जियम का 4th गोल कर दिया। यह बेल्जियम के लिए लुकाकू का 93वां गोल था।
1: आइए अब नजर डालते हैं आज खेले जाने वाले नॉकआउट मुकाबलों पर, जहां पहले मुकाबले में गत विजेता अर्जेंटीना के सामने होगी इजिप्ट की चुनौती। यह मैच भारतीय समय मानक अनुसार रात 9:30 से जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ होंगे लियोनेल मेसी, वहीं दूसरी तरफ रहेंगे मोहम्मद सलाह। दोनों ही टीमें अपने अपने नॉकआउट मुकाबलों में 120 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद यहाँ पहुंची हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो ग्रुप स्टेज में अजेय रहने के बाद राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना को केप वर्डे ने कड़ी टक्कर दी। मेसी की कप्तानी में टीम ने अतिरिक्त समय में एक आत्मघाती गोल की मदद से बमुश्किल 3-2 से जीत दर्ज की। आज भी सबकी निगाहें अर्जेंटीना के मैसी पर रहेंगी, जो अब तक इस विश्व कप में 7 गोल मार चुके हैं। मैसी के मैजिक के साथ साथ लुतारो मार्टिनेज की फिनिशिंग पर भी अर्जेंटीना की जीत निर्भर करेगी। वहीं बात करें मिश्र की, तो टीम अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से ऐतिहासिक जीत हासिल कर पहली बार नॉकआउट के इस चरण में पहुंची है। आज उनकी रणनीति रहेगी कि डिफेंस ब्लॉक बनाकर अर्जेंटीना को रोकें और काउंटर अटैक में मोहम्मद सलाह और ओमार मरमोश की रफ्तार का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं आज के दूसरे और आखिरी राउंड ऑफ 16 मुकाबले की, जहां स्विट्जरलैंड और कोलंबिया की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच भारतीय समय मानक अनुसार मध्य रात्रि में 1:30 से कनाडा के वैंकूवर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो ग्रुप बी में कतर से ड्रॉ के बाद बोस्निया और कनाडा को हराकर टीम नॉकआउट में पहुंची। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया। कोच मुरत याकिन की इस टीम के लिए 20 वर्षीय युवा स्टार जोहान मोजाम्बी इस विश्व कप की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं। उन्होंने अब तक 3 गोल और 2 असिस्ट किए हैं। अनुभवी कप्तान ग्रेनिट जाका और रीमो फाइलोर मिडफील्ड को नियंत्रित करेंगे, जबकि ब्रिल एम्बोरली आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें कोलंबिया की, तो ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान और डीआर कांगो को हराकर और पुर्तगाल के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 में घाना को 1-0 से मात दी। नेस्टर लोरेंजो की टीम की सबसे बड़ी ताकत उनका डिफेंस रहा है, जिन्होंने अब तक प्रतियोगिता में महज 1 गोल खाया है। अटैक में स्टार खिलाड़ी लुइस डियाज अपनी गति से परेशान करना चाहेंगे, जबकि 2014 के गोल्डन बूट विजेता जेम्स रोड्रिगेज खेल को दिशा देंगे। इस मैच के विजेता का सामना अर्जेंटीना या मिस्र के साथ क्वार्टर फाइनल में होगा। इस मैच के बाद विश्व कप में 8 टीमें रह जाएंगी।

0: फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की, और क्या खास है ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस बार, ये बताएंगे हमारे युवा साथी प्रतीक आनंद।
1: जी बिल्कुल, 25 जुलाई से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण की आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा ड्यूरेंट कप की ट्रॉफियों का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ड्यूरेंट कप की विजेता टीम को 3 ट्रॉफी दी जाती हैं। पहली ट्रॉफी का नाम प्रेसिडेंट्स कप बोला जाता है। इसे पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये ट्रॉफी विजेता टीम को स्थायी रूप से दी जाती है। दूसरी ट्रॉफी का नाम शिमला ट्रॉफी होता है। ये ट्रॉफी ड्यूरेंट कप के ऐतिहासिक विरासत, शिमला के स्थानीय लोगों के योगदान और भारतीय फुटबॉल की शुरुआती पहचान का प्रतीक है। तीसरी ट्रॉफी का नाम होता है ड्यूरेंट कप, जो वर्तमान ड्यूरेंट कप 1888 विंटेज का है। ये एक रोलिंग ट्रॉफी है जो विजेता टीम को एक वर्ष के लिए दी जाती है। इस बार ड्यूरेंट कप 25 जुलाई से 23 अगस्त के बीच खेला जाएगा, जिसमें 5 मेज़बान शहर होंगे, जिनमें रांची पहली बार एक मेज़बान शहर है। फॉर्मेट की बात करें तो 24 टीमें होंगी जो 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी, और प्राइस पूल की बात करें तो 3 करोड़ का प्राइस तय किया गया है।
0: भारतीय फुटबॉल के लिए एक बहुत ही शानदार पल, क्योंकि इतना पुराना टूर्नामेंट भारत में खेला जाता है, तो ये दर्शाता है कि भारत में फुटबॉल की दीवानगी कुछ भी कम नहीं है। बस अब समय आ गया है कि अपने दीवानेपन को, अपने जज्बे को सभी लोग आएं और अपने ग्राउंड पर आएं, ग्राउंड पर आकर खेलें और दिखाएं कि वो कितना खेलों के प्रति जज्बा रखते हैं। खाली खेल देखने से बात नहीं बनेगी, खेलों को खेलना भी पड़ेगा। वहीं अब फुटबॉल की बातों को देते हैं विराम और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा, और भारतीय समय के अनुसार ये रात 10 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। नॉटिंघम में ये मुकाबला होगा, और कई सारी चीज़ें इस मुकाबले के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहला मुकाबला वर्षा के कारण बाधित हो गया था। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी की वजह से हम उस मुकाबले को नहीं जीत पाए, और थोड़ा सा अधिक रन हमारे गेंदबाजों ने दे दिए। तो आज बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि कैसे भारत के कोच आज अपनी गेंदबाजी डिपार्टमेंट को मजबूत करते हैं, कैसे वो अपनी गेंदबाजी में अपनी लय को, अपनी धार को बनाते हैं, क्योंकि आज का मुकाबला जीतना बेहद आवश्यक है। सीरीज़ का तीसरा मुकाबला है ये, और अभी सीरीज़ में इस समय इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे बनी हुई है। और वहीं जब बात हुई कि क्या होगा आज के मुकाबले में, कैसे ये मुकाबला खेला जाएगा, तो उस पर भारतीय टीम के सहायक कोच शितांशु कोटक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Honestly, I feel सारे ही मैच important है, but obviously because last match, close match हम लोग हारे, तो I think ये मैच भी important है सीरीज जीतने के लिए और आगे वाले भी। Not that particular एक मैच हम सोच रहे हैं कि ये important है, I think England every matches are important। टीम मैच अभी आया ना वैभव, तभी set to debut anyway। ऐसा कुछ नहीं है कि last match में वो ready हुआ। I think उसको only thing about his game, जो हमारी तरफ से चीज़ें रही, वो जस्ट जो तेरा गेम है, जो तेरा इंस्टिंक्ट है, जैसे तू क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट खेल के वो यहाँ तक पहुँचा है, वही क्रिकेट उसको खेलना चाहिए। बैटिंग के लिए उतना ही उसको, आई डोंट थिंक अदरवाइज और कुछ ऐसा वैसा इस इंस्ट्रक्शन की ऐसा कर या ऐसा कर, आई डोंट थिंक।
0: भारतीय टीम के सहायक कोच शितांशु कोटक जो बता रहे थे कि सभी मुकाबले भारतीय टीम के लिए अहम होते हैं और भारतीय टीम चाहती है सभी मुकाबलों को जीतना। और वहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए भी उन्होंने कहा कि हमने उन्हें एक ही बात कही है कि जैसे आप खेलते हो, जैसा आप खेलते हो यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक वैसे ही आप खेलते रहिए। हमारी तरफ से यही एक इंस्ट्रक्शन है कि जैसे आप खेलते हो अपना नेचुरल गेम, वैसे ही आप खेलते रहिए और आगे बढ़िए। और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका अब उन खिलाड़ियों के लिए भी है जिनका

0: यही एक इंस्ट्रक्शन है कि जैसे आप खेलते हो अपना नेचुरल गेम, वैसे ही आप खेलते रहिए और आगे बढ़िए। और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका अब उन खिलाड़ियों के लिए भी है जिनका चयन पहली बार भारतीय टीम में हुआ है जिम्बाब्वे दौरे के लिए। तो प्रतीक, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार जिम्बाब्वे दौरे के लिए चयनित हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में?
1: जी हाँ बिल्कुल, जिम्बाब्वे T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है, जिसमें भारत के लिए श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे। वहीं वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन, और इसके साथ साथ मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे, सूर्यांश हेगड़े और रिंकू सिंह की वापसी हुई है। वहीं बॉलिंग की बात करें तो हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव 2024 के बाद पहली बार टीम में लौट रहे हैं। साथ ही साथ प्रभसिमरन सिंह के साथ एक अतिरिक्त के रूप में एक अतिरिक्त विकेट कीपर भी भारतीय टीम में चुने गए हैं। भारतीय टीम 23, 25 और 27 जुलाई को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेगी।
0: और जिस तरह से कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, और सबसे बड़ी बात तो प्रतीक यहाँ पर यही है कि जो गेंदबाजी के लिए हमने खिलाड़ी चुने हैं, क्या वो गेंदबाजी में धार दे पाएंगे? क्योंकि गेंदबाजी, बल्लेबाजी में हम अच्छा कर रहे हैं, रन बन जाते हैं, अच्छा स्कोर बना लेते हैं, लेकिन गेंदबाजी थोड़ा सा एक अभी भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। हालांकि कई बार क्या होता है कि T20 मुकाबलों में खास तौर से कि 2-4 ओवर ही आपके पूरे गेम को बदल देते हैं, तो गेंदबाजों के लिए वैसे भी एक बड़ी चुनौती होता है T20 का मुकाबला। और जिस तरह से गेंदबाजों को, खास तौर से युवा गेंदबाजों को मौका दिया गया है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा ये मौका है कि वो अपने आप को साबित करें और बताएं कि उनमें कितना दमखम है। क्रिकेट की बातों को देते हैं यहाँ पर विराम और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। और विंबलडन जिस तरह से चल रहा है, तो प्रतीक क्या लगता है क्या होगा विंबलडन में?
1: जी हाँ बिल्कुल, चर्चा करते हैं टेनिस की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की, जहां कल शाम राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खेले गए और आज क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष एकल में बात करें, जहां विश्व के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में से 5 कल मैदान पर थे। विश्व नंबर 9 इटली के फ्लेवियो कबोली ने विश्व नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को 7-5, 7-6, 6-3 से सीधे सेटों से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला यूनाइटेड किंगडम के आर्थर फेरी से होगा। आइए सुनते हैं उन्होंने जीतने के बाद क्या कहा।
2: I was feeling tired on the tour, so I'm very happy to reach the quarter final on three set, because you know it's very important to stay with the energy for the next round. We here this year is so hot. We saw on the crowd, and yeah, thanks for coming today. Thanks for staying here. I know that it's really hot. And yeah, I appreciate it a lot. I'm so happy. I'm proud of myself.
0: ये थे फ्लैबियो, और बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया और दर्शकों ने भी उनके खेल को सराहते हुए जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, उनकी बात को आगे बढ़ाया। और वहीं आगे बात बढ़ाते हैं और आगे क्या-क्या हुआ है प्रतीक?
1: जी हाँ, इसके बाद एक और हाई वोल्टेज मुकाबले में विश्व नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेलर फ्रिट्स ने विश्व नंबर 10 कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बुबलिक को 7-6, 6-4, 6-4 से सीधे सेटों से हराया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: Super happy. It's a really tough match against him, and just to get through it in three straight, especially after, I mean, going down a break to start the first set, I'm super happy with how I played. I mean, I think a lot of the matchups we played in the past, I mean, it was a while ago. So I think both of us are completely different players. I'd say, you know, only within the last like 2 years, the matchups that we had, I really like remember well. And I'd say the biggest difference just on grass is the way I return. I return a lot differently on grass. And for me, in Stuttgart and here, I felt like I had just pretty good reads on some of the serves, and I was, you know, getting good hits on his first serve and starting points in, you know, really good spots. And I mean, it's always just going to come down in the end to big points here and there.

0: remember we played in Paris. He beat me. It was just a super close first set, tiebreaker. Like, you know, anytime you have two big servers, it's the margins are very small. And that's what I did best today was when I got my opportunities, I took them. And when he had some chances on my serve, I did really well to get out of it.
1: इसके बाद एक और मुकाबले में वाइल्ड कार्ड एंट्री यूनाइटेड किंगडम के आर्थर फेरी ने बुल्गेरिया के ग्रेगरी दिमित्रोव को एक रोमांचक मैच में आखिरी सेट में टाई ब्रेकर में हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। 5 सेटों तक चले ये मुकाबले बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई वाइल्ड कार्ड ब्रिटिश पुरुष वाइल्ड कार्ड विंबलडन क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा है। इसके बाद दिन के आखिरी पुरुष एकल मुकाबले में विश्व नंबर 2 खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने विश्व नंबर 13 चेक गणराज्य के जिरिल हैचका को 2 सेटों में हराकर तीसरे सेट में 3-3 की बराबरी करी, और इसके बाद विंबलडन कर्फ्यू के कारण मैच को सस्पेंड कर दिया गया। अब बात करते हैं महिला एकल की, जहां विश्व नंबर 7 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कोको गॉफ ने विश्व नंबर 11 स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिक को पहले सेट में हारने के बाद वापसी करते हुए 4-6, 6-3, 6-4 से हराया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला उनकी हमवतन विश्व नंबर 4 जेसिका पगुला से होगा। एक अन्य मुकाबले में विश्व नंबर 13 इटली की जैस्मिन पाउलिनी ने फिलीपींस की युवा सनसनी विश्व नंबर 29 अलेक्जेंड्रा इयाला को एक रोमांचक मुकाबले में 6-4, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी। वहीं बेल्जियम की एलिसे मर्टेंस ने भी चेक गणराज्य की मैरी बुजकोवा को 6-4, 6-4 से सीधे सेटों में हराया। दिन के अंतिम महिला एकल मुकाबले में विश्व नंबर 9 चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मेडिसन कीस को 6-4, 7-2 से सीधे सेटों से हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की, जहां उनका मुकाबला बेल्जियम की एलिसे मर्टेंस से होगा। आइए अब नज़र डालते हैं आज खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर। पुरुष एकल में गत विजेता एवं विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर जर्मनी के जैन लेनार्ड स्ट्रिफ के खिलाफ अपने खिताब का बचाव करते दिखेंगे। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और 7 बार के विंबलडन विजेता विश्व नंबर 7 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच विश्व नंबर 3 खिलाड़ी कनाडा के फेलिक्स ओगर अलियासिम के खिलाफ अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब और पुरुष एकल इतिहास में सबसे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जोकोविच इस ऐतिहासिक कारनामे को हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं महिला एकल क्वार्टर फाइनल्स की, जहां पहले मुकाबले में विश्व नंबर 4 खिलाड़ी जेसिका पगुला अपनी हमवतन विश्व नंबर 7 खिलाड़ी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कोको गॉफ को टक्कर देती दिखेंगी। वहीं दूसरे मुकाबले में विश्व नंबर 1 अरियाना सबलंका को हराकर आ रही विश्व नंबर 14 जापान की नाओमी ओसाका अपनी दावेदारी विश्व नंबर 10 चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा के आगे पेश करेंगी।
2: तो ये तो खास बातें थी टेनिस की, और अब श्रोताओं आपको लिए चलते हैं शॉटगन के क्षेत्र में, शॉटगन की रेंज पर। शॉटगन बहुत ही लोकप्रिय एक खेल है, और ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन जो 3-13 जुलाई तक लोनाटो, इटली का जो शहर है लोनाटो, वहाँ पर ये खेला जा रहा है। और आज जो मुकाबले खेले जाने हैं उसमें क्वालिफिकेशन राउंड खेले जाएंगे, जिसमें भारत की तरफ से पुरुषों के स्कीट इवेंट में ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, भवतेज सिंह गिल, सुखबीर सिंह हरिका, मरतेज अहमद खान और अनंतजीत सिंह नरोका, ये आज अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वहीं महिलाओं की स्कीट इवेंट में जो क्वालिफिकेशन राउंड है उसके लिए वंशिका तिवारी, परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लन और मानसी रघुवंशी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय जो निशानेबाज हैं वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इस बार भी निशानेबाजी से कुछ अच्छी खबरें सामने आएंगी। और वहीं अच्छी खबरें आ रही हैं, बल्कि वो है एशियन बॉक्सिंग से।
1: जी हाँ, आइए बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। जकार्ता में चल रही है अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसका कल दूसरा दिन रहा, जहां

0: भारतीय बॉक्सर्स का प्रदर्शन सराहनीय रहा। अंडर 23 वर्ग में पुरुष 55 किलो बैंटम वेट वर्ग में भारत के गंगा ने मंगोलिया के अगलाम बतार बुलगन खू को 5-0 से हराया। वहीं पुरुष 60 किलो वर्ग लाइट वेट वर्ग में जापान के कोइची नाकायामा ने भारत के सागर जाखर को हराया। कल के अंतिम पुरुष 70 किलो लाइट के मिडल वेट वर्ग मैच में भारत के हितेश ने चीनी ताइपी के जून जियांग लिन को 5-0 से शिकस्त दी। बात करें तीसरे दिन आज की, तो अंडर 19 वर्ग में पुरुष 47 से 50 किलो वर्ग फ्लाई वेट वर्ग में भारत के अंबेकर मैती ने चीनी ताइपी के की यू जाओ को हराया और अगले राउंड में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में पुरुष 60 किलो लाइट वेट वर्ग में भारत के सिकंदर ने कोरिया के तैमिन यंग को 5-0 से हराया।
1: अगर हम बात करें खेलों की दुनिया की, तो बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें लगातार पिछले कुछ समय से लगातार, खास तौर से बीजिंग ओलंपिक में जब विजेंद्र सिंह का मेडल आया था, उसके बाद से लगातार भारतीय बॉक्सर्स शानदार उपलब्धि दर्ज करते आ रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय इस बात को भी जाता है कि भारत में बॉक्सिंग के प्रति रुझान भी बड़ा है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी अब भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं। एक बार समय था जब भारतीय खिलाड़ी केवल विदेशों में जाते थे सिर्फ अनुभव प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब वो समय है जिस भी खेल में भारतीय खिलाड़ी होते हैं तो वो उस खेल में पदक के बड़े दावेदार माने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन या क्रांति कहें, एक सामाजिक क्रांति खेलों के क्षेत्र में आई है, जो अपने आप में दर्शाता है कि एक बड़ी बात अब खेलों के क्षेत्र में हो रही है। और वहीं अब बात कर लेते हैं तीरंदाजी की, और मैड्रिड स्पेन में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में 16 भारतीय अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और दक्षिण कोरिया को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद रिकर्व टीम के हौसले हालांकि बहुत ही अधिक मजबूत हैं। काफ़ी उनको एक्सपीरियंस भी मिला है और कॉन्फिडेंस भी मिला है। रिकर्व टीम में धीरज बोम्बा देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे और अतनु दास हैं। वहीं रिकर्व्स महिला टीम में अंकिता भगत, कुमकुम अलिन मोहुद, कीर्ति शर्मा और दीपिका कुमारी हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है प्रतीक यहाँ पर, कि भारतीय खिलाड़ी जिस तरह से लय में चल रहे हैं तीरंदाजी में, तो कोई बड़ी बात नहीं। कि एक और अच्छी खबर हमें यहाँ से मिल सके।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि मानव ठक्कर और मनुष शाह अब वर्ल्ड नंबर 3 बन चुके हैं मेंस डबल्स में, जो कि उनके हाईएस्ट एवर रैंकिंग है किसी भी इंडियन पेडलर के द्वारा सिंगल्स या डबल्स में।
1: बहुत ही अच्छी बात है, और जिस तरह से इतनी बड़ी रैंकिंग, इतने बड़े मुकाम तक वो पहुंचे हैं, तो ये दर्शाता है कि एक बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि खेलों में समय और अनुशासन दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आप अनुशासन के साथ खेलते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बड़े खिलाड़ी बनते हैं और कई सारी बड़ी अचीवमेंट्स आपके नाम होती हैं। प्रतीक, ढेर सारी खेलों की खबरें तो हैं हमारे पास, लेकिन अब स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरे युवा सहयोगी प्रतीक आनंद के साथ, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी

0: ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.

0: They remind us that protecting nature is not only the responsibility of governments and institutions, it is also a responsibility shared by individuals and communities. As we celebrate Van Mahotsav, the occasion invites us to do more than plant saplings. It invites us to remember a civilizational wisdom that has guided generations before us. From hymns of the Vedas to the reflections of the Upanishads, from the journeys of the Rama and the Pandavas to the sacred groves protected by village communities, the message remains remarkably consistent. Human prosperity and harmony with nature must go hand in hand. The whispers of the Aranya still echo across our land. They remind us that forests are not only stretches of trees, they are places of memory, learning, culture, and life itself.
1: Whispers of the Aranya, Indian Cultural Evolution and the Forest. That was a talk by Barsha Nag Bhoumi.
2: Iyam Akashavani Samprati Vartaha Shruyantam Pravachika Nidhihi Jhaha. आदौ मुख्याः वार्ताः वैश्विक शान्ति स्थिरतायै भारत इण्डोनेशिया देशयोर रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानम् जकार्तायाम् इण्डोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान् भारत इण्डोनेशिया देशयोर मध्ये महत्वपूर्ण खनिज नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी कृषि अथ सामुद्रिक सुरक्षा इत्यादिषु विविध विषयेषु प्रमुख संधिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बिंतंग आदिपूर्ण इत्युपाधिना समलंकृतः केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे एकस्मिन् सुरंग मार्ग निर्माण स्थले संजातेन दारुण पंकपातेन त्रयः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्व सूचनानुगुणम् आगामिषु त्रिषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विशेषतः गुजरात हरियाणा पंजाब अथ राजस्थानस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते अपि च पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः द्वितीये तृतीये द्वन्द्वे भारतम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम नगरस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यस्य इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय संबंधं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापक रणनीतिक संधेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधि मंडल स्तरीयं विचार विनिमयं अकारि द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज कृषि सामुद्रिक सहयोग नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि उभाभ्यां नेतृभ्यां जकार्ता नगरे भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता संभाषणावधौ उभाभ्यां भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता जकार्तायां राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः
3: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं
2: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इंडोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत्। तेन अयं प्रतिष्ठित पुरस्कारः भारतस्य सार्धशतकोटि जनेभ्यः समर्पितः।
3: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
2: इतः प्राग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायाम इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। प्रधानमंत्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तंत्रस्य माध्यमेन अत्यंतं निकटतया कार्यं कुरुतः।
3: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
2: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माण स्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनां अत्यंतं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरंतर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रीय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्य आरक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां संबोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप प्रेसिडेंट कप शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां हरित क्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारंभं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे संबोधयन् श्री शाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपन संकल्पः दिल्ली पर्यावरणस्य पर्यावरणतंत्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यंत्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टि उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य 50,000+ कृषि उद्यमिनः 50 लक्ष कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारंभम् अकरोत्। निर्वाचन आयोगेन बिहार गुजरात मध्यप्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः

0: अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूला वर्तते। अद्य तटीय कर्नाटकस्य गुजरातस्य कोंकणस्य गोवा राज्यस्य मध्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञानेन विभागेन पूर्वानुमानितम्। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ नॉटिंघम इत्यस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यत्र पंच स्पर्धानां श्रृंखलायाः तृतीये विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतीय दलं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम
0: राम राम। और आज है मंगलवार का दिन बहन भाइयों, और आज हम लेकर आए हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम आप सभी के लिए। प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: ग्राम संसार कार्यक्रम इस समय आप सभी सुन रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है सजीव फोन इन कार्यक्रम, और जो आज के गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत का विषय है वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल।
2: बिल्कुल, और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर, पूर्व गन्ना विशेषज्ञ गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से।
1: और देखिए, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको गन्ने से संबंधित कोई भी समस्या है, गन्ने की फसल से संबंधित बुआई कटाई कुछ भी है, तो उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है आप उस समस्या का सीधा समाधान पा सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन सुनने के लिए आपके पास जो है हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फ़ोन नंबर बता दें नीलम भाई।
2: बिल्कुल, नंबर है 0111-23-42-10-83। दूसरा नंबर है 0111-23-42-10-83। बहन भाइयों, आप इन दोनों नंबरों पर फोन करके विशेषज्ञ से गन्ने फसल से संबंधित कोई भी समस्या है, जानकारी लेना चाहते हैं, या आने वाले समय में आप गन्ने की खेती करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप विशेषज्ञों से सीधे बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो चलते हैं स्टूडियो की तरफ, बढ़ते हैं और गन्ना फसल से संबंधित विशेषज्ञ जो बताते हैं सुनने का प्रयास करते हैं। आपके फोन इन का मतलब जो हमारा फोन इन कार्यक्रम है, आपके फोन का हम इंतजार भी कर

0: रहे हैं।
1: किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर डी एस सिरोही जी। दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब, आज का जैसा हमारा विषय है गन्ने की बंधाई और गन्ने की देखभाल, तो इस विषय पे आने से पहले डॉक्टर साहब चाहूँगा कि क्योंकि अब जुलाई चल रही है और जुलाई के महीने में कहीं कहीं पे बरसात भी शुरू हो गई है
2: जी,
1: और जो पानी बरसता है निश्चित तौर पे कहते हैं कि गन्ना और धान दोनों ये पानी के चेले होते हैं
2: जी।
1: क्योंकि अगर इनको पानी कम मिलेगा तो इनकी बढ़वा रुक जाती है। तो जो ये पानी इस समय बरस रहा है तो गन्ने की फसल के लिए उसका कितना उपयोग है?
2: बहुत बढ़िया सवाल पूछा है शिवनंदन जी। वर्तमान में जो गन्ना बढ़ रहा है, बारिश हो रही है
1: जी,
2: पहली बारिश के साथ दो चीज़ें पानी के साथ साथ आती हैं, एक तो वायुमंडल की नाइट्रोजन और दूसरा सल्फर
1: जी,
2: और दोनों की दोनों जमीन के अंदर आएंगी और वो प्लांट उसको जड़ों के माध्यम से अवशोषित करेगा। जैसे ही बारिश होती है एक चेंज आ रहा है गन्ने की फसल के अंदर, चेंज ये आ रहा है अभी तक जो हॉट एंड ड्राई वेदर था
1: जी
2: वो अब हॉट एंड वेट वेदर में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि गन्ने की जो फसल फॉर्मेटिव स्टेज से इलोंगेशन फेज की तरफ को बढ़ रही है, और जैसे ही ये रेनी सीजन आएगा और रेनी सीजन के साथ साथ गन्ने के अंदर कुछ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप स्वतः अपने आप परिलक्षित होता हुआ दिखाई देने लगेगा। जहाँ तक प्रश्न है पहली बारिश का, पहली बारिश में जो नाइट्रोजन और सल्फर आई और वातावरण के अंदर जो खुश्की थी
1: जी,
2: और जैसे ही ह्यूमिडिटी आई गन्ने की फसल एकदम बढ़वार की तरफ अग्रसर होगी, और बढ़वार की तरफ अग्रसर होने के साथ साथ ही उसके अंदर कुछ कॉमन गन्ने की जो बीमारी हैं उनका प्रकोप बढ़ता है। वर्तमान में यदि हम बात करें
1: जी
2: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सापेक्ष यदि बात करें तो अब भी CO0238 जो गन्ने की एक किस्म है इसकी खेती अब भी की जा रही है
1: जी,
2: और इस समय इसके अंदर दो रोग बड़े प्रमुखता से देखे जा रहे हैं। पहले नंबर पे एक रोग है पोक्का बुई, और दूसरे नंबर पे एक रोग और है वो है बैक्टीरियल रॉट। पोक्का बुइंग ये एक फफूंदी जनित रोग है जिसका फफूंदी का नाम है फ्यूजेरियम
1: जी,
2: और ये गन्ने की उन किस्मों के अंदर ज़्यादा आता है जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। अभी तक जो हॉट एंड ड्राई वेदर था, जैसे ही हॉट एंड वेट वेदर हुआ
1: और ह्यूमिडिटी बढ़ी,
2: हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ी है, आर्द्रता बढ़ी वायुमंडल के अंदर, जब आर्द्रता बढ़ी तो ये फफूंद अपने आप में एक्टिव होने लगी, और एक्टिव होने के साथ ये जो रोग है ये गन्ने की उन किस्मों में ज़्यादा आता है जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। चौड़ी होने का एक कारण है कि उन चौड़ी पत्तियों के ही अंदर ये रोग क्यों आता है, उसके अंदर मॉइस्चर और ज़्यादा समय तक रुक पाता है जो स्पिंडल की बीच की पत्तियां हैं, और वहीं से इस रोग के लक्षण फसल के ऊपर परिलक्षित होना शुरू हो जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब इस पे हम विस्तार से बात करेंगे
2: जी,
1: लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि आज हमारा जो गन्ने की खेती का विषय है गन्ने की बंधाई एवं उसकी देखभाल, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जो कि गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में वैज्ञानिक रह चुके हैं, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर डी एस सिरोही, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गन्ने के मुजफ्फरनगर में। दोनों का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जो किसान भाई हमारे विशेषज्ञों से सवाल करना चाहते हैं निश्चित तौर पे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2342-1082 और 2342-1083, और हमें लगता है कि एक किसान भाई लाइन पे भी हैं, तो क्यों ना डॉक्टर साहब उनसे बात कर ली जाए
2: जी। जी बिल्कुल।
1: हेलो।

0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
0: अरविंद कुमार राठी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर।
1: जी अरविंद जी, क्या सवाल है आपका?
0: हाँ जी, हमारा ये सवाल है जी, गन्ने में माइट और पोका बोइंग दो रोग आ रहे हैं जी,
2: जी
0: और इनका ट्रीटमेंट के बारे में, जो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो दोनों रोगों पर अटैक करे।
2: अच्छा जी
1: जी डॉक्टर
2: जी, आप ने कौन सी गन्ने की किस्म लगा रखी है खेत में?
0: डॉक्टर साहब अरविंद बोल रहा जी, अरविंद राठी बोल रहा।
2: अच्छा राठी जी, अच्छा अच्छा, देखिएगा राठी जी, आपका जो सवाल है, जो पोका बोइंग रोग है वो तो एक फफूंदी जनित रोग है, और जो माइट है वो एक कीड़ा है, तो दोनों की एक दवा तो नहीं होगी, ये एक नेचुरल सी बात है, अलग अलग होगी। ठीक है,
0: कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जी ऐसा?
2: ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके बारे में बात करी जाए, लेकिन आपकी एक समस्या का मैं समाधान यहाँ पे जरूर करूँगा। जहाँ तक आपने माइट की बात की, माइट वो वाली माइट तो नहीं है, तीन चार तरीके की माइट है, वेबिंग माइट जिसमें सफ़ेद रंग के बिंदे बिंदे से,
0: हाँ जी टिक्के वाली
2: है, वो वही है ना वेबिंग माइट।
0: हाँ, हाँ जी, हाँ जी।
2: वेबिंग माइट के लिए आपको एक काम करना होगा राठी जी, कि एक दवा है इमेटाक्लोरपिट 17.8 SL की,
0: अच्छा जी
2: 15 लीटर की टंकी में 5 ml इस दवा को आप डाल दें,
0: अच्छा जी,
2: और इसमें 2 या 3 ml नीम का तेल भी डाल दें,
0: अच्छा जी,
2: और नीम का तेल डालने के बाद आप इसका स्प्रे कर दें, स्प्रे इतना होना चाहिए कि पत्ती पूरी भीग जाए, नहा जाए,
0: अच्छा जी।
2: तो जो नीम का तेल है वो तो रिपेलेंट का काम करेगा, कीड़ा वहां से जगह छोड़ेगा, और अच्छा जो इमेटाक्लोरपिड है वो दवा जो है इनसेक्ट कॉन्टेक्ट एज वेल एज सिस्टेमिक है, तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जहाँ तक प्रश्न नहीं नहीं अभी माइट की मैं बात कर लूँ, पोका बोइंग को बाद में करेंगे, माइट का ही यहाँ पे वो है, जैसे ही बारिश होगी, अब बारिश हो रही होगी, मुजफ्फरनगर में भी बारिश हो रही होगी, आज दिल्ली में भी अच्छा पानी पड़ रहा है, तो ये अपने आप स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात करते हैं पोका बोइंग की। पोका नाम सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, पोका एक जेवेनीज वर्ड है जिसका मतलब है टॉप ट्विस्टिंग या मॉल फॉर्मेशन ऑफ टॉप, मतलब चोटी का विकृत हो जाना या कुरूप हो जाना। इसमें आपको देख रहा होगा कि बीच में जो स्पिंडल की पत्तियां हैं वो हरा रंग छोड़ पीले रंग की हो जा रही हैं, और पत्तियों के ऊपर झुर्री सी पड़ रही होंगी और पत्तियों पर खिंचाव पड़ रहा होगा।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: इसके लिए एक जो सबसे बढ़िया दवा है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC, ठीक है, और COC का 0.2% का सोल्यूशन। अब 0.2% से बोलें तो ये बनता है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा। अच्छा। यदि प्योर COC की बात करें, यदि आप किसी दवा को डालेंगे उसके अंदर बाहर रैपर पे लिखा रहता है ये 50% का है या 70% का है, अगर 50% का है तो दवा ये 4 ग्राम हो जाएगी,
0: अच्छा,
2: 1 लीटर पानी में,
0: अच्छा,
2: और आप इसको स्प्रे कर सकते हैं।
0: कितने दूसरा भी करना पड़ेगा वो? कितने
2: 15 दिन के अंतराल पे दूसरा स्प्रे साथ अगर आप कर देंगे तो निश्चित रूप से आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको बहुत सस्ती दवा बताई है COC की। कुछ किसान भाई कोनिका को भी यूज कर रहे हैं, कोनिका को भी यूज कर सकते हैं आप, वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर दें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप खुद स्प्रे करें और अपने पड़ोसी को कहें कि वो भी स्प्रे करें, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है, इसके स्पोर हवा के माध्यम से फैलेंगे, अगर वो भी स्प्रे करेगा तो निश्चित रूप से फसल की सुरक्षा हो पाएगी।
1: यानी कहने का मतलब ये है कि सामूहिक तौर पे जो आसपास के किसान हैं सभी मिलकर
2: जी
1: छिड़काव करते हैं तो सभी की फसल में फायदा
2: होगा।
3: नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: ऐसा है जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इमीडाक्लोरपिड का आपको बता दी दवा, अगर नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
0: अच्छे हैं जी।
3: देखिए मानसून जैसा आप देख रहे हैं, मानसून अब आ ही गया है, अवतरित हो गया है और सब क्षेत्रों में बारिश हो रही है, दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इस समय। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी दवा इमीडाक्लोरपिड और आपका नीम का तेल की बात बताई, अगर किसी खेत में बहुत ज़्यादा ग्रसित आपको माइट का लक्षण आता है और कंट्रोलिंग में करनी है तो ओमाइट दवा जो धानुका की आती है उसका अकेले में आप स्प्रे कर देंगे तो 100% उसका नियंत्रण हो जाएगा।
0: ठीक है जी डॉक्टर साहब,
2: ठीक है।

0: कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आपकी जो माइट और पोका बोइंग से संबंधित सवाल था उसका जवाब मिल गया। और दूसरे किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्कार नमस्कार।
1: इंद्रवीर तेवतिया, गांव लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी तेवतिया जी, कैसे हैं?
1: अरे सर जी, बढ़िया है। और आपका आकाशवाणी परिवार जो समय समय पर समय अनुसार फसलों की प्रक्रियाओं को और क्रियाओं को बताता रहता है, इसके लिए आकाशवाणी परिवार बहुत बहुत साधुवाद और बधाई का पात्र है। पूरी टीम को नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार पेवतिया जी,
0: क्या सवाल है आपका आज का?
1: सवाल ये है कि जो पेड़ी की बधाई होनी है, अभी जो देसी भाषा में झुकला रही है बारिश के बाद में, उसके लिए क्या प्रबंध किया जाए कि जिससे उसकी बधाई नीचे की जाए या लगभग कितने ऊपर की जाए? और जो छोटी बुयर हुए जिसमें पानी भर रहा है, उसमें क्या प्रक्रिया की जाए या क्या उसमें उर्वरक डाले जाए जिससे कि वो भी बढ़िया पैदा हो सके और किसान भरपूर उत्पादन ले सके?
2: हाँ तेवतिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आज का ये टॉपिक भी है। जैसा आप जानते हैं, जो हमारी रेटून या पेड़ी की फसल है, आप जानते हैं कि भाई उसी वो फसल हमारी जो फसल की हाइट है 5 से 6 फीट की जब हाइट हो जाती है, तो हमें ये आभास होने लगता है कि इसकी बधाई की बहुत आवश्यकता है। तो अभी जो पेड़ी वाले खेतों में हैं, उसमें अभी अपने खेत की कंडीशन को देख के कि भाई इस बधाई को गन्ना गिरने पाए हमारा, और गन्ना गिरने बधाई के जो हमारे फायदे हैं, उन फायदों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जो है पेड़ी गन्ने की बधाई, जो अमूमन जुलाई प्रथम मध्य जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने तक हम प्रारंभ करते हैं। जो सवाल आपने पूछा है पौधा गन्ने के लिए, प्लांट केन के लिए, उसमें हमें दो चीज़ें किसान भाइयों को याद रखनी है। जैसे मानसून आ गया, आप भली भांति परिचित हैं कि एक हमें उसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा हमें अपनी यूरिया से देनी है, एक तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो पूरी जो मात्रा लास्ट वाली जो हमारी डोज है जो हमें बेसल में देनी है, चाहे वो पेड़ी की फसल है और चाहे वो हमारी पौधा की फसल है, तो उसमें बरसात से पहले पहले हमें जो है यूरिया का छिड़काव या स्प्रे माध्यम से जो भी आप नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, वो मानसून से बरसात से पहले पहले आप उसको कंप्लीट कर दें। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आज का सवाल भी चल रहा था कि जिसमें आपको जो हमारी थर्ड ब्रूड चल रही है इसकी टॉप बोरर की, वो कम जो हमारी लेट प्लांटिंग है, जो आफ्टर वीट हम गन्ने की बिजाई करते हैं, अमूमन हमारे आप बुलंदशहर से बोल रहे हैं तो बुलंदशहर मुजफ्फरनगर मेरठ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के बाद काफ़ी मात्रा में 30 से 40% बुआई होती है, जानते भी हैं आप। उसमें अगर किसी जी
1: बोल रहे
2: जी जी
1: अरे धन्यवाद।
2: तो उसमें तेवतिया जी, आप जो है उसमें ध्यान रखना है, जो CTPR है, अगर किसी वजह से कहीं विलंब हो गया है तो CTPR का इस्तेमाल जल्दी से जल्दी करें, जिससे हमारी जो थर्ड ब्रूड है गन्ने की, जो तीसरी पीढ़ी का नुकसान होने वाला होता है, जो अब वो ब्रूड का समय चल रहा है, उससे गन्ने को हम अपने उत्पादन को प्रभावित ना करें और समय से उसकी चोटी बेधक की जो थर्ड ब्रूड है उसको नियंत्रण कर लें। तो पौधा गन्ने में हर हालत में आपने पेड़ी की फसल में उसको डाल लिया होगा, अगर CTPR कोरोजन आदि नहीं डाली है तो उसको आप डाल लें, और इस तरीके से अपनी फसल की सुरक्षा रखते हुए उत्पादन को आगे बढ़ाते हुए कदम हमारी आपसे आशा है कि इन कामों को करके आपका उत्पादन अधिक से अधिक होगा।
0: जी तेवतिया जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सिरोही जी ने आपके सवालों का बहुत विस्तार से जवाब दिया। और तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बंधाई की बात हो रही है, तो पहले तो कहते हैं कि कोई बार कार्य किया जाता है, कहते हैं कि इसका करने का हमें फ़ायदा क्या है, क्या महत्व है? अरे डॉक्टर साहब, चाहेंगे कि किसान भाई लाइन पर हैं, उनसे बात कर लें।
2: हेलो
0: हेलो।
3: हाँ जी सर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
3: सर, मेरा एक सवाल है।
0: नाम पता बताओ अपना।
3: मेरा अरुण कुमार नाम है, जिला शामली से, उत्तर प्रदेश।
0: जी जी जी।
3: मेरा एक सवाल ऐसे कि सर, जैसे मान लिया बारिश का मौसम है, अब जब टॉप बोरर चल रहा
0: जी,
3: और टॉप बोरर की पीडीए कब तक है, किस टाइम तक रहेगी, और इसके स्प्रे जिस तरह बरसात में है, स्प्रे का समय कितना हो सकता है, कितने समय में पौधा एग्जोर कर लगा
0: जी? डॉक्टर अवधेश जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं।
4: अरुण जी, ये जो वर्तमान में टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी की जो मौत है वो निकल चुकी होगी इस समय, और उसने एगलेइंग कर दी होगी पत्तियों के पीछे
3: जी।
4: ठीक है, अब आपको एक काम करना है, यदि आपने अपने खेत के अंदर सीटीपीआर का प्रयोग किया है प्लांट के अंदर, या रेटून के अंदर आपने फटेरा वटा को जो भी एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें डाली हैं, अब ये सारी की सारी सिस्टमिक हैं, उसके सिस्टम में पहुँच गई, और जो उसने एगलेइंग करी है, एगलेइंग के 8 से 10 दिन बाद उसकी हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद फिर उसके अंदर से कटरपिलर निकलेगा, और जब कटरपिलर निकलेगा, अगर आपने सीटीपीआर डाल रखा है, अगर वो कटरपिलर निकलेगा जब उस पत्ती पे मुंह मारेगा तो उसकी गट में प्रॉब्लम करेगा, और वो वहीं से आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी यदि आपने प्रॉपर तरीके से सीटीपीआर का प्रयोग किया होगा उस स्थिति में। यदि आप चाहते हैं कि और कुछ हम करना चाहें, तो वर्तमान में सबसे बढ़िया चीज़ है टॉप बोरर के लिए लाइट ट्रैप
3: जी।
4: एक तो लाइट ट्रैप का प्रयोग करें, लाइट ट्रैप का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से सारी की सारी तितलियां उस लाइट के ऊपर आकर्षित होंगी, और नीचे उसके पानी रहता है। आजकल तो ऐसे लाइट ट्रैप आ गए हैं जिसके अंदर ल्यूर भी ऑलरेडी लगा हुआ है टॉप बोरर का
3: जी।
4: हर तरीके से फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप वो मिक्स कर रखा है उन्होंने, वो चीज़ें भी आ रही हैं। और शामली के किसान तो वैसे ही बहुत एडवांस है अपने आप में, मेरी समझ से आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे। ठीक है जी, और क्या जानना चाह रहे हैं जी, बताइए।
3: मेरा ये जानना का था जी, जैसे मान लिया अभी 15 दिन या 20 दिन में हम स्प्रे करते हैं
4: जी,
3: तो स्प्रे का टाइम अगर ठीक चल रहा है, जैसे बरसात हो रही है अभी
4: जी,
3: तो मान लिया हमने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमारी बारिश होगी
4: जी
3: स्प्रे के बाद में, तो कितने समय तक हमें स्प्रे जो है ठीक रहेगा जो बरसात ना हुए?
4: अच्छा, स्प्रे दो तरीके के हैं। आप यदि किसी फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, सीओसी का स्प्रे कर रहे हैं, तो कम से कम स्प्रे होने के 5-6 घंटे तक अगर बारिश ना हो तो आप सेफ साइड रहेंगे। ठीक है,
3: ठीक है सर।
4: क्योंकि जैसे ही आप दवा डालेंगे, स्प्रे करेंगे, वो स्टोमेटा के माध्यम से अंदर तो जाएगी, उसमें कुछ तो समय अपटेक में लगेगा ना, ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किसान भाई का फोन लेते हैं
4: जी।
0: हेलो,
5: नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्कार
5: डॉक्टर साहब। गोविंद, नमस्कार।
2: नमस्कार साहब, नमस्कार जी।
5: मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ सर
0: जी। कहाँ से सतीश कुमार जी?
5: मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी।
0: भिवानी से? हाँ, क्या सवाल है आपका
5: सर? असली बात तो यह है, किसान की आवाज नहीं आती रेडियो में।
0: किसान की आवाज रेडियो में नहीं आती? आपकी आवाज, आपकी आवाज तो जा रही है
5: सर। मैं ये टंटी अब इसीलिए करी है और लिखने दबाव पे देख लूंगा।
0: अच्छा,
5: हाँ सर।
0: तो कोई आज के विषय से संबंधित कोई आपका सवाल है
5: सर? पौधा तो सही चल रहा है मेरा तो
4: जी।
0: हाँ, बहुत बढ़िया, आपका बढ़िया चलना चाहिए।
5: हाँ सर,
0: आपने एक लगाई है?
5: एक का एक पौधा लगा रखा सर घर में ही।
0: बहुत बढ़िया, सही है। गमले में? गमले में लगा है कि
5: नहीं जी, जमीन में लगा रखा।
0: जमीन में? फिर तो हरा भरा होगा खूब।
5: हाँ जी।
0: कितना बड़ा हो गया?
5: हो गया होगा 3 फुट के करीब।
0: चलो, और बड़ा हो जाएगा, बरसात पड़ने दो। लेकिन 3 फुट से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आपने उसके नीचे जो गहराई है वो नहीं करी होगी, क्योंकि जितनी गहरी जड़ें जाती हैं गन्ना उतना ही बढ़ता है।
5: अच्छा सर।
0: हाँ
2: सतीश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था।
5: हाँ सर।
2: आपने अपने किचन गार्डन में केवल एक ही पौधा क्यों लगाया है गन्ने का?
5: सर मैंने तो ट्राई नहीं है
2: जी।
0: कोशिश करी इन्होंने।
2: अच्छा कोशिश करी है नहीं, एक आध बेड में आप कोई सी वैरायटी लेकर के उसको गन्ने की जो क्लाइमेट है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गन्ना हो नहीं सकता,
0: होता है।
2: तो आपकी जो जमीन है वो सब सैंडी लॉम टाइप की है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, तो आप गन्ने की छोटे स्केल पे से एक आध एकड़ की खेती शुरू प्रारंभ कर सकते हैं।
5: सर खारा पानी है, करूँ क्या?
2: अच्छा खारा पानी है
5: जी
0: जी, मुश्किल ये है। ठीक है सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर साहब जिस तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा है गन्ने की बधाई एवं देखभाल। और हम आते हैं जो बात कर रहे थे कि गन्ने की बधाई का महत्व और उसका जो समय सही क्या है।
4: वैसे गन्ने की बंधाई 15 जुलाई के आसपास शुरू हो जानी चाहिए, और महत्व तो ये है कि गन्ना एक पूरे साल की फसल है, जैसे जैसे गन्ने की फसल बड़ी होगी उसकी गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है बरसात के महीने में
0: जी,
4: और इसीलिए बंधाई की जाती है। और बंधाई करने का जो तरीका है कि पहली बंधाई जब होगी गन्ने की वो कम से कम 70-80 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर हो, और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गन्ने का सिर नहीं बांधना, अगर सिर बांध दिया आपने
0: जी
4: तो आपकी जो है पैदावार और वो वहाँ पे प्रभावित हो जाएगी, ये एक
0: पैदावार कम हो जाएगी
4: जी।
0: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
6: हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अब्दुल हमीद जिला बिजनौर यूपी से बोल रही
0: हूँ। जी अब्दुल हमीद जी,
6: जी मेरा सवाल ये है कि एक बार तो हमने स्प्रे कर दिया,
0: किसका?
6: अब टॉप बॉलर का।
0: अच्छा
4: काहे का, किस चीज का?
6: कहेगा कि इसमें कोराजन भी लगाई है
4: जी,
6: और इसमें एक दवाई जो इमीडा और क्या नाम वो आती है पिप्रोनिल मिली भी वो लगाई इसमें, और एक फंजीसाइड लगाई इसमें।
4: सुनिएगा, अगर आपने स्प्रे करा है कोरोजन की तो ड्रेंचिंग होती है, फिर आप स्प्रे की बात कह रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे।
6: देखिए हम ऐसा करते हैं
4: जी,
6: इस समय पेड़ी में तो हमने कर दिया दो बार स्प्रे, और नौलख में जो पौधा करना है उसमें एक बार करा आप, या
4: उसमें एक बार का काहे का करा है
6: जी? इसका ही करा जिससे कोई टॉप बॉलर ना हो, ऐसा अभी तक कोई बीमारी नहीं थी गन्ने के अंदर।
4: नहीं नहीं नहीं, देखिएगा जो पौधे गन्ने की आपने बुआई की है वो कब करी है, गेहूं काटने के बाद की है या गेहूं काटने से पहले की है?
6: मार्च
4: के महीने में, इसका मतलब आपने बसंत काल में ईख बोया है। ठीक है
6: जी, जी,
4: अब तो गन्ना का काफी बड़ा हो गया होगा, ब्यांत भी कर गया होगा।
6: हाँ बहुत पूरा फुल हो गया,
4: तो उसके अंदर आपने CTPR का प्रयोग कर दिया
6: जी जी,
4: है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल जिसको हम कहते हैं, है जो टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी और के कंट्रोल करने के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब आप क्या जानना चाह रहे हैं?
6: अब हम ये जानना चाहते हैं, वैसे तो हम जो लाइट की वाली बात करते हैं वो भी कुओं पर हम लाइट लगाओ रहते हैं।
4: अच्छा, लाइट ट्रैप लगा रखा है?
6: हाँ जी, वो भी लगा रखा।
4: क्या उसके अंदर
0: व्यवस्था सारी कर रखी है इन्होंने?
6: हाँ, उसमें
0: जागरूक किसान है,
6: पानी डालकर नीचे उसमें तेल वेल डाल दो रहे हैं हम, जिससे वो आवेगी ना चीज सब गिर जाएगी।
4: जी जी जी। अच्छा लाइट ट्रैप,
6: अब जी लाइट ट्रैप वो भी लगा रखा हमने, और मतलब पूरी अच्छी बढ़िया उसमें। अब मेरा एक सवाल और थोड़ा सा इससे हटकर
4: जी,
6: पौधा गन्ने में तो हमने ट्राइकोडर्मा लगाया
4: जी,
6: सारे गन्ने में जितना भी बोया है
4: हमने
6: ट्राइकोडर्मा लगाया
4: जी।
6: अब कुछ हमारे पास वो रखा जो लिक्विड में है,
4: तो
6: वो पेड़ी में हम टपका कर लगा रहे हैं, जैसे पानी के उस पर रख दिया, वो पानी टपकता रहे तो वो उसमें फैलाया जा रही है पेड़ी में।
4: अच्छा,
6: तो क्या ये विधि इसकी सही है, या इसका भी स्प्रे कर दिया जाए तो वो ज्यादा कारगर होगा, या ये ज्यादा सही है?
2: ऐसा है, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ खान साहब। एक तो ये डॉक्टर साहब क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ अधूरी बात रह गई थी, जो CTPR जो आप स्प्रे की बात कर रहे थे ना कोरोजन की, ड्रेंचिंग की एक बार भी बात आपने स्वीकार नहीं करी। आपने करुआ नुमा वो बना करके अपनी स्प्रे पंप से जड़ों में आपने क्या इसकी ड्रेंचिंग करी थी क्या कोरोजन की?
6: नहीं, जड़ों में नहीं करते जी, हम तो इस पर पत्ते पे करते हैं, अभी करी हो, इसमें कोरोजन भी मिलाया, इसमें इमीडा और इसमें पिप्रोनील वाले जो वो लिसेंट आता वो मिलाया।
2: देखिए सुनो, आप ऐसा विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अगर आपका जो पौधा गन्ना है, पेड़ी की फसल बाप की बड़ी हो चुकी है, जो आपका पौधा गन्ना है इसमें अगर आप ड्रेंचिंग जरूर करें, उसी से आपका कंट्रोल नियंत्रण में हो जाएगा। जो आप ट्राइकोडर्मा की बात पूछ रहे हैं उसे आप उस तरीके से लगा सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, इनके सवालों का जवाब बाद में देंगे। अब
7: बहन भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। हमारा फोन इन कार्यक्रम हिंदी समाचारों के बाद भी जारी रहेगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
3: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
2: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत, जिसमें फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा।
4: बहन भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: सजीव फोन इन कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। जैसे कि बता दें, इससे हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारा पाठशाला है गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत जो विषय है हमारा, वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल। और जो गन्ना विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर अवधेश कुमार डागर, पूर्व गन्ना विशेषज्ञ, गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर।
3: जी बिल्कुल। और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की फसल से कोई भी सवाल है, समाधान चाहते हैं, पूछ सकते हैं, विशेषज्ञों से सीधा बात कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं।
2: तो चलते हैं,
3: नंबर एक बार फिर बता दे अपने बहन भाइयों को। बहन भाइयों, नंबर है 0111-23-42-10-82 और दूसरा नंबर है 23-42-10-83।
4: डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी और डॉक्टर सिरोही जी, दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं तब तक हम अपने कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, गन्ने की बंधाई के महत्व की बात हो गई और बंधाई का समय के, और एक बंधाई का तरीका भी अलग अलग तरीके से भी किसान भाई बांधते हैं। तो डॉक्टर सिरोही जी, जानना चाहूँगा कि क्या तरीका है सही से गन्ने की बंधाई का।
5: देखिए, जैसा आपने सवाल किया है, अभी जैसे अभी समय आने वाला है, जैसे 5 से 6 फीट की हाइट गन्ने की हो जाएगी
4: जी,
5: तो उसमें जो वहाँ का उसका मेथड है, गन्ना ट्रेंच मेथड से बोया हुआ, तो उसकी बंधाई दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। और जो हमारा 28-30 इंची पे आम बुआई करते हैं उसको दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। किसान भाई को जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है, उसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत इस बात की है कि जो ऊपर का पोर्शन है तना, वो पत्ती के द्वारा जो सूखी पत्ती से बांधते हैं उसके ऊपर से बंधाई वो बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसकी हवा रुक जाएगी। उसको विशेष तौर से ध्यान में रखने की जरूरत है कि उसको मतलब दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है, दोनों लाइनों को मिला करके उसकी नीचे से कम 4 फीट ऊंचाई पे

0: पहली बधाई वहां से प्रारंभ करनी चाहिए और ऊपर की साइड से उसको ना रोकें जिससे उसकी बढ़वार को प्रभावित ना हो, ये विशेष ध्यान रखना।
1: कहने का मतलब जो गन्ने की पुरानी पत्तियां हैं,
0: हाँ,
1: जो पीली पड़ चुकी हैं, आधी सूख भी चुकी हैं,
0: जैसे
1: उस पत्तियों से नीचे के हिस्से में बांधना है, ऊपर
0: हाँ,
1: को जो जहां से हरी पत्तियां शुरू होती हैं उसकी बंधाई नहीं
0: करनी है।
1: और डॉक्टर साहब ये तो पहली बंधाई की बात हो गई, और बहुत से किसान भाई दूसरी बंधाई करते हैं तो उसमें आधा एक बंधाई के गन्ने से लेते हैं, आधा दूसरे से लेते हैं, तो जिससे क्या है कि एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं और बरसात आने पे आपकी फसल गिरती नहीं है। मेन मकसद गन्ने का यही होता है कि फसल गिरे नहीं। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
2: हाँ जी,
1: हाँ
0: क्या बोलिए चो साहब,
1: हाँ
0: क्या नाम है जी?
2: करपाल सिंह जी, डॉक्टर साहब राम राम।
0: राम राम जी, राम राम।
2: मैं डॉक्टर साहब एक बात बोलना चाह रहा जी, खेत में पेट जी का खेत है जी, उसमें पत्तों पर धब्बे आ रहे हैं जी।
0: धब्बे आ रहे हैं?
2: हाँ जी, सफेद सफेद जी।
0: हाँ जी,
2: तो उसमें क्या करा जाए?
0: आपकी वैरायटी कौन सी है चो साहब जी? आपकी किस्म कौन सी है गन्ने की?
2: 38
0: है। तो उसमें उसकी पत्ती के नीचे की साइड में आपको व्हाइट व्हाइट चित्तेदार धब्बे से नजर आ रहे होंगे?
2: हाँ जी, धब्बे जी, जैसे जैसे पूरे धब्बे पत्ते पे जी, ऊपर नीचे जी।
0: हाँ, तो अभी जैसे आप कार्यक्रम अगर सुन रहे थे, अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर डागर साहब ने बताया था, उसको रिपीट कर देते हैं हम। वो माइट इस एक तरह का कीट होता है एक, तो उसके कंट्रोल के लिए जैसे आपको अब मौसम खुलता है और आपको टाइम मिलता है, इमीडा क्लोरपीट एक दवा होती है, इमीडा, उसमें थोड़ा सा एक नीम का तेल मिला करके पहला स्प्रे उसमें उससे कर दें, उसी से इसका नियंत्रण हो जाएगा। बारिश हो गई है तो ये कोई अभी जो जैसा थोड़ा ये 0238 में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और एक ही स्प्रे से आपका इसका कंट्रोल हो जाएगा चौधरी साहब। कितने दिन पहले करी थी?
2: मैंने 2 घंटे पहले करी थी, बाद में बारिश हो गई थी।
3: वो तो दवा आपकी बेकार होगी चोई साहब, ठीक है?
2: तो एक आप
3: नहीं, इसमें एक नहीं कुछ नहीं करना है आपको। बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद वातावरण के अंदर नमी आ गई है, और धीरे धीरे ये जो वेबिंग माइट है, इसको वेबिंग माइट हम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। और ख़ास तौर से किनारों की तरफ के पत्तों पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, अंदर खेत के जाएंगे तो वहाँ पे आपको उतनी नहीं दिखाई देगी, ऐसा ही है।
1: ठीक है, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, वो जिस तरीके से हमारे किसान भाई फ़ोन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर गन्ने की फसल तो ऐसे इस समय बढ़वार पे भी है, और लेकिन कई कीड़ों के बारे में बात हो गई। डॉक्टर साहब, एक टॉप बोरर होता है
3: जी, जी,
1: और ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि गन्ने की बढ़वार का,
3: जी जी जी,
1: क्योंकि वो ऊपर के ही गोब में उसको कट कर देता है, जिससे फिर गन्ना उसके ऊपर उसमें
3: नहीं
1: किले नहीं निकलते, मतलब ऊपर से ख़त्म हो जाता है
3: जी।
1: तो इस ये क्या है, कैसे इसके हमारे किसान भाई पहचान करें, और रोकथाम के लिए क्या इसके लिए कर सकते हैं?
3: एक्चुअल में इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्पोफेगा एक्सरपटेलिस
1: जी,
3: और उत्तर भारत के अंदर इसकी 5 या 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे 7 पीढ़ियाँ इसकी मिलती हैं
1: जी,
3: क्योंकि उत्तर भारत में हम हैं इस समय। उत्तर भारत की बात करेंगे तो और बेहतर होगा। टॉप बोरर जैसा कि नाम है
1: जी,
3: हिंदी इसकी है चोटी वेधक, ये चोटी को वेधता है, जो गन्ने का बढ़वार वाला हिस्सा है, एपिकल पोर्शन, जहाँ से गन्ने की वृद्धि होती है,
1: मुलायम हिस्सा,
3: ये उसको खा जाता है। जब उसको खा दिया इसने, खाने के बाद फिर क्या होगा, पौधा बढ़वार लेना बंद हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो नीचे का रूट जोन तो उसका बिल्कुल सही है
1: जी।
3: अब वहाँ से पोषक तत्व आ रहे हैं, जो ऊपर की तरफ आंखें बनी होंगी वो आंखें जमाव ले जाती हैं, और पौधे की वृद्धि रुक जाती है और आपकी पैदावार प्रभावित हो जाती है। अगर इसकी पहचान करने का सबसे सही तरीका ये है कि बीच की गोफ की जो पत्तियां होंगी उसमें छर्रे नुमा छोटे छोटे छेद एक सीध में आपको

0: का बहुत ही बढ़िया तरीका है। यदि
1: जी डॉक्टर साहब बात करेंगे, किसान भाई लाइन पे, उनसे बात कर लें।
0: टेंशन
1: हेलो
0: नहीं था।
1: हेलो,
0: जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: जिला हापुड़ रंगा नहीं से बोल रहा हूँ मैं घनश्याम।
1: जी घनश्याम जी, क्या सवाल है?
0: अरे डॉक्टर साहब को भी सबको राम राम।
2: राम
0: राम
2: राम
0: राम
2: जी,
0: जी।
2: राम राम।
0: ये थोड़ा सा सफेद वाले धब्बे केले सफेद वाला
2: जी,
0: तो वो दिखाई दे रहा था
2: वैरायटी आपकी कौन सी
0: जल्दी।
2: है,
0: हाँ जी जीरो
2: किस्म कौन सी है गन्ने की आपकी?
0: जीरो। हाँ
2: 0238।
0: हाँ
2: ये नया बांस आपका पिलखुआ के पास वाला है, गढ़ के पास वाला है?
0: गड़के
2: हाँ,
0: ब्रिज
2: देखिए ऐसा है, जैसा अभी हमारी चर्चा भी चल रही थी, उसमें
0: घाट
2: अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अभी कोई आपने स्प्रे तो नहीं करा है?
0: ना अभी ना करा।
2: हाँ, तो एक जैसी मौसम खुलता है, आप जो है दवा नोट करें, इमीडा क्लोरोपिड 70.8% वाली जो दवा आती है,
0: जी साहब
2: और उसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिला लें,
0: जी साहब
2: उसका एक स्प्रे कर दें मौसम खुलने पर। प्रथम
0: जी साहब
2: स्प्रे से ही, अब जैसे बरसात हो गई है तो उसी से वो कंट्रोल हो जाएगी, और सब वो जो कीट है महीन, वो जो है आपका खत्म हो जाएगा।
0: आइए ये हम गन्ने के बनाए करते हैं तो सूखा पत्ता नीचे जब बनाए करते हैं
2: जी
0: सूखा पत्ता उतारे गन्ने के जब बनाई करते हैं ठीक
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है, बहुत अच्छा
0: है।
1: करते हैं आप
0: अभी
1: निश्चित
0: सबको
1: तौर
0: राम
1: पे।
0: राम।
2: राम
0: ठीक है,
2: राम,
0: फोन
2: राम।
1: करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे इसके टॉप बोरर की रोकथाम के।
0: टॉप बोरर की रोकथाम की बात चल रही थी
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: रिदिम थोड़ी सी टूट गई। टॉप बोरर के लिए मैंने अभी ट्राइकोकार्ड की भी बात कही, रासायनिक कंट्रोल की भी बात कही। सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है प्रकाश प्रपंच, लाइट ट्रैप।
1: जी
0: लाइट ट्रैप, लाइट जलाने से शाम के समय कीड़े स्वतः आते हैं लाइट के ऊपर।
1: जी
0: और ख़ास तौर से किसान भाइयों ने देखा होगा गांव के बाड़े के जो खेत हैं या गांव के चौगड़दे के जो खेत हैं उन खेतों के ऊपर आपको टॉप बोरर का प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी वजह
1: कम
0: ये है,
1: मिलेगा।
0: हाँ उसकी वजह ये है, गांव में शाम को लाइट जली, कीट पतंगे लाइट की तरफ आकर्षित हो गए और वहां जाके वो खत्म हो गए, मर गए। अगर लाइट ट्रैप आप लगा रहे हैं, खेत के पास लगा रहे हैं, तो सीधी बात है गन्ने में 9 तरीके के बोरर लगते हैं। CTPR से तो आप सिर्फ टॉप बोरर को कम कर पाएंगे, लेकिन यदि लाइट ट्रैप लगाएंगे तो सारे 9 के 9 बोररों की मौत भी उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि लाइट ट्रैप थोड़ा सा महंगा, जरूर किसान भाई कह रहे हैं महंगा है, कोई बात नहीं, इस बार ईंख लगाया अगली बार भी आप ईंख ही लगाएंगे, खेती ईंख
1: जी
0: की होनी है। जब ईंख की खेती होगी तो रासायनिक नियंत्रण से बढ़िया मैं समझता हूँ कि प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप को यदि प्रयोग करेंगे और सामूहिक रूप से यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही टॉप बॉलर के, क्या गन्ने की फसल में ये मिली बैग का भी प्रकोप रहता है?
0: मिली बग का भी प्रकोप है। अगर इस बार जहाँ तक मैंने वेस्टर्न यूपी का सर्वे किया है,
1: जी
0: इस बार टॉप बोरर और मिली बग दोनों ही बहुत ही कम या नगण्य, जिसको कह सकते हैं ना के बराबर है। मिली बग का भी प्रकोप देखने को मिलता है। ये गर्मियों में जितनी भी गर्मी पड़ेगी, इंसेक्ट का अटैक गर्मियों में ज़्यादा होता है क्योंकि पौधे के पास वो मॉइस्चर लेने के लिए आता है।
1: जी
0: और मिली बग खास तौर से वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, या तो पेड़ की छाया में या कहीं पे किसान भाई अपने खेत के पास है, वो गोबर की खाद के लिए जो कूड़ी गोबर डंप करते हैं जहाँ पे, वहाँ पर मिली बग का प्रकोप देखने को मिलता है। मिली बग के लिए खास तौर से ये प्लांट केन में नहीं मिलेगा, ये रेटून केन
1: रेटून
0: में सबसे पहले मिलेगा। और रेटून के लिए भी दवा वही है इमेडा क्लोरोपिट, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग है। इसमें जो ग्रसित पौधे हैं उनकी पत्तियां उतार दी जाएं, पुरानी पत्तियां, और उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे करा जाए। वही 3 लीटर पानी में 1 ml दवा, 17.8 SL वाला आप यदि डालेंगे, निश्चित रूप से आप मिलीबग से अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे।
2: सिद्धन जी, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया लाइट ट्रैप के बारे में
1: जी,
2: उत्तर

0: प्रदेश सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ की भी हैं, वो लाइट ट्रैप पे सब्सिडी दे रही हैं। हर हर हर जिले में जो वहाँ की कृषि रक्षा इकाई हैं, उन्होंने भी उसके लिए इंतजाम कराया हुआ है और काफ़ी सब्सिडी पे 50-60% 70% की सब्सिडी पे मिल सकती हैं। और अपने चीनी मिल के माध्यम से भी बहुत सारी चीनी मिलें अपने सब्सिडी डेट पर दे रही हैं। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है किसानों के लिए। मैं किसान भाइयों से सभी से गुजारिश करूँगा, जो इस समय चल रहा है टॉबर की थर्ड ब्रीड का, उसमें लाइट पर पंच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में लोग इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और हम रासायनिकों के प्रयोग से
1: बच सकेंगे
0: और इसका इस फायदा जो है बहुत ज़्यादा है किसान भाइयों के लिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों।
2: जी बिल्कुल सही बात है कि किसान भाई जो भी कृषि रक्षा इकाई हैं जिले में, वहाँ संपर्क करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनके द्वारा उन्हें सहायता मिलती है या सब्सिडी मिलती है उसका भी लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि गन्ने की फसल में एक बीमारी आती है रेड रॉट,
1: जी
2: तो ये क्या है और किस तरीके से इसका प्रभाव होता है और कैसे किसान भाई इसको पहले से रोक सकें?
1: रेड रॉट दुनिया के शायद ही कोई कंट्री होगा जहाँ पे गन्ना बोया जाता हो और ये बीमारी ना आई हो। ये आती है, पेंडेमिक डिजीज है, वर्ल्ड वाइड है। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी 238 की खेती हो रही है, लेकिन जो गंगा और जमुना के दोआब में तो थोड़ा सा कम प्रकोप देखने को मिला है, लेकिन गंगा, रामगंगा और गंगा के बीच की जो बेल्ट है, खासतौर से जो मुरादाबाद वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद बिजनौर वाला, इसके अंदर रेड रॉट का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और वो भी को 0238 के अंदर। इतना प्रकोप आया है कि क्रेसिंग सीजन कम हो गया। अब सवाल उठता है कि एक साथ वैरायटी नहीं बदली जा सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, इसकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे लेकिन एक किसान भाई का फ़ोन ले लें। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
2: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: तैमूर राणा बात कर रहा हूँ जी।
2: कहाँ से?
3: मुजफ्फरनगर से जी, बुढ़ाने से।
2: अच्छा, क्या सवाल है आपका राणा जी?
3: मेरा ये सवाल है जी, जैसे अब बरसात हुई है जी,
2: जी
3: तो इसमें एक तो माइट की समस्या आ रही थी और एक कीड़ी होती है जैसे क्रिप कह रहे हैं, क्रिप
2: जी,
3: वो आ रही है जी। क्या इससे बारिश का कुछ प्रभाव पड़ेगा?
1: जी
2: जी डॉक्टर साहब,
1: बारिश होने के बाद जो थ्रिप्स आप देख रहे होंगे, जो पत्तियों की टिप है ऊपर की, वो ऐंठ जा रही होगी। अगर उन टिप ऐंठी हुई पत्तियों को खोलते होंगे टिप्स को, तो छोटे छोटे से आपको कीड़े दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही पहली बारिश होगी, ये सारे के सारे थ्रिप्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुछ भी रासायनिक नियंत्रण करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक प्रश्न आता है माइट का, और वो भी वेबिंग माइट जो व्हाइट वाली है, लाइन लाइन सी आपको दिखाई दे रही होंगी गन्ने की पत्तियों पे,
3: नहीं वो धब्बे से भरे, गोल गोल से पेस्ते जी।
1: हाँ, ठीक है
0: तैमूर जी, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हमारी यही चर्चा चल रही थी कि अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, गन्ने में कोई थ्रिप्स नाम की बहुत भयंकर कोई ऐसा कीट नहीं है ये, और जैसा अभी डॉक्टर साहब आपसे बता रहे थे।
3: डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल इसलिए करा, मैं भी सुन रहा था बहुत देर से
0: जी जी।
3: तो इसमें किसानों ने भी जवाब दे दिया, आपने भी दे दिया, तो थोड़ा सा क्या है जैसे मानने की बात है, माइट तो आप इमीडिएट से बता रहे,
0: हाँ,
3: तो जैसे थ्रिप्स है ये तो बारिश से ही चला जाता है।
0: हाँ,
3: तो
0: चला जाता है, बिल्कुल ठीक है।
3: तो इससे भी ये बताओ किसानों की, अभी इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
0: हाँ, यही बात हम कह रहे हैं आपको, यही बात कह रहे हैं इसमें थिप्स के बारे में।
1: अरे
0: किसान ने सवाल नहीं पूछा
1: राणा जी। तैमूर, आपने बात मेरी शुरू से सुनी नहीं, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हर ये माइनर इंसेक्ट हैं, इनके लिए रासायनिक प्रयोग की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पहली रेनफॉल होगी स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
3: जी, नहीं वैसे डॉक्टर जी आप वैसे बहुत अच्छा बताओ, आपने बता भी, कह लगा आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसमें जो है ना थ्रिप्स में थोड़ा सा मैंने मतलब बात क्लियर कर दी
0: भाई। ठीक बात
3: से क्या है? जी
0: नहीं, जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं आपकी बात से, क्वेश्चन करने से इसका सभी को लाभ होगा। तैमूर जी धन्यवाद।
3: जी,
2: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे
1: रेड रॉट की।
2: हाँ, रेड रॉट की।
1: तो रेड रॉट को 0238 में सबसे ज़्यादा आया, पहले ईस्टर्न यूपी में आया, ईस्टर्न यूपी के बाद सेंट्रल यूपी में आया, और सेंट्रल यूपी के बाद मुरादाबाद और

0: बिजनौर वाली बेल्ट में है। अब धीरे धीरे इसका प्रकोप कम हो रहा है। CF-13 एक नया आइसोलेट आया था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें दिखाई दे रही थी। जहाँ तक प्रश्न है कि कैसे कंट्रोल किया जाए रेड रॉट को, ये
1: जी
0: बड़े अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और इसको कंट्रोल करने के लिए
1: जी
0: सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि वैरायटी का बदलाव हो। कहना बहुत आसान है, जो वैरायटी 90% तक थी
1: जी
0: उसका कैसे बदलाव एक साथ कर दिया जाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर हमें ट्राइकोडर्मा के पास आना पड़ेगा।
1: जी
0: ट्राइकोडर्मा की बात रह
1: बिल्कुल
0: गई थी,
1: जी
0: किसान भाई पूछ
1: बिल्कुल,
0: रहे थे। हाँ
1: ट्राइकोडर्मा पे आएंगे, लेकिन एक किसान भाई से बात कर लें पहले। हेलो,
2: जी नमस्ते सिमंदन भाई,
1: नमस्ते जी,
2: और
1: नमस्ते,
2: डॉक्टर साहब को भी
0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ, जैसे गंडा
1: एक
2: ये कई
1: मिनट,
2: बार काना हो जाता है।
1: अपना नाम और पता बताओ, और रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो आप, या धीमा कर दो।
2: योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
1: हाँ जी योगराज जी,
2: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आवाज इको हो रही है सर?
1: बिल्कुल, आवाज इको इसीलिए हो रही है कि आप पास में हो।
2: नहीं, ये मौसम की वजह से हो रहा है।
3: सवाल पूछें।
1: हाँ, क्या सवाल क्या है आपका?
2: सवाल, ये जो गंडा काना हो जाता है, कई बार हम देखते हैं जूस पीते हैं दुकान पे, तो उसमें लाल गंडा अंदर से काना भी होता है,
0: जी
2: तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब बताएं?
0: देखिए, लाल, हर लाल रंग रेड रॉट नहीं होता है। वो गन्ने के अंदर स्टॉक बोरर हो सकता है या इंटरनोड बोरर हो सकता है। वो दो बोरर की वजह से, जैसे ही गन्ना को काटेंगे आप और वो हवा के संपर्क में आएगा, उसमें फिनॉल जो हैं हवा के साथ रिएक्शन करके अपना कलर देते हैं, वो लाल रंग आ जाता है। लेकिन जो गन्ने की बात आप कर रहे हैं उसमें वो बोरर है, वो बोरर की वजह से लाल रंग है, वो रेड रॉट की वजह से नहीं है। ठीक है,
1: ठीक है योगराज जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि
0: रेड रॉट
1: रेड
0: पे
1: रॉट
0: बात
1: के
0: चल रही
1: नियंत्रण
0: थी,
1: के, और जिसमें आप ट्राइकोडर्मा की
0: ये
1: बात
0: बात
1: कर
0: कर
1: रहे
0: रही
1: थे।
0: थी। तो अभी काफ़ी तेज़ी से रेड रॉट आया है। इस बार मेरे को, अभी मैं गया था बिजनौर भी गया था, कई फैक्ट्रियों में गया हूँ, तो रेड रॉट अभी वर्तमान में कम देखने को मिला है। और किसान भी जागरूक हुए हैं,
1: जी
0: और जागरूक होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हुआ है।
1: जी
0: और ट्राइकोडर्मा की 75 स्पीसीज हैं यदि हम पूरे की बात करें, लेकिन दो स्पीसीज रेड रॉट के सापेक्ष यदि बात करें तो बहुत कॉमन है, एक ट्राइकोडर्मा वीडी और एक ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम।
1: जी
0: ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम अगर ज़्यादा इफेक्टिव है वीडी से, अगर वीडी मिल रहा है तब भी ठीक है, और हार्जेनियम तो है ही है। यदि इसका प्रयोग हम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिरोही जी, डॉक्टर डागर जी दोनों कार्यक्रम में आए और बहुत हमारे किसान भाइयों के सवालों के जवाब दिए, और निश्चित तौर पे हमारे जो गन्ना किसान हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
4: किसान बहन भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रायोजित कार्यक्रम विशेष फोन इन कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड।

मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ,

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: गन्ने की पाठशाला, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे शिव नंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।
2: इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी किसान बहन भाइयों को

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ 7:30:15। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है फिल्म नाम से। गायक कलाकार हैं पंकज उदास और साथी। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

एक बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। फिल्म नाम से गायक कलाकार थे पंकज उदास और साथी। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और साथी। गीत रचना है रावल फिल्म्स की और संगीत दिया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत कव्वाली।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं। अंतिम रूप में हम जो आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर से एक ये कव्वाली मन्ना डे की आवाज में। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी के साथ आज का गज़ल कव्वाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जिला विकास समिति DDC चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की।
4: बैठक में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जर्जर सरकारी विद्यालयों के पुनर्वास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा और मानसून के दौरान संभावित जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समन्वित और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने को कहा, ताकि नागरिक इस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण करा सकें। अर्जु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक के लिए शक्ति सिंह।
3: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर लगभग 3 वर्षों से रिक्त दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया है। महिला और बाल विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार ओम प्रकाश व्यास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल गौतम, कुंदन कंसकार, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सभी नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग का नया नेतृत्व बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सेंट्रल रिज स्थित राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर और नानकपुरा रिज में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
5: पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के बाद श्री शाह ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, 3 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो और नंद नगरी स्थित आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की आधारशिला रखी तथा नरेला हाई सिक्योरिटी प्रिजन परियोजना का ई शिलान्यास किया। ये पहल स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली के निर्माण को नई गति प्रदान करेंगी। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर ऐसा तंत्र बनाया जाएगा जिससे गोबर का उपयोग गैस और प्राकृतिक खाद

0: आने में हो तथा अपशिष्ट कचरे को यमुना में जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही 11 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जो प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
1: 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीज का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीज को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण को समान प्राथमिकता देते हुए राजधानी को अधिक हरित, स्वच्छ तथा टिकाऊ बनाने के लिए कार्य कर रही है।
2: इस पर्यावरण को संरक्षित करने का 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता।
0: इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाना, वायु प्रदूषण कम करना और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा तथा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और गृह मंत्री आशीष सूद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान और कई परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मल्होत्रा ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी स्वागत किया। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के 250 वार्डों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि 5000 हेक्टेयर से अधिक रिज क्षेत्र को अधिसूचित करने, 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाने, 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, नरेला उच्च सुरक्षा जेल, नए बस डिपो और स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र जैसी परियोजनाओं से राजधानी के पर्यावरण, परिवहन और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
4: हाई सिक्योरिटी नरेला जेल और उससे महत्वपूर्ण दिल्ली के फेफड़ों के रूप में रिज को विकसित करने का काम हमेशा की तरह दिल्ली सरकार की हैंड होल्डिंग करते हुए आदरणीय गृहमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों सौगात दी है और दिल्ली के पर्यावरण, दिल्ली की यमुना आदि चीजों में सुधार के लिए सदा अपना सहयोग वो देते रहे।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तथा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ TB मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। TB उन्मूलन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और TB मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी।

प्रावधानों के पालन और सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ मुक्ति मोर्चा तथा एशियाड श्रमिक मामलों में दिए गए आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस ऑनलाइन सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव या उसके प्रतिनिधि, श्रम आयुक्त तथा संबंधित सभी जिलाधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आज से राजभाषा हिंदी और विभिन्न कार्यालयों में उसका प्रयोग विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन कुमार पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग सुशासन और जनसंपर्क को मजबूत बनाता है। 13 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति, कार्यालयी हिंदी और प्रशासनिक लेखन जैसे विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खेरवार ने आज दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय, बेर सराय, डियर पार्क और एकता कैंप क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित कूड़ा उठाने और मानसून से पहले नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेरवार ने कटवारिया सराय और डियर पार्क के ढलाव पर 2-2 कचरा प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करने के निर्देश भी दिए, जिससे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था और बेहतर हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अत्याधुनिक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से प्रभावित होकर अपना गिरोह बना रहा था और हथियार जुटाने के लिए लूटपाट और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। मामले में हथियारों के स्रोत और गिरोह की अन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 200 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक 4-पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच अब भी जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये झूठा दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। उसने आगे स्पष्ट किया कि प्रसारित हो रहे वीडियो का इससे कोई संबंध नहीं है और ये भारत चीन सीमा से संबंधित भी नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान उन्होंने श्री गोयल के साथ दिल्ली के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजधानी में व्यापार, उद्योग और निवेश के मौकों को मजबूत करने, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय वर्षा के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं सवेरे और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की बारिश होने की भी आशंका है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम

अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डोरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:15। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म मोहरा से है। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है विजू शाह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है दिल से। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी। गीत रचना है गुलजार की और संगीत दिया है AR रहमान ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

में आगे आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दिल ने फिर याद किया के शीर्षक गीत में। साथी कलाकार हैं गायक कलाकार सुमन कल्याणपुर और मुकेश, संगीत दिया है सैनिक ओएमआई ने और गीत रचना है जीएल रावल की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ली है हमने फिल्म कसूर से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत रचना है समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बेटा बेटी, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर।

0: और श्री 420 के इसी गीत के साथ ये आज का गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम

0: ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर

0: बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series

0: ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीकशुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने UPI समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकेकार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1 अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
2: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपूर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
3: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की

0: भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क राबते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीक़ेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मसबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा ज़रई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड

0: उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासर कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के पांचवें दिन

डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना दोरोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दो तरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इशारिये में 0.3 और स्मॉल कैप 100 इशारिये में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीकशुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: से हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और इसमें दो चीजें और हैं, तो एक तो सुविधा बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबी डैम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है?
0: आभा आईडी का मतलब यह है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते

0: दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप अब आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये और कुल मिलाकर ये मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं, जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
0: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णता उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से कि ये पूर्णतः गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है, जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
0: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा। आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था,
1: जी
0: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक जो और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है

0: है, उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन की बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में, मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है और डॉक्टर के पास मैं जाता हूं और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने मतलब 2 दिन खर्च करके गया हूं अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलोअप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और

0: क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। वायनाड के मेपड्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच मुकाबला जारी है। एक अन्य मुकाबले में 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आपने सुनी गजलें मजहर हुसैन जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज हम सुनेंगे राग मालकौंस, डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा जी के स्वरों में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आपने सुना राग मालकौंस डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: वाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य

आपसे विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज सेट बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, दिलों की धड़कनों को सुरों से जोड़ने वाले इस खूबसूरत सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और अगले एक घंटे तक हम आपके साथ मिलकर खोलेंगे आपके प्यार से भेजे गए ईमेल का खजाना। हर ईमेल में छिपी है एक मुस्कान, एक याद, एक एहसास, और उन्हीं एहसासों को संगीत के रंगों में पिरोने के लिए हम लेकर आए हैं आपकी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम की लड़ी, आपकी फरमाइश। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी फरमाइश के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म काला बाजार से और आवाज थी आपको पता होगी मोहम्मद रफी जी की। और इसी के साथ चलते हैं ईमेल्स की तरफ। और ये जो गीत आपने सुना वो हमारे पास, उसकी फरमाइश हमारे पास आई थी मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से। जाकिर मुलानी जी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा और चाची और पूरा मुलानी परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा था, ये गाना सुन रहा था। इसी के साथ चलते हैं अगले मेल की तरफ, जो कि हमारे पास आया है आशीष कुमार की तरफ से। सप्रेम नमस्कार के साथ पता उन्होंने भेजा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से। और लिखने वाले हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह। आप सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से

बजाज और बिट्टा बजाज हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मजनू का टीला से कमल बालूजा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमें मैसेज भेज रहे हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगला मैसेज, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ में हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राम राम जी के साथ हमारे पास मैसेज आया है, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गाँव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ में सुन रहे हैं प्रमोद कुमार डूडी जी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही चलते हैं अगले गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म जीवन मृत्यु से और आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है पलारी छत्तीसगढ़ से। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद इरशाद ने हमें हाय लिखकर भेजा है, हाय। अगला मैसेज हमारे पास आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता जी का, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी देवाना जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी छोटी सी हमें सुन रही है, हमारा कार्यक्रम सुन रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनिल मोहन जी लिखते हैं, रचना अग्निहोत्री जी, हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हम हर रोज आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनकर ही सोते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। वरिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, मारहरा दरवाज़ा एटा से हमारे पास मैसेज आया है, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, यनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, जुबेर अली खान, सबीहा अंजुमन खान हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का, जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, डियर होस्ट जी आदाब व नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, मेरे मेल को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें और हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। मैसेज आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और

द्वारा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है नासिर शेख जी का। खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा जी, लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सुरेश गगनेजा जी भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया भी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, आपके फरमाइशी गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म वो कौन थी से और आवाज थी आशा भोसले जी की। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री। श्रोताओ, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, हमें ईमेल भेजना चाहते हैं, तो करना सिर्फ इतना है कि हमारे ईमेल पे आपको भेज देना है अपनी फरमाइशी गीत, अपना नाम और जहां से आप भेज रहे हैं उसका पता। और हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार मैं पुनः बता दूं, ipradiodelhi@gmail.com। बस, और चलते हैं आपके अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन और मास्टर जिव्यम जैन के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, लेकिन इतने सारे मैसेज आए हैं एक साथ ही एक ही नाम से कि आगे करते करते टाइम वेस्ट हो रहा है। अगले मैसेज में आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का, जो कि हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं और उन्हें बेहद प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मैसेज की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास आया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। आपने लिखा है कि कृपया हमारे अनुरोध पर गीत सुनवाएं, हम आपका गीत जरूर सुनवाएंगे। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं और साथ में ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कालका से लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए और हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और इतना ही प्रेम देते हैं, इतना ही मोहब्बत देते हैं। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म शर्मीली से, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आ रहे हैं लगातार। ये मैसेज हमारे पास आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्ही पोती अन्विका, तनुश्री गुप्ता भी हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार बने हुए हैं। आज लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गले की आवाज़ कुछ और तरह की लग रही है। अरे भाई सर, मैं बरसात का मौसम है, मैंने थोड़ा सा ठंडा पी लिया है, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन और मास्टर जिव्यम जैन का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था आदमी और इंसान से। आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मेल की तरफ, जो कि आया है गांव जखड़ गांव अहमदनगर महाराष्ट्र से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। रेखा बसंत कुमार सिन्हा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अजय कुमार गुप्ता, नन्ही पोती अन्विका, तनुश्री गुप्ता भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है मधु किरण जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। मधु किरण दिल्ली से हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रही हैं। अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास आया है नासिर शेख जी का, ग्राम जखण गांव अहमदनगर महाराष्ट्र से, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। बहुत सारे मैसेजेस लगातार हमारे पास भेज रहे हैं। नमस्कार जी, जैसे आपका गला ख़राब है वैसे हमारा भी गला ख़राब है। आज हम बारिश में भीग गए थे। ये कहना है श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का। लड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुनता है, इसका मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। ये सुनकर हमें सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल बच्चे केवल मोबाइल देखते हैं, मम्मी के डांटने पर काम करते हैं, लेकिन जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, वो अपना काम भी करते जाते हैं और हमें सुनते भी जाते हैं। हमारा आदरणीय आरजे साथी एवं सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार के साथ हमारे पास मैसेज आया है। गंगा बहती है, हमसे कहती है कि प्रकृति के बगीचे में स्वच्छता तितली रहती है, तपते हुए सूरज की तपिश से झुलसी हुई वो बेबस हमारे एयर कंडीशनरों की तपिश भी सहती है। मेघों पर सवार होकर आती हैं जब जब गंगा की बूंदें, झुलसती हुई वो तितली पक्षियों के जैसे चहकती है, फूलों के जैसे महकती है। गंगा बहती है, हमसे कहती है कि धन्यवाद। सुनील कुमार गुंद, नील माधव संगरूर पंजाब से हमारे पास ये मैसेज आया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का। लिखते हैं, बारिश अक्सर उन्हीं को सबसे ज़्यादा पसंद आती है जिनके दिल में गहरे दर्द छिपे होते हैं, क्योंकि जब बारिश बरसती है तो आंखों से बहते आंसू भी उसकी बूंदों में खो जाते हैं और कोई उनके दर्द को पहचान नहीं पाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है दिलावर खान जी आपने। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ग्रुप हुगली कोलकाता से राम बालक दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमारा नाम जरूर शामिल करो जी के साथ हमारे पास ये मैसेज आया था। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। प्रकाश चंद जोगिया जी दिल्ली से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास मैसेज आया है दिलावर खान जी का, जो कि एक बार फिर से हमारे पास मैसेज लिख रहे हैं। बरसात प्रकृति का वो अनुपम उपहार है जो तपती धरती को शीतलता का स्पर्श देकर चारों ओर हरियाली, ताजगी और नवजीवन बिखेर देती है। रिमझिम बरसती फुहारें, भीगी मिट्टी की सूंधी महक और पेड़ों की धुली हुई हरियाली मन को एक अनोखी शांति से भर देता है। इस मौसम में गर्म चाय की चुस्कियां और कुरकुरे पकौड़ों का स्वाद अपनों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों को भी यादगार बना देता है। सच तो ये है कि बरसात केवल मौसम नहीं बल्कि प्रकृति का वो मधुर संगीत है जो हर दिल को सुकून, उमंग और नई उम्मीदों से भर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने दिलावर जी। अब इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्यारे से मनमोहक से गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म आरजू से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी जी की। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जिसमें हमें कुछ लिखकर भेजा है। जीवन में ज़रूरी नहीं कि हमारी चाहत के अनुरूप ही हमें सब कुछ मिले, जब चाहत के ठीक विपरीत मिले तो ऐसे हालत में मायूस दिल टूटता है और यही आह दिल से निकलती है कि ख्वाब टूटते हैं मगर यादें रह जाती हैं, दिल में चाहतों की फरियादें रह जाती हैं, देखती रहती हैं आँखें राहें मंजिल को, वसल की भटकी हुई मुरादें रह जाती हैं। क्या बात है, ये लिखकर भेजा है हमारे पास पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी ने, जो कि उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। लिखा है, ओ सखी आपका हार्दिक अभिनंदन है, बस शामिल करिएगा रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने आपको शामिल कर लिया। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है नियमित श्रोता की तरफ से है, जो कि हैं ए के पांडे जी मध्य प्रदेश से, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास सुदर्शन मुखी जी का आया है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अनीता मुखी जी के साथ और सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रचना साहिबा जी, आज का प्रोग्राम सुनकर दिल को बहुत खुशी मिली और दिल को सुकून मिला, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। राम बालक दास जी, रिया दास कोलकाता हुगली से, बहुत बहुत स्वागत है, आप लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। लोगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल जी भी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। अनिल मोहन जी तो लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये हमें पता चल गया है। अगले मैसेज की तरफ जाने से पहले चलते हैं इस प्यारे से गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म बरसात से, आवाज़ तो आपको पता लग गई होगी लता मंगेशकर जी की। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले जी का, नांदेड़ महाराष्ट्र से। आप कह रहे हैं हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपको हमने शामिल कर लिया है अपने कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, पुरखुलूस आदाब के साथ हमारे पास यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, बेबी प्रियांशी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। शाहू नगर यवतमाल से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लगातार हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

0: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जा रही है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मान

0: होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होने चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमत कार्यबिंदुओं के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा गलत है और साफ किया है कि मंत्रालय ने इस संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। वायनाड के विपड्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे नौ मजदूरों को बचा लिया गया है। छह अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। डॉ मिश्रा ने निर्देश दिया कि समग्र स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
2: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister

0: श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि ये गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम बात कर रहे थे गीतकार अनजान पर। गीतकार अनजान का जन्म 28 अक्टूबर 1930 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्रोताओं, इन्हें हिंदी सिनेमा में यादगार गीत लिखने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक फिल्मों के लिए 1500 से भी ऊपर गीत लिखे थे। कुछ माने हुए संगीतकारों जैसे कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन और बप्पी लाहिरी के साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल था। और सबसे बड़ी बात कि गीतकार समीर इन्हीं के बेटे हैं।
1: झुके जो तेरे नैना

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म कंगन से। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गायक थे महेंद्र कपूर और गायिका थी उषा खन्ना। श्रोताओं, गीतकार अनजान को पहला मौका 1953 में अभिनेता प्रेमनाथ के प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा से मिला। इस फिल्म में लिखे उनके कुछ गीत जैसे लहर ये डोले कोयल बोले और शहीदों अमर है तुम्हारी कहानी बहुत हिट साबित हुए। इस तरह ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक गीतकार के तौर पर स्थापित हो गए और उसके बाद तो इनके पास काम की जैसे कोई कमी ही नहीं रही।

ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दो अनजाने से। श्रोताओं, गीतकार अनजान ने अनेक छोटी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे और वो सभी गीत भी बहुत हिट साबित हुए थे। ऐसा ही एक गीत मत पूछ मेरा है मेरा कौन वतन बहुत हिट साबित हुआ था। लेकिन अनजान को जो असली पहचान मिली वो मिली अभिनेता राजकुमार द्वारा अभिनीत फिल्म गोदान से।

0: खुल गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो।

0: तो मीसा जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: श्रोताओं, गोदान फिल्म से पहचान मिलने के बाद गीतकार इंदीवर को 1960 के दशक में कुछ बड़े संगीतकारों जैसे ओपी नैयर और फिल्म निर्माताओं जैसे गुरुदत्त और जीपी सिप्पी की फिल्मों में गीत लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। जीपी सिप्पी की फिल्म बंधन में लिखे गीत बिना बदरा के बिजुरिया कैसे बरसे ने इन्हें अच्छी खासी ख्याति दिलवा दी और उसके बाद इन्होंने इंदीवर जैसे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म डॉन से किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। श्रोताओं, गीतकार अनजान ने अनेक सालों तक एक जाने माने गीतकार के तौर पर काम किया। सन 1976 में रिलीज फिल्म दो अनजाने में उन्होंने एक गीत लिखा था जिस जो था लुक छिप जाओ ना, जिससे इन्हें खूब ख्याति मिली। और उसके बाद इन्हें फिल्म हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, याराना, नमक हलाल जैसी फिल्मों में सुपरहिट गीत लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, 80 का दशक भी गीतकार अनजान के लिए बहुत सफलताओं से भरा रहा था। मिथुन दा की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर और डांस डांस के गीत भी इन्होंने ही लिखे थे। इसके बाद इन्होंने आंधी तूफान, इल्जाम, आग ही आग, पाप की दुनिया और टारजन जैसी फिल्मों के गीत लिखे। और इसी दशक में इन्होंने आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों के लिए फिल्म अपने रंग हजार, संजोग, त्रिवेणी और ईश्वर जैसी फिल्मों के गीत लिखे। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म डिस्को डांसर से ये गीत बप्पी लहरी की आवाज़ में।

श्रोताओं, 90 के दशक में हालांकि गीतकार अनजान का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आज का अर्जुन, शोला और शबनम, विष्णु देवा, पुलिस और मजरिम जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आइए सुनते हैं फिल्म आज का अर्जुन में लिखा हुआ उनका ये गीत।

0: श्रोताओं, गीतकार अनजान ने केवल हिंदी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि गैर फिल्मी एल्बमों के लिए भी गीत लिखे थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुरी जैसे गायकों ने गाया था। ऐसा ही एक गीत रफ़ी साहब का गाया मैं कब गाता बहुत हिट साबित हुआ था। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी भाषा में भी कविताएं लिखी थी। 13 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के बाद उनकी लिखी कविताओं की एक किताब गंगा तट का बंजारा अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा प्रदर्शित की गई थी। इसी के साथ श्रोताओं, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। तो सुरों का सफरनामा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म शोला और शबनम से अमित कुमार और साथियों की आवाज़ में।
1: Dum-ta-dum-ta-dum, dum-ta-ta-ta-ta-dum-ta-dum-ta-dum.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग

0: संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्तु घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 110,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that domestic

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत सुनहरे का। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों के गीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गीत फिल्म तानसेन से KL सहगल साहब की आवाज़ में।

0: अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, फिल्म मेला से मुकेश साहब और शमशाद बेगम की आवाज में।
1: एक प्रकार से

0: फिल्म बावरे नैन से ये गीत आइए सुनते हैं मुकेश साहब और गीता रॉय की आवाज में।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एड्रियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी

0: ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है, 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के टेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. Aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issue due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं ये गीत। सबसे पहले फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के तीन बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम

0: पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with the issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his 2-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped

अभी जो गजल आप सुन रहे थे ये जगजीत सिंह के स्वर में थी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक और गजल सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के आवाज में।

0: कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं विनोद सहगल को एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ, जिसके गुलुकार यानी कि रचनाकार हैं दलीप ताहिर।
1: यंगर जनरेशन के कुछ नाम मेरे जहन में उभरते हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। वो हैं विनोद सहगल, घनश्याम वासवानी और

और एक कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं सुभाष आनंद, रचना है शिव साहिल की और कंपोजर भी हैं सुभाष आनंद।

0: और जगजीत सिंह की इसी बहुत खूबसूरत गजल के साथ ही आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं जी रघुरमन का बांसुरी पर बजाया गया राग मध्यमावती।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओ, अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। देशभक्ति गीत का समय रहेगा 5:20। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे मल्लिका बनर्जी का गायन।

जिसमें आप सुनेंगे द्वानी वी श्रीवास्तव के भजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा सुबह 7:30 और सुबह 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे गजानन राय जोशी का गायन राग देशकर।

साइंस मैगजीन कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:15 और दिन में 9:30 पर मिट्टी दी महक कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

0: दिन में 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस, और 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का गायन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बहरीन के बीच सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा की मौजूदगी में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बहरीन के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक बातचीत, समय पर नीतिगत कदम, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अलग अलग स्रोतों से तेल आयात करने जैसे उपायों से ऊर्जा क्षेत्र में आई सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that domestic petrol and diesel prices are expected to move in a positive direction if international crude oil prices remain stable or decline. The minister expressed confidence that the outlook for consumers remains favorable as global oil and gas supplies continue to expand. Addressing the Viksit Bharat Conclave 2026 in New Delhi, Mr. Puri said, India successfully weathered one of the most challenging global energy disruptions in recent decades through a combination of diplomatic engagement, timely policy interventions, enhanced domestic production and diversified imports. He said the country's experience demonstrated the importance of long-term energy reforms in ensuring energy security. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain yesterday. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10 और 18 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर

यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आएं, यानी नितंब के पास लेकर आएं। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुलनुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने स्थिति में आ जाए और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दे। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शवासन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने

0: शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था योग, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। प्रस्तुतकर्ता थी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी शोखन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:20 और 15 सेकंड। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ 5:30:15। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं मल्लिस्का बनर्जी का गाया हुआ राग ललित।